यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 3 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 और 20 सेकंड हुए हैं। अब आकाशवाणी शिवपुरी से प्रसारण आरंभ होता है।

0: हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष S. राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
1: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में

0: सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की दो दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक नगर पालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टोंटन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं मातृ वंदना से। हम अपनी मातृभूमि को सादर प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और देश की वंदना करते हैं।

समूह स्वर में भी आप सुन रहे थे ये मातृ वंदना। श्रोताओं, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुर में देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हम प्रथम पूज्य देव भगवान श्री गणेश की वंदना करते हैं।

उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये भजन। श्रोताओं, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। अनूप जलोटा और साथियों की आवाज में एक भजन आपको सुनवा रहे हैं।

अनूप जलोटा और साथियों की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये भजन। श्रोताओ, कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं सुमन कल्याणपुर के गाए इस भजन से, लीजिए सुनिए।

0: सुमन कल्याणपुर के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम चिंतन का, और चिंतन कार्यक्रम में आज का विषय है शिक्षा। आलेख प्रोफेसर ज्योति स्वरूप दुबे का है और वाचक हैं डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। लीजिए सुनिए।
1: मनुष्य जन्म से लेकर मरण तक जो कुछ सीखता है वो सब शिक्षा है। मनुष्य का प्रत्येक अनुभव उसको कुछ न कुछ सिखाता है। शिक्षा अज्ञात तथा सचेत दोनों हो सकती हैं। सचेत शिक्षा विधिवत तथा अविधिवत दो प्रकार की होती है। मनुष्य स्वयं अपने अनुभव से, समाज के संपर्क से, सफलताओं तथा विफलताओं से बहुत कुछ सीखता है और ये सब सीखना शिक्षा है। सचेत शिक्षा वो है जो व्यक्ति अपने को स्वयं देता है। रूसो, गेटे, कबीर और रैदास इसी प्रकार के शिक्षित हैं। इस प्रकार की आत्मशिक्षा को व्यवस्थित नहीं किया जा सकता, क्योंकि बुद्धि विवेक एवं प्रतिभा के अनुसार लोग स्वयं इस प्रकार की शिक्षा लेते हैं। विधिवत शिक्षा वो है जिसके द्वारा समाज अपने द्वारा अर्जित समस्त ज्ञान को अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। यही समाज के जीवन, स्थैर्य और विकास का आधार है। इस प्रकार शिक्षा के इन तीन प्रकारों से तीन प्रकार के सिद्धांत उद्भूत होते हैं। शिक्षा मनुष्य के लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिससे वो मनुष्य बनता है। इससे प्रगतिवाद का सिद्धांत उद्भूत होता है। शिक्षा के दूसरे प्रकार में मनुष्य स्वयं को आदर्श मानव बनाता है। इससे आदर्शवाद का सिद्धांत निकलता है। तीसरे प्रकार की शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिससे समाज अपना विकास करता है। इससे उपयोगवाद या अर्थ क्रियावाद का सिद्धांत निस्सूत होता है। शिक्षा के दो तत्व हैं जिन्हें अध्ययन, अध्यापन या स्वाध्याय एवं शिक्षण कहते हैं। अध्यापन के द्वारा व्यक्ति को अन्य पुरुषों या गुरुओं से ज्ञान मिलता है जिसे सूचना कहते हैं। अध्ययन या स्वाध्याय से व्यक्ति स्वयं सीखता है जिसे सीखना कहा जाता है। शिक्षण और स्वाध्याय दोनों के सहयोग से ही शिक्षा पूरी होती है। शिक्षा के इन दो तत्वों से दो आदर्श निकलते हैं जिन्हें अनुशासन और स्वतंत्रता कहा जाता है। शिक्षा के इन दोनों तत्वों में एक विरोधाभास है, क्योंकि दोनों तत्व विद्यार्थियों को दो विरोधी दिशाओं में ले जाते हैं। अनुशासन और स्वतंत्रता की दोनों विचारधाराएं एकांगी हैं तथा समाज की प्रगति में बाधक हैं। सच्ची शिक्षा में अनुशासन तथा स्वतंत्रता दोनों का मेल होना चाहिए और जन सहयोग तथा राज्य सहयोग के द्वारा शिक्षा की व्यवस्था कर इसे व्यवहारिकता का जामा पहनाना चाहिए। फ्रीबेल नामक पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को केवल स्वाध्याय के अर्थ में लिया और हर्बर्ट ने शिक्षण तत्व पर बल दिया। लॉक ने सर्वप्रथम शिक्षा के इन दोनों तत्वों का समन्वय करने की बात उठाई। शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य आत्मलाभ है। कुछ लोगों के अनुसार आत्मलाभ का अर्थ ईश्वर प्राप्ति है, तो कुछ लोगों की मान्यता है कि आत्मलाभ मनुष्य की उच्चतर प्रवृत्ति का निम्नतर प्रवृत्ति पर राज्य स्थापित करना है। अन्य कुछ लोग मानते हैं कि आत्मलाभ का अर्थ मनुष्य को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है। पूर्ण व्यक्तित्व लाभ कैसे होता है, इसके लिए कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने ज्ञान को, कुछ ने भक्ति को और कुछ ने स्वतंत्रता को महत्व दिया है। अतः एक दृष्टि से शिक्षा का उद्देश्य ज्ञानार्जन है, तो दूसरी से भक्तिभाव और अन्य दृष्टि से स्वतंत्रता की प्राप्ति। प्लेटो, अरस्तु, मनु आदि ज्ञानवादी हैं। तुलसीदास ईसाई दार्शनिक तथा मुस्लिम दार्शनिक भक्तिवादी हैं। रूसो, टी परसीनन और महात्मा गांधी आदि स्वतंत्रतावादी हैं। इन तीनों वर्गों में स्वतंत्रतावाद सर्वाधिक मौलिक विचार है, क्योंकि वह ज्ञान और भक्ति का भी मूलाधार है। बिना स्वतंत्रता के न तो ज्ञान मिल सकता है और न भक्तिभाव। यह स्वतंत्रता स्वयं में साध्य है तथा अन्य सद्गुणों को प्राप्त करने का साधन भी है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने माना कि शिक्षा स्वतंत्र वातावरण में स्वतंत्रता के द्वारा तथा स्वतंत्रता के लिए होनी चाहिए। शिक्षा का समाजशास्त्रीय प्रयोजन मनुष्य को एक अच्छा मनुष्य बनाना है। अच्छा मनुष्य वो है जो अपनी आजीविका की समस्या हल कर सके, अपने समाज, राज्य और राष्ट्र के प्रति भक्त हो और नैतिक दृष्टि से सदाचारी हो। जीविकोपार्जन के लिए किसी उद्यम या व्यवसाय में विशेषता प्राप्त करना तथा उद्योग को विकसित करना शिक्षा का शुद्ध आर्थिक उद्देश्य है, जिसका संबंध मनुष्य की जैविक आवश्यकताओं से है। राष्ट्र प्रेम शिक्षा का विशुद्ध राष्ट्रीय उद्देश्य है। इसके पूरक के रूप में नैतिकता को भी इनके साथ एक आदर्श मानना चाहिए। शिक्षा का संक्षेप में एकमात्र प्रयोजन मूल्य लाभ है। आधुनिक युग में शिक्षा के समस्त उद्देश्यों का समन्वय करके मूल्यों की प्राप्ति को शिक्षा का उद्देश्य माना जाता है।
0: शिक्षा श्रोताओं, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। आलेख प्रोफेसर ज्योति स्वरूप दुबे का था और वाचक थे डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस पाठ, स्वर दे रही हैं अनुराधा पौडवाल।

गरुड़ को अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनाते हुए काकभुशुंडी ने कलयुग की चारित्रिक विशेषताओं का प्रसंग छेड़ दिया है, जिसे उन्होंने स्वयं अपनी आंखों देखा ही नहीं अपितु बहुत कुछ भोगा भी था। कलिकाल वैसे तो पाप और अवगुणों का युग है, किंतु उसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण की प्राप्ति भी है। वो ये है कि कलिकाल में बिना परिश्रम के ही भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस पाठ, स्वर दे रही थी अनुराधा पौडवाल। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओ, कृषि समय के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं ग्रीष्म ऋतु में फलदार वृक्षों का प्रबंध।

0: इस विषय पर डॉक्टर नीरज कुमार कुशवाहा से जानकारी लीजिए, सुनिए।
1: किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि विदित है कि अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है और इस समय पे हमारे जो फलदार वृक्ष हैं, जिनके बगीचे लगे हुए हैं, उनका प्रबंधन बहुत ही जरूरी हो जाता है। पानी की उपलब्धता को देखते हुए उनकी कटाई छटाई, रखरखाव, थाला बनाना, खाद देना, तो सबसे पहले तो हमको ध्यान रखना है कि अभी जो फलदार वृक्ष जिन पे फल लग रहे हैं, जैसे कि आम है, उसको हफ्ते में एक बार पानी जरूर देना है। थाला कम से कम 1 मीटर चौड़ा होना चाहिए और थाले की जो आसपास की मिट्टी है बहुत ही अच्छी गुड़ी हुई होनी चाहिए, मतलब भुरभुरी हो। और यहाँ NPK अगर है तो हम इसको 50 ग्राम 100 ग्राम तक, अगर 5 साल से ऊपर का है तो 100 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से हम उसको दे सकते हैं, लेकिन पानी या नमी वहाँ जरूर होनी चाहिए ताकि उसकी जड़ें जले नहीं। अगर आपने पानी नहीं दिया, सिर्फ खाद डाल दी या उर्वरक डाल दिया, तो उसमें जलन की समस्या हो सकती है। तो हमको नमी वहाँ बनाए रखनी है ताकि हमारे जो फलों का साइज है, आकार है, वो वृद्धि कर सके। इसके अलावा सभी जो भी अन्य फलदार वृक्ष हैं, उनमें भी नमी बनाए रखने के लिए हमको समय समय पर पानी देना है। और इसकी जो कटाई की बात है, यानी जिसको प्रूनिंग कहते हैं, तो प्रूनिंग हमको अगर जिनमें फल आ रहे हैं, फल लगने के बाद हमको उनकी लाइट प्रूनिंग करनी है, ज़्यादा घनी प्रूनिंग नहीं करनी है। लाइट प्रूनिंग, कई पेड़ ऐसे हैं जो नई शाखाओं पर ही वृक्ष अगले वर्ष आएंगे, जैसे कि आम है, जैसे कि अमरूद है, जैसे कि आपका अनार है, जामुन है, बेर है, बेल है, तो इन सभी पर, और सहजना, ये सभी पर हमको नए फल लेने के लिए प्रूनिंग करनी होती है। तो जब इन पर फल खत्म हो जाए, उसके बाद लाइट प्रूनिंग करें। जितनी भी शाखाएं उस पर लगी हैं, उससे 50% से कम ही प्रूनिंग करनी होती है। लेकिन जैसे बेर है या सहजना है, तो इसको प्रूनिंग करने के लिए हमको 4 मीटर, अगर पेड़ हमारा है तो 4 मीटर से इसको फ्लैश आउट कर देते हैं, मतलब 4 मीटर के बाद हम इसको पूरा काट देते हैं तने से, जिससे कि नई शाखाएं या किल्ले जिसको बोलते हैं वो निकलते हैं और उस पर हमें नए फल प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से जिसके पास अंगूर है, अंगूर में भी 50% तक हमको अंगूर की कटाई छटाई करनी होती है और वो अगले वर्ष वहाँ पर उसमें अच्छे फल प्राप्त होते हैं। इससे लाभ भी बहुत सारे हैं, जो सड़े गले फल लगे हैं वो भी हट जाते हैं, कोई बीमारी किसी शाखा पे आ रही है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो सब भी दूर हो जाता है। और इन पेड़ों का अपना एक बायोलॉजिकल क्लॉक है कि ये नई शाखाओं पे भी आते हैं। अगर आप नहीं काटेंगे तो शाखाएं तो वृद्धि करेंगी, लेकिन उतनी नहीं करेंगी, अगर कम रहेंगी तो फिर कम फल उस पे हम अर्जन कर पाएंगे। इसलिए थालों का और इसका प्रूनिंग जरूरी है। इसके अलावा जो किसान भाई नया वृक्षारोपण अपना खरीफ सीजन में करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो अभी से पेड़ों के हिसाब से कम 1 फिट बाई 1 फिट बाई 1, मतलब एक गहरा, एक चौड़ा, एक ऊंचा गड्ढा हमको करना है, निश्चित दूरी पर रखें। ये थोड़ा सा बदलता है कि कौन सा वृक्ष है, कहाँ पर लगा रहे हैं, तो जो भी आपने सुनिश्चित किया है कि इस बार हम इस पेड़ का वृक्षारोपण करेंगे, तो उस स्थान का अगर आपने चयन कर लिया है तो वहाँ पर आप अपना गड्ढा कर लें और उसकी जो भी मिट्टी निकलेगी उसको अपन को फेंकना नहीं है, उस गड्ढे के बाजू में ही रखना है। और वृक्षारोपण का इंतजार, जब हम बारिश का समय आएगा तो हम वृक्षारोपण उसमें करेंगे, लेकिन वृक्षारोपण करने के पहले एक बार जब पूरा थाला पानी से, बारिश के पानी से भर जाए और वो नीचे की तरफ परकुलेट हो जाए, तब हमको उसमें मिक्सचर बना के, वही मिट्टी लेकर, उसमें गोबर की पची हुई खाद लेकर, कुछ फंजीसाइड और कुछ इंसेक्टिसाइड मिलाते हुए तब हमको वृक्षारोपण उसमें करना है। क्योंकि ऐसा ना करने पर वो जब कभी कभी पहले कर देते हैं, बारिश आने वाली है तो मिक्सचर बनाया, उस गड्ढे में रखा और हमने उसको वृक्षारोपित कर दिया, लेकिन जब उसमें जो हीट है, गर्मी है, निकलती है, तो उस वजह से उसकी जड़ों को सुखा देती है, उसमें भी बल्कि रूट हेयर्स जो होती हैं वो बहुत ही नाजुक होती हैं, तो उनको सुखा देती है। और हम जब जड़ निकालते हैं तो हमें लगता है कि जड़ें तो साबुत हैं लेकिन हमारा पेड़ सूख गया है। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए हमको वृक्षारोपण करना है।
0: ग्रीष्म ऋतु में फलदार वृक्षों का प्रबंधन। श्रोताओं, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नीरज कुमार कुशवाहा से जानकारी, और इसके साथ ही कृषि समय की कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।

हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम विवरण का। जानकारी लीजिए हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। सबसे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। श्रोताओं, आज सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे जल संरक्षण विषय पर लघु वार्ता। फिल्म संगीत सुनिएगा आज सुबह 7:20 पर। आज सुबह 7:45 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी शिवपुरी का सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। श्रोताओं, आज सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आज सुबह 9:00 लोक संगीत के कार्यक्रम लोक रंग में हम आपको सुनवाएंगे स्वर्ण लता ब्राउन और गोपाल कुमार वाशनेही के गाए कुछ लोकगीत। आज सुबह 9:30 पर सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा आज सुबह 10:05 पर और फिल्म संगीत सुनिएगा आज सुबह 10:30 पर। श्रोताओं, आज शाम 7:21 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे लू से बचाव हेतु घरेलू उपाय, अनाज भंडारण में सावधानियां अपनाएं और छोटा परिवार खुशियां अपार, इन विषयों पर बातचीत सुनी जा सकती है। इसके अलावा आज हम आपको सुनवाएंगे एक भेंट वार्ता, विषय होगा ग्रीष्म ऋतु में पौधों की कीट रोगों से कैसे बचाएं। वार्ताकार होंगे डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्ता से डॉक्टर समर्थ अग्रवाल की बातचीत। तो श्रोताओं, यह रूपरेखा हुई हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। और अब आपको बता दें जिन कार्यक्रमों का हम अनुप्रसारण करेंगे। श्रोताओं, आज दिन में 11:00 से आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे।

0: भारतस्य मुख्यन्यायाधीशः न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः गतवासरे सर्वोच्चन्यायालयस्य पञ्चन्यायाधीशेभ्यः पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितवान्। न्यायमूर्तिः शीलनागो, श्रीचन्द्रशेखरः, सञ्जीवसचदेवा, अरुणपल्ली, वरिष्ठाधिवक्त्री वी मोहना च सर्वोच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशत्वेन शपथवचनं स्वीकृतवन्तः। अवधेयं यत् केन्द्रेण सर्वोच्चन्यायालयीय न्यायविदसमितेः अनुशंसाम् आलक्ष्य एव एतेषां नियुक्तिविषयणे स्वीकृतिः दत्ता। राष्ट्रिय पञ्चायत पुरस्कार समारोहः अद्य नवदिल्ल्याम् आयोजयिष्यते। एते पुरस्काराः देशस्य द्विचत्वारिंशत् संख्याकेभ्यः उत्कृष्ट पञ्चायतेभ्यः प्रदास्यन्ते। समारोहावसरे दीनदयालोपाध्याय पञ्चायत सतत विकास पुरस्कारः इत्यस्यां श्रेण्यां चतुस्त्रिंशत् ग्राम पञ्चायतेभ्यः, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पञ्चायत सतत विकास पुरस्कार श्रेण्यां च अष्ट पञ्चायतेभ्यः पुरस्काराः प्रदास्यन्ते। भारतीयर्थ विभागेन सूचितं यत् अद्य कर्णाटकस्य आभ्यन्तरीणेषु भागेषु, केरल माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कराईकलेषु च तीव्रवृष्टिः भविष्यति। आगामी दिवसद्वय पर्यन्तं हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमोत्तर प्रदेशेषु तीव्र झंझावातेन सह गर्जनस्य, तडितपातस्य च संभावना वर्तते। अन्ते क्रीडा वार्तासु, महिलानां अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडा मालिकायां गतरात्रौ इंग्लैंड देशस्य टाउनटन नगरे काउंटी क्रीडांगणे आयोजिते तृतीये अन्तिमे च द्वन्द्वे इंग्लैंडेन भारतं षड्भिः क्रीडकैः पराजितम्। इत्थम् इंग्लैंडेन 2-1 इत्येतेन स्पर्धान्तरालेन श्रृंखला जिता। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया है। इस यात्रा से भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक, नगरपालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने असम के मूगा रेशम के लिए मिशन स्नेहजोरी का शुभारंभ किया। ये पहल असम के विशिष्ट मूगा रेशम उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सूरत के बारडोली कस्बे के पास कल महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन की 2 बसों की टक्कर में 8 लोगों की मौत और 15 से अधिक लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है।

0: साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अध्यक्ष निर्वाचित होने पर डॉक्टर खलीलुर रहमान को बधाई दी है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉक्टर रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान घोषणा की गई थी। तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी।
2: हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए जल संरक्षण विषय पर लघु वार्ता। श्रोताओं, हम वर्तमान हालातों की बात करें तो आज देश के प्रमुख जलाशयों में तेजी से घटता जल स्तर केवल मौसम की चिंता नहीं है, बल्कि भविष्य के जल सुरक्षा संकट की एक चेतावनी है। मानसून का इंतजार जरूरी है, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी है जल संरक्षण और प्रबंधन को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने की। श्रोताओं, केंद्रीय जल आयोग के ताजा आंकड़े इस बात को बताते हैं कि मई 2026 के शुरुआती दिनों में और महीने के अंत तक देश के कुल 166 प्रमुख जलाशयों का जल भंडारण 36.41% से घटकर 24.75% पर पहुंच गया। लगभग 21.4 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी का कम हो जाना केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि आने वाले समय में जल उपलब्धता को लेकर खड़े हो रहे एक बहुत बड़े गंभीर संकट का संकेत है। ऐसे समय में जब मौसम विज्ञान और मौसम विभाग अल नीनो के प्रभाव के कारण सूखे की आशंका जता रहा है, जलाशयों की यह स्थिति और अधिक चिंताजनक हो जाती है। भारत की जल व्यवस्था आज भी काफी हद तक मानसून पर निर्भर है। हर वर्ष गर्मियों के अंत तक जलाशयों का घटता स्तर, लेकिन इस बार गिरावट की जो रफ्तार अपेक्षाकृत अधिक है, विशेष रूप से दक्षिण भारत में स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहां जलाशयों में उपलब्ध पानी कुल क्षमता के केवल 17.55% तक सिमटकर रह गया। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की यदि बात करें तो कई राज्यों में पेयजल और सिंचाई दोनों क्षेत्रों में दबाव बढ़ने की आशंका है, और यह स्थिति यह बताती है कि जल संकट अब केवल किसी एक क्षेत्र की समस्या नहीं रह गई, बल्कि एक राष्ट्रीय चुनौती का रूप ले रही है। श्रोताओं, हम अपने शिवपुरी जिले की बात

करें, शिवपुरी शहर की बात करें, तो जब जल संकट इतना गहरा गया तब शिवपुरी के जिला दंडाधिकारी और कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा ने इस जल संकट से उबरने के लिए पूरी शहर की कमान अपने हाथों में ली और अपने दिशा निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को जारी किए। श्रोताओं, होता क्या है कि जब हम किसी संकट के दौर से गुजर रहे होते हैं तब हमारा मनोविवेक काम करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, बार बार कहना पड़ता है, कभी जल संरक्षण के लिए कहना पड़ता है, कभी पर्यावरण को लेकर बातचीत करनी पड़ती है, कभी शिक्षा को लेकर बात करनी पड़ती है, क्या हम स्वयं इसके लिए उत्तरदायी नहीं है? क्या हम खुद इस बात को नहीं समझ सकते कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? क्योंकि जल एक ऐसा प्रमुख और आवश्यक तत्व है पूरे ब्रह्मांड में, जो इस पृथ्वी पर वनस्पति को और जीवधारियों को जीवित रखे हुए है। श्रोताओं, जल के बिना इस पृथ्वी पर ना तो वनस्पति ही जीवित रहेंगी और ना ही जीवधारी जीवित रहेंगे, क्योंकि जल एक ऐसा प्रमुख आवश्यक तत्व है और वो भी हमें प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है। वर्षा के रूप में जो हमें जल प्राप्त होता है, उस जल को यदि हम संरक्षित कर लें, सुरक्षित कर लें, तो हमारी सारी समस्या का ही समाधान हो जाएगा। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जल का संरक्षण करें, जल को सुरक्षित रखें। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जल संरक्षण विषय पर लघु वार्ता। इस समय सुबह के 7:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में जनजातीय गरिमा उत्सव का शुभारंभ करेंगी। प्रदेश में पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को सिला हुआ गणवेश मिलेगा, प्रदेश कैबिनेट में लिया गया निर्णय। रक्षाबंधन से पहले प्रदेश में चलेंगी सरकारी बसें, शुरुआत इंदौर से होगी। और प्रदेश में मानसून 20 से 22 जून के बीच दस्तक दे सकता है। अब समाचार विस्तार से। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और परियोजनाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअली उद्घाटन भी करेंगी। विदेश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। प्रदेश के सभी शासकीय शालाओं में कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को अब सिला हुआ गणवेश प्रदान किया जाएगा। यह निर्णय कल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि जनकल्याण और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए 21,485 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। वहीं प्रदेश में

0: स्वामित्व योजना में जिन भूखंडधारियों के अधिकार अभिलेख निर्मित किए गए हैं उन्हें आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए इन निर्मित अधिकार अभिलेखों का पंजीयन कराया जाए। इसके लिए डीड ऑफ कन्वेंस का निष्पादन और पंजीयन किया जाएगा ताकि नागरिक आवश्यकता अनुसार गृह निर्माण, व्यवसाय एवं कृषि संक्रियाओं आदि के लिए ऋण प्राप्त कर अपनी आजीविका एवं आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना सकें। मंत्री चैतन्य कश्यप ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लेकर भी जानकारी दी।
1: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के बारे में जन सुनवाई के कैंप और इसके विभिन्न स्तरों के ऊपर प्रचार माध्यम से इसमें जो सुझाव चाहिए जनता के वे सारे लेने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। तो इस कार्य को पूर्ण करके मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के ओर हम आगे कदम बढ़ाएंगे।
0: प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले सरकारी बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत बसें शुरू करने की तैयारी जोरों पर है ताकि रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों के घर आसानी से पहुंच सकें। बसों की शुरुआत पहले इंदौर से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी और दूरदराज के इलाकों में अब भी लोग जान जोखिम में डालकर लोडिंग वाहनों से सफर करने को मजबूर हैं और ये सेवा उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक यात्रा का विकल्प प्रदान करेगी।
2: आवागमन के साधनों के लिए बसों का इंतजाम करना ये हम सब की जवाबदारी है। हमारी सरकार के गठन के समय हमने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की जो घोषणा की थी अब धीरे धीरे करके हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इस साल का रक्षाबंधन बहनें अपनी बसों से जाएगी ये प्रयास कर रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे इस सेवा के माध्यम से राज्य के अंतर्वर्ती बाकी राज्यों के साथ भी इसका संबंध जोड़ते हुए यात्री परिवहन सेवा के रूप में आएगा।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में मानसून की तैयारियों की समीक्षा की। मौसम विभाग ने इस साल मानसून के सामान्य से कम यानी करीब 90% रहने और अलनीनो का असर पड़ने की आशंका जताई है। श्री चौहान ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि जिन इलाकों में कम बारिश की आशंका है वहां वैकल्पिक फसलों, सूखा सहनशील बीजों और जल प्रबंधन की पूरी तैयारी रखी जाए। भोपाल के चर्चित तुषार शर्मा संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई की 5 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद पूर्व जज गिरबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को कल विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजते हुए 16 जून तक भोपाल सेंट्रल जेल में रखने का आदेश दिया है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर पेश है एक विशेष रिपोर्ट।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इस बार का वैश्विक अभियान जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है और इसकी मेजबानी अजरबैजान कर रहा है। प्रदेश में भी इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारत की डिजिटल पेमेंट व्यवस्था में यूपीआई ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। मई 2026 में यूपीआई के जरिए 23.2 अरब यानी करीब 2312 करोड़ लेनदेन हुए, जिनकी कुल कीमत लगभग 30 लाख करोड़ रुपए रही। इसका मतलब है कि हर रोज औसतन 73 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए हुए हैं। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेब्स ओटीटी की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्ष से भी कम समय में पंजीकृत

उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि यह भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाली स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में नौतपा के दौरान मौसम ने पूरी तरह करवट ले ली है। पिछले 8 दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है, जिसके चलते गर्मी और लू का प्रभाव लगभग समाप्त हो गया है और न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में फिलहाल प्री मानसून गतिविधियां सक्रिय हैं। टर्फ लाइन और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई इलाकों में बारिश हो रही है। विशेषज्ञों के अनुसार इस बार मानसून 20 से 22 जून के बीच प्रदेश में दस्तक दे सकता है। अब रुख करते हैं क्रिकेट का। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल रात टॉन्टन में खेले गए तीसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय महिला टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 180 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में महिला स्व सहायता समूहों ने गेहूं उपार्जन अवधि में 7,712 किसानों से 5,27,000 क्विंटल से अधिक गेहूं की खरीदी की। खंडवा में कल युवा संगम रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जाएगा। झाबुआ कलेक्टर ने जिले के रामा में सचिवों और पटवारियों की कल बैठक ली और डिंडौरी में जल संचय जन भागीदारी अभियान के अंतर्गत 8 लाख से अधिक स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में जनजातीय गरिमा उत्सव का शुभारंभ करेंगी। प्रदेश में 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सिला हुआ गणवेश मिलेगा। प्रदेश कैबिनेट ने लिया निर्णय। रक्षाबंधन से पहले प्रदेश में चलेंगी सरकारी बसें। शुरुआत इंदौर से होगी और प्रदेश में मानसून 20 से 22 जून के बीच दे सकता है दस्तक। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 7:20 हो चुके हैं। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, आज का फिल्म संगीत एक श्रद्धांजलि स्वरूप हम आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत कर रहे हैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज गायिका पद्मभूषण से सम्मानित और एक ऐसी जादुई आवाज का इस दुनिया से चले जाना। श्रोताओ, होता क्या है कि जब कोई हस्ती इस दुनिया से चली जाती है, उसके बाद उसकी इतनी सारी विशेषताएं हमें याद आती हैं, जिसका जब हम कंपैरिजन करते हैं, हम सोचते हैं कि क्या बात थी, क्या शख्सियत थी इस दुनिया के अंदर। कभी मन करता है कि कभी हमें उनसे मिलना चाहिए था, बात करनी थी, रूबरू होके उनके चरण स्पर्श करने थे। क्योंकि श्रोताओं, इतनी सारी विशेषताएं याद आ जाती हैं कि सिर्फ आंखों के सामने एक ऐसी शख्सियत दिखाई देने लगती है जिसका कोई सानी नहीं होता, जिसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता। क्योंकि हर व्यक्ति जब इस दुनिया में जन्म लेता है तो वो अपनी विशेषताओं को लेकर प्रकट होता है और उसके अंदर की जो खूबियां होती हैं, जो विशेषताएं होती हैं, वो उसे उसको उसके क्षेत्र में चरम उत्कर्ष तक ले जाती हैं। सुमन कल्याणपुर की बात कर रहे हैं श्रोताओं। एक ऐसी चिरपरिचित आवाज जिसको बाइफरकेट कर पाना बड़ा मुश्किल हुआ करता था, आज भी मुश्किल है। मैं भी आपको एक गीत सुनाता हूं, उस गीत को सुनने से आपको लगेगा ही नहीं कि यह सुमन कल्याणपुर है। श्रोताओ, इतनी मीठी और सुरीली आवाज जो हूबहू लगभग सुर साम्राज्ञी लता जी से मिलती जुलती, आपको ये कह पाना बड़ा मुश्किल होगा, ये समझ पाना मुश्किल होगा कि क्या ये लता जी नहीं है। और जब हम आपसे कहेंगे कि ये आवाज सुमन कल्याणपुर की है, तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। श्रोताओं, पहले मैं आपको ये गीत सुनाता हूं, इस गीत को सुनिएगा और फिर आप स्वयं से परीक्षण कीजिए कि क्या यह आवाज सुमन कल्याणपुर की है। गीत सुनिए।

चले जा चले जा चले जा जहां प्यार मिले। श्रोता, फिल्म थी जहां प्यार मिले, आवाज सुमन कल्याणपुर की, गीत हसरत जयपुरी का और संगीत शंकर जयकिशन साहब का। अब आप बताइएगा मुझको कि इस गीत को सुनने के बाद कहीं से आपको लगा कि ये लता जी नहीं है? श्रोताओ, होता क्या है कि शख्सियत इस दुनिया में ऐसी ऐसी उपलब्ध है, ऐसी ऐसी इस जहां में है कि उनका किसी से कंपैरिजन करना बड़ा कठिन काम है। सुमन कल्याणपुर की आवाज का जादू जब इस फिल्म इंडस्ट्री पर चला, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण था। श्रोताओं, होता क्या है कि जब हम कभी जीवन के उच्च पायदान पर पहुंच जाते हैं, या कभी हमको ऐसा लगने लगता है कि शायद ये काम हमारे बिना संभव नहीं है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक ऐसा दौर था फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कि गायकी की जब बात चलती थी तो लता जी, रफी साहब, किशोर कुमार साहब, मुकेश, तलत महमूद साहब, हेमंत कुमार साहब, श्रोताओं, इन लोगों के इर्द गिर्द पूरी फिल्म इंडस्ट्री घूमती थी। अब उस दौर में, बात है 1958-60 के आसपास से, 60 से 70 के दशक की मान लीजिए आप, उस दौर में क्या हुआ कि रॉयल्टी को लेकर लता जी का फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसरों से एक विवाद पैदा हो गया। लता जी के द्वारा रॉयल्टी की मांग की गई। अब इस रॉयल्टी के चलते सबसे पहले रफी साहब ने कहा कि रॉयल्टी का जो एकाधिकार है वो प्रोड्यूसर का है, क्योंकि सारे जोखिम जो होते हैं उस फिल्म से संबंधित, जितने भी जोखिम होते हैं उन सबको उठाने का दायित्व उस प्रोड्यूसर का है, ना कि किसी गायक या गायिका का, ना किसी अभिनेता या अभिनेत्री का, या उसमें काम कर रहे किसी भी व्यक्ति विशेष का। बहुत सारी मान मनोबल किया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन लता जी इस बात पर तैयार नहीं हुई। तब लता जी के साथ सबसे पहले रफी साहब ने गीत गाने से इनकार कर दिया। बोले, अगर लता जी अपनी बात पर अड़ी रहती हैं तो मैं लता जी के साथ गीत नहीं गाऊंगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि अब लता जी के साथ या लता जी के बिना अब क्या किया जाए। तो श्रोताओं, एक ऐसी आवाज उभर कर सामने आई, आवाज तो पहले भी थी लेकिन उभर कर जब वो सामने आई तो लोग हतप्रभ रह गए। सुमन कल्याणपुर की आवाज, और लता जी ने भी अपने कई रेडियो इंटरव्यूज में इस बात को स्वीकार किया है कि हां, सुमन की आवाज हूबहू मुझसे मिलती थी, उनकी जो टोन थी वह भी मुझसे मिलती थी, और उनकी जो गायकी का अंदाज था वह भी मुझसे मिलता था। जब उस दौर में लता जी की तूती बोल रही थी

सुमन कल्याणपुर अपने आप को पदार्पण कर रही थी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। श्रोताओं, मैं एक गीत आपको सुनवा रहा हूं, सुमन कल्याणपुर का, रफी साहब के साथ गाया हुआ, बहुत ही खूबसूरत गीत है। हसरत जयपुरी साहब की रचना है, शंकर जयकिशन का संगीत है और सुमन जी की आवाज है रफी साहब के साथ। गीत सुनिएगा आप पहले।

बेटी बेटे। श्रोताओ, इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे रफी साहब के साथ सुमन कल्याणपुर को। गीत हसरजयपुरी साहब का था और संगीत शंकर जयकिशन का। श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं आज सुमन कल्याणपुर की। सुमन कल्याणपुर का इस दुनिया से जाना, उसे हम श्रोताओ जाना नहीं कहेंगे, उसे हम ये भी नहीं कहेंगे कि वे इस फानी दुनिया को अलविदा कह गई, क्योंकि किसी भी शख्सियत की जो विशेषता होती है वो विशेषता इस दुनिया में हमेशा जीवित रहती है। आज क्यों होता है कि हम लता जी को याद करते हैं? जब भी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में हम रफी साहब की बात करते हैं, श्रोताओं, ऐसी बहुत सारी शख्सियत और ऐसी बहुत सारी हस्तियां होती हैं दुनिया में जो कभी मिटती नहीं है, उनकी विशेषताएं कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वे ऐसी अनूठी विशेषता लिए हुए होते हैं, उनके साथ इतने सारे किस्से जुड़े होते हैं, इतनी सारी इंसानियत की बेमिसाल बातें जुड़ी होती हैं, जिनको कह पाना और समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। जब यह खबर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में फैली कि सुमन कल्याणपुर नहीं रही, तो एकदम सन्नाटा सा छा गया था कुछ देर के लिए। वो सारा कुछ एक पिक्चर के रूप में आपके सामने घूम गया। क्या आवाज थी, क्या शख्सियत थी, कोई अहंकार नहीं, कोई घमंड नहीं, किसी बात का गुरूर नहीं, इतनी सादा सिंपल और साधारण किस्म की महिला का इस दुनिया से चले जाना। श्रोताओं, 89 ईयर्स की, 89 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कहा। अब जाने के बाद लगता है कि क्या ऐसी शख्सियत से हमें मिलना नहीं चाहिए था। श्रोताओं, होता तो यही है कि जाने के बाद वो सब कुछ याद आता है। जब वो शख्सियत हमारे बीच में होता है, तब शायद हम उस शख्सियत के महत्व को नहीं समझ सकते, नहीं समझ पाते, लेकिन जब वो शख्सियत इस दुनिया से चली जाती है तो सिर्फ उसके बोल रह जाते हैं, उसकी यादें रह जाती हैं, एक स्मृति शेष रह जाता है।

पारस फिल्म का यह गीत सुमन कल्याणपुर की आवाज में भी आप सुन रहे थे। इंदिवर साहब की रचना थी और कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। इस समय सुबह के 7:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए आकाशवाणी शिवपुरी का सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी।

नमस्कार शिवपुरी कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और श्रोताओं, आज मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो मित्र योगेंद्र सिंह यादव। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज पार्श्व गायिका और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित सुमन कल्याणपुर जी का सोमवार को मुंबई के सांता क्रूज शमशान घाट में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में गणमान्य लोग, सरकारी अधिकारी और सांस्कृतिक जगत और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए दिग्गज लोग पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे थे। श्रोताओं, आपको बताएं कि इस महान गायिका का रविवार को देर शाम मुंबई स्थित उनके आवास पर 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। श्रोताओं, कई दशकों तक कायम रहे उनके संगीत में सफर का अंत हो गया। उनकी आवाज सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की आवाज से इतनी मिलती जुलती थी कि सामान्य रूप से कोई श्रोता कभी कभी दोनों को एक दूसरे की आवाज समझ बैठते थे। यूं तो फिल्मों में उनका सफर शुक्राची चांदनी और मंगू 1954 जैसी फिल्मों से शुरू हुआ, लेकिन उन्होंने कई सदाबहार गानों में अपनी आवाज दी। श्रोताओं, एक गीत आया था आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, नाना करते प्यार तुम्हें से कर बैठे, और एक गीत आया था ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने। श्रोताओं, होता क्या है कि कुछ व्यावहारिकता की अगर हम बात करें तो कई बार इस दुनिया के अंदर कुछ शख्सियत ऐसी होती है कि उन्हें पहचान पाना बड़ा कठिन होता है। वो शख्सियत की पहचान तब ज्यादा समझ में आती है जब वो हमसे कहीं दूर चली जाती है या इस पूरी फानी दुनिया को अलविदा कह देती है। सुमन कल्याणपुर एक ऐसी ही प्रतिभाशाली

और एक ऐसी ही व्यक्तित्व की, एक इंसानियत की, एक ऐसी शख्सियत थी। उस शख्सियत मैं कहूं आपसे कि ना कोई घमंड, ना कोई अहंकार, ना कोई गुरूर, सब कुछ साधारण, सब कुछ सामान्य। जब आप दुनिया के या किसी क्षेत्र के उच्च पायदान पर पहुंच जाते हैं, जहां पर आपकी अपनी एक खुद की एक पहचान होती है, तब आपके अंदर गुरूर आना, घमंड आना, अहंकार आना, ये बहुत सामान्य सी बातें होती हैं, सामान्य सी परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। उस हाइट पर पहुंचने के बाद अपने आप को सामान्य रूप से बनाए रखना, यह बहुत बड़ी एक विलक्षण प्रतिभा और कहते हैं कि विलक्षण इंसानियत के रूप में पैदा हुई शख्सियत होती है। सुमन जी एक ऐसी ही शख्सियत थी। श्रोताओ, आज हम अपने 8:30 के कार्यक्रम में, 9:30 के कार्यक्रम में, 10:30 बजे के फिल्म संगीत के कार्यक्रम में सुमन कल्याणपुर की बखूबियों को, उनकी शख्सियत की, ईमानदारी की, उनकी जो पहचान जिस क्षेत्र में जिस वजह से है, बहुत सारी गीत आपको सुनवाएंगे, उनके बारे में बताएंगे आपको कि ऐसे ही कोई महान नहीं हो जाता। महान बनने के लिए एक ऐसी विलक्षण प्रतिभा और योग्यता होती है जो उसे महानता की ओर ले जाती है। सुमन जी उनमें से एक थी। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने मशहूर गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी गायकी से देश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि मशहूर गायिका सुमन कल्याणपुर जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ। उनकी मधुर आवाज और भावपूर्ण गायकी ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया। अपने गीतों के माध्यम से उन्होंने संगीत प्रेमियों और भारतीय सिनेमा के प्रशंसकों के हृदय में एक विशेष स्थान बनाया। उनके परिवारजनों और असंख्य प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं, शांति। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर गायिका के साथ अपनी एक तस्वीर भी साझा की। वो सुमन कल्याणपुर के सामने जो तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की है, मैं आपको बताऊं कि मोदी जी हल्का सा सिर झुकाए, हाथ जोड़कर सुमन कल्याणपुर के सामने खड़े हैं। सामने से सुमन जी अपने हाथों को जोड़े हुए मोदी जी के इस अभिवादन को सहर्ष स्वीकार कर रही हैं। श्रोताओं, बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जिन्हें एक कार्यक्रम में समेट पाना बड़ा मुश्किल है। समय समय पर हम सुमन जी को श्रद्धांजलि स्वरूप कुछ बातचीत के जरिए, उनकी गाए हुए गीतों के जरिए, उनकी सुमधुर आवाज के जरिए आपको याद दिलाते रहेंगे। आकाशवाणी परिवार शिवपुरी की ओर से इस दिग्गज पद्मभूषण से सम्मानित गायिका सुमन जी को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम अपने युवा श्रोताओं से भी कई बार बहुत सारी इंस्पिरेशन वाली बातचीत भी करते हैं, उन्हें बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। श्रोताओं, कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे युवा साथी पढ़ते भी अच्छे हैं, लिखते भी बढ़िया हैं, लेकिन जब वो सामने जाते हैं, या कहें कि हम जब साक्षात्कार के लिए एक कमेटी के, इन इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाते हैं, तो गड़बड़ा जाते हैं। क्योंकि होता क्या है, किताबी ज्ञान एक अलग बात है और आपका व्यावहारिक ज्ञान और आपके व्यक्तित्व के अंदर की जो क्षमता होती है उसका मूल्यांकन होता है इंटरव्यू बोर्ड के सामने, कि आप अपने आप को सामने वाले के प्रति फेस कर पाते हैं या नहीं। सामने वाले की योग्यता, जो इंटरव्यू बोर्ड में जो सदस्य बैठे होते हैं, जो मेंबर होते हैं

0: जो उनके चेयरपर्सन होते हैं वो बड़े नेचुरल तरीके से बैठे होते हैं, बड़ा एक खुशनुमा माहौल आपके सामने लाते भी हैं और बड़ी समझदारी से आपसे प्रश्न करना पूछ शुरू करते हैं और पूछते भी हैं, तब आपका वहां पर व्यवहारिक ज्ञान काम आता है। इसलिए हम अपने सभी युवा श्रोताओं से कहते हैं कि पढ़ने और लिखने के बाद आप एक काम अवश्य करिए, अपनी मेजॉरिटी में बैठिए, खुलकर हंसिए, खुलकर बात करिए और खुलकर ज्ञान अर्जन के साथ अपने ज्ञान को बांटिए भी। कुछ घटनाओं का जिक्र कीजिए, कुछ बातों का जिक्र कीजिए, अपने परिवार की बातें कीजिए, अपने मित्रों की बातें कीजिए। और जैसे आज हम बात कर रहे हैं पद्म भूषण से सम्मानित सुमन कल्याणपुर जी की, तो सुमन कल्याणपुर जी की बात कीजिए। श्रोताओं, सुमन कल्याणपुर जी का जाना और उनके बीच की बातों का जब आप बातचीत करेंगे आपस में बैठ के, तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी और आप खुलकर जब बात करने लगेंगे तो इंटरव्यू बोर्ड के सामने भी आपका अपना व्यक्तित्व और ज्ञान ही काम आएगा और कोई सी गुण विद्या आपके काम नहीं आएगी। जो गुण विद्या आपने स्वयं अर्जित की है वो काम आएगा। तो हम सभी युवा साथियों से यही कहना चाहते हैं कि अपने आप को योग्य बनाइए, प्रतिभाशाली बनाइए, अपने को क्षमतावान बनाइए। अपनी क्षमताओं को कम करके मत आंकिएगा, क्योंकि ईश्वर ने क्षमताएं योग्यता लगभग सबको दी है, प्रकृति प्रदत्त है। सिर्फ गलती कहां होती है कि हम उस क्षमता का, उस प्रकृति का या प्रकृति के द्वारा दिए गई विशेषताओं का उपयोग किस तरह से करते हैं। सुमन कल्याणपुर जी बनना तो चित्रकला की मास्टर बनना चाहती थी, लेकिन चित्रकला उन्होंने सीखी, लेकिन इस दौरान जब उन्हें एक नई दिशा और दशा मिली तो उन्होंने जो परचम लहराया, हम क्यों कहते हैं कि आज भी आम श्रोता को यह कठिन हो जाता है कि यह आवाज लता जी की है या सुमन कल्याणपुर की, इसको पहचानना मुश्किल हो जाता है। यही एक बहुत बड़ी विशेषता होती है किसी भी व्यक्तित्व की, किसी भी इंसान की। श्रोताओं, आपको बताएं कि उच्चतम न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है और इन 5 न्यायाधीशों में हमारे मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधिपति या मुख्य न्यायाधीश हम कहें, चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश इन एमपी हाईकोर्ट, माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव सचदेवा साहब भी सुप्रीम कोर्ट में अब न्यायमूर्ति के रूप में कार्य करेंगे। श्रोताओं, इसी में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू जी भी, जिन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के रूप में शुरुआत की थी, वे भी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति चंद्रशेखर जी और जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरुण पल्ली शामिल हैं। और इसमें श्रोताओं, एक बहुत बड़ी बात आपको बताऊं कि उच्चतम न्यायालय की यानी कि सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट वी एस मोहना, इन शॉर्ट में वी मोहना या वी एस मोहना भी कहते हैं, उन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाया गया है। वे दूसरी महिला हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सीधे न्यायाधीश बनी है। यह गर्व की बात होती है, ये उन महिलाओं के समर्पण के लिए या उस समर्पित व्यक्तित्व के लिए हम गर्व महसूस कर सकते हैं कि आप देखिए कि प्रतिभा और क्षमता की जब बात चलती है तो कैसे किसी व्यक्तित्व के अंदर कूट कूट के भर जाती है, और इसे कहते हैं कूट कूट कर भरना, क्योंकि यही क्षमता और यही प्रतिभा और यही योग्यता आपको उस क्षेत्र के उच्चतम स्तर पर ले जाकर स्थापित कर देती है जिस क्षेत्र में आपने अपने प्रतिमान स्थापित किए। न्यायमूर्ति वी मोहना भी एक ऐसी ही शख्सियत है, लगातार माननीय उच्चतम न्यायालय में कार्य करने के दौरान उन्होंने एक से एक प्रकरणों में पैरवी की, और इस बात से इस बात की प्रामाणिकता है, उनके कार्यों की विलक्षण प्रतिभा है, उनकी योग्यता है, जो उन्हें सीधे माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्ति के रूप में पदस्थ किया गया है। श्रोताओ, अब इन सभी सूचनाओं के साथ अब अपने रेडियो मित्र योगेंद्र सिंह यादव को कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार शिवपुरी।
0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी शिवपुरी का सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। सुबह के 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
1: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डी के शिवकुमार बेंगलुरु के लोक भवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डी के शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का

0: औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं है। नवन्नों में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक नगर पालिकाएं और कलकत्ता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काशफिन नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
3: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
2: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
4: लगभग 1 साल से यहां से दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
2: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर

0: व्यक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, CBSE चेयरमैन और सचिव हटाए गए, OSM टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, CBSE ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायक

0: का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें ना विचारधारा की चिंता रहती है और ना ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल। अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना। पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Venezuela's acting President Delcy Rodriguez to be on a 5-day visit to India beginning today. Senior Congress leader DK Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari to launch Annapurna Yojana to provide 3,000 rupees every month to eligible women in the state today. Bangladesh Foreign Minister Khalilur Rahman, elected President of 81st Session of UN General Assembly. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar congratulates him. Germany removes airport transit visa requirement for Indian nationals beginning today. New Delhi says the move will further enhance people-to-people ties between India and Germany. And in women's cricket, hosts England beat India by 6 wickets in third and final T20 international to seal 3-match series 2-1. And now the news in detail. Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, will be on a 5-day visit to India beginning today. She will be accompanied by a high-level delegation, including Ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance, and Science and Technology. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said Ms. Rodriguez will hold bilateral discussions with Prime Minister Narendra Modi during her visit.
3: The discussions will involve full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation in the areas of energy, trade, investment, pharmaceuticals, healthcare, transportation and renewable energy. India is an important partner of Venezuela in the areas of energy and investment. Indian public sector undertakings have made significant investment in Venezuela in the energy sector and they are keen to explore more opportunities to further enhance their presence.
2: Our correspondent has filed this report.
4: India and Venezuela share friendly relations, particularly in the areas of energy and trade. The visit is expected to strengthen bilateral ties and deepen cooperation between the two countries across several sectors. The Venezuelan delegation will visit facilities related to the energy, pharmaceutical and automobile sectors. The visit aims to explore opportunities for collaboration and gain insights into India's technological and industrial capabilities. With Ishani and Dipendra, Tripti Srivastava, Akashwani News, Delhi.
2: Senior Congress leader DK Shivkumar will be sworn in as Chief Minister of Karnataka today. Governor Thawar Chand Gehlot will administer the oath of office and secrecy to Mr. Shivkumar and members of new cabinet at Lok Bhavan in Bengaluru at 4:05 p.m. More from our correspondent.
5: After Siddaramaiah stepped down as CM on May 28, the Congress Legislature Party had elected 64-year-old D.K. Shivakumar as its leader, paving the way for him to assume the office today. Congress leader Rahul Gandhi, National President Mallikarjun Kharge, Congress General Secretaries K.C. Venugopal and Randeep Singh Surjewala, and some Congress chief ministers, religious leaders, laborers, writers, actors, and prominent businessmen and industrialists have been invited for

0: Reports Trump slams Netanyahu over Lebanon offensive. Times of India informs El Nino is rapidly developing and is set to impact global temperature and rainfall patterns under the headline World Meteorological Organization's El Nino Alert raises odds of severe impact on monsoon with 80% chance of onset during June-August period. And finally, under a piece titled Tigress Zenith Gives Birth to Four Cubs in Odisha Simlipal, the Hindu informs the translocation effort aimed at enhancing the genetic diversity of tigers in Odisha's Simlipal Tiger Reserve has received major boosting, adding a proud chapter to Odisha's natural resources and wildlife conservation efforts. With that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Venezuela's acting President Delcy Rodriguez to be on a five-day visit to India beginning today. Senior Congress leader D.K. Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari to launch Annapurna Yojana to provide 3,000 rupees every month to eligible women in the state today. Bangladesh Foreign Minister Khalilur Rahman elected President of 81st Session of UN General Assembly. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar congratulates him. And in women's cricket, hosts England beat India by 6 wickets in third and final T20 International to seal 3-match series to 1. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: मीडियम वेव 188
3: हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 8:30 हुए हैं। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है और श्रोताओं, आज मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो मित्र योगेंद्र सिंह यादव। श्रोताओं, आज हम आपको इस कार्यक्रम में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज गायिका, जिनका गत सोमवार को मुंबई में अंतिम संस्कार किया गया, स्वरों की मधुर साधिका या हम कहें कि स्वरों की मल्लिका सुमन कल्याणपुर इस दुनिया में नहीं रही। इस फानी दुनिया को उन्होंने गत रविवार को 89 वर्ष की उम्र में मुंबई में अपने आवास पर अलविदा कह दिया। श्रोताओं, धीरे धीरे करके भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी दिग्गज हस्तियों का जाना भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नुकसान है, एक अपूर्णीय क्षति है। अभी हाल ही में आशा जी का जाना, उसके बाद इस देश के प्रसिद्ध शायर डॉक्टर बशीर बद्र का जाना, एक ऐसा खालीपन है, एक ऐसा सूनापन है। और अब सुमन कल्याणपुर का जाना, जिसको हम किसी अन्य रास्ते से नहीं भर सकते। कुछ शख्सियतें, कुछ इंसान इस पृथ्वी पर ऐसे होते हैं जिनका कोई सानी नहीं होता, जिनका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं होता। सुमन जी एक ऐसी प्रख्यात गायिका थी, एक ऐसी विलक्षण प्रतिभा की गायिका थी, जिनकी आवाज हू बहु, जिनका स्वर, जिनकी टोन, जिनका आरोह अवरोह हू बहु हमें असमंजस में डाल देता था। लगता था कि ये लता जी हैं कि सुमन जी हैं, हम अंतर नहीं कर पाते थे। सामान्य श्रोता तो कतई कर ही नहीं सकता। एक गीत आपको सुनवा रहे हैं, पहले यह गीत सुनिए आप, उसके बाद हम आपसे उनकी विलक्षण प्रतिभा की बात करेंगे।

बात एक रात की। श्रोताओ, इस फिल्म में भी आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर को, गीत मजरूह सुल्तानपुरी, कथा संगीत एसडी बर्मन साहब का। क्या फर्क कर पाए गीत को गाते हुए स्वरों की लहरियों को किस टोन में कैसे परिवर्तित करना है और कैसे उसे आरोह अवरोह के साथ प्रदर्शित करना है, यह कला सुमन जी के पास थी और सुमन जी ने इसी कला के बलबूते अपने आप को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित किया। श्रोताओ, हमने अपने पूर्व के कई कार्यक्रमों में भी इस बात की चर्चा की थी और आज भी इस कार्यक्रम की चर्चा कर चुके हैं कि जब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज गायिका लता जी और फिल्म प्रोड्यूसरों के बीच में रॉयल्टी को लेकर एक विवाद हुआ, उस विवाद के चलते लता जी ने गीत गाने से इनकार कर दिया था। रॉयल्टी को लेकर एक मुंबई हाई कोर्ट में भी एक विवाद पहुंचा था, लेकिन वहां के तत्कालीन न्यायमूर्ति की अपनी सूझबूझ से उस प्रकरण को बिना किसी निर्णय के समाप्त कर दिया गया और लता जी को इस समझाइश के साथ ये प्रकरण वापस लेने की सलाह दी गई थी कि अगर इस पर निर्णय आया तो यह निर्णय आगे आने वाले सारे कलाकारों के लिए एक माइलस्टोन हो जाएगा, तब आपके पास शेष कुछ भी नहीं बचेगा, आप सोच लीजिए समझ लीजिए। और इस रॉयल्टी के विवाद को समझने के लिए तत्कालीन न्यायमूर्ति न्यायाधीश ने सिर्फ भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे इंसान को बुलाया था जिसकी इंसानियत पूरी दुनिया में फैली हुई थी, उसके चर्चे हर जुबान पर थे, वो थे रफी साहब। रफी साहब को माननीय न्यायमूर्ति महोदय ने न्यायालय में बुलाकर सिर्फ इस रॉयल्टी की असलियत को जानने का प्रयास किया था और रफी साहब ने जो कहा, जो बताया, वो एकदम सटीक और सुनिश्चित था। उन्होंने एक ही शब्द में कहा था कि हम क्या जोखिम लेते हैं, जोखिम तो प्रोड्यूसर लेता है, जो प्रोडक्शन कंपनी जोखिम लेती है जो फिल्म पर पैसा लगाती है, हम तो एक अनुबंध के तहत अपनी फीस निर्धारित करते हैं और उसे प्राप्त करते हैं, उसके बाद हमारा एकाधिकार समाप्त हो जाता है। एकदम सटीक बात थी। जो जोखिम लेगा, जो जोखिम उठाएगा, उसका लाभ भी उसी को प्राप्त होना चाहिए। श्रोताओ, इस तरह के कुछ विवाद आम जिंदगी में भी होते हैं, आपसी परिवार में भी होते हैं, आपसी रिश्तों में भी होते हैं, लेकिन रिश्तों की खटास वहां तक नहीं जानी चाहिए जो किसी बुरे दौर में परिवर्तित हो जाए। इन सारी वाक्यों को, इन सारी चीजों को सुमन कल्याणपुर ने दरकिनार करते हुए और उस दौर में एक पार्श्व गायिका के रूप में अपने आप को इस तरह से स्थापित किया कि रफी साहब के साथ उनकी जो जोड़ी जमी, तो आज भी आप इस बात को कहने पर मजबूर हैं और आप सोच सकते हैं कि क्या वाकई ये आवाज सुमन जी की है या लता जी की। मैं गीत आपको सुनवा रहा हूं, रफी साहब के साथ सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ, हसरत जयपुरी साहब की रचना है, शंकर जयकिशन साहब का संगीत है। गीत को सुनिए बहुत गहनता से और सूक्ष्मता से, उसके बाद बताइएगा कि क्या शख्सियत इस दुनिया से चली।

0: दिल एक मंदिर। श्रोता, इस फिल्म में भी आप सुन रहे थे रफी साहब के साथ सुमन कल्याणपुर को, गीत हजरत जयपुरी साहब का था और संगीत शंकर जयकिशन का। श्रोताओ, कार्यक्रम अभी जारी है, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: ब्रेक के बाद इस कार्यक्रम में श्रोताओं एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज गायिका सुमन कल्याणपुर जी की, जिनका हाल ही में मुंबई में निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। श्रोताओं, आपको बताएं कि उनका जो जन्म हुआ था, सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को तब अविभाजित भारत यानी कि तत्कालीन ब्रिटिश भारत के ढाका में हुआ था। ढाका जो कि बांग्लादेश की अब राजधानी है। 1971 में एक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया गया था और तब से बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में कार्य कर रहा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका जो कि अविभाजित भारत में, तत्कालीन ब्रिटिश भारत में भी कह सकते हैं, वहां हुआ था। और उनका जो जन्म का जो नाम था वो था सुमन हेम्माडी। उनके पिता शंकर राव हेम्माडी कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंडापुर तालुक स्थित हेम्माडी गांव के एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार से थे और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में उच्च पद पर कार्यरत थे। लंबे समय तक ढाका में वे पदस्थ रहे। उनकी माता का नाम सीता हेम्माडी था। श्रोताओं, सुमन कल्याणपुर के परिवार में कुल 5 बहनें और एक भाई था, जिसमें सुमन सबसे बड़ी थी। और वर्ष 1943 में यानी कि तब भी अविभाजित भारत में उनका परिवार ढाका से मुंबई आ गया था, जहां उनकी शिक्षा और संगीत प्रशिक्षण की शुरुआत हुई। सुमन कल्याणपुर को बचपन से ही चित्रकला और संगीत में गहरी रुचि थी। सुमन कल्याणपुर ने मुंबई के प्रसिद्ध सेंट कोलंबा हाई स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर प्रतिष्ठित सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में चित्रकला की पढ़ाई के लिए

प्रवेश लिया और इसी दौरान उन्होंने पुणे के प्रभात फिल्म्स के संगीत निर्देशक और पारिवारिक मित्र पंडित केशव राव भोले से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेना शुरू की और इसके बाद उन्होंने उस्ताद अब्दुल रहमान खान और गुरु मास्टर नवरंग से भी संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनकी छोटी बहन श्यामा हिमाड़ी भी एक गायिका रही हैं। सुमन कल्याणपुर ने, ये हमारे ऑल इंडिया रेडियो के लिए बहुत गर्व की बात है कि सुमन कल्याणपुर ने वर्ष 1952 में ऑल इंडिया रेडियो पर पहली बार सार्वजनिक रूप से गायन किया था। इसके बाद वर्ष 1953 में उन्हें मराठी फिल्म शुक्राची चांदनी में गीत गाने का अवसर मिला। हिंदी फिल्मों में उनकी शुरुआत वर्ष 1954 में फिल्म मंगू से मानी जाती है, जिसमें उनका गीत कोई पुकारे धीरे से शामिल किया गया था और इसी वर्ष यानी कि वर्ष 1954 में फिल्म दरवाजा में संगीतकार नौशाहत साहब के निर्देशन में कई गीत गाए, जिससे उनकी शुरुआती हिंदी फिल्मों में प्रमुख माना जाता है। नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा एक गीत है। मुकेश के साथ सुमन जी ने ये जो गीत गाया है, इस गीत की मधुरता पर आप ध्यान दीजिए, इस गीत की स्वर लहरियों पर ध्यान दीजिए, इस गीत को

साथी फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश के साथ सुमन कल्याणपुर को। गीत मजरूह सुल्तानपुरी का था और संगीत नौशाद साहब का। श्रोताओं, नौशाद साहब ने जब सुमन कल्याणपुर को फिल्म इंडस्ट्री में ब्रेक दिया और ब्रेक दिलवाने में सबसे बड़ी भूमिका थी तलत महमूद साहब की। कहते हैं कि कोई तो पीछे होता है जो उसे आगे का रास्ता दिखाता है। श्रोताओं, जेआरडी टाटा साहब की एक बात यहां पर याद आती है। वे कहा अक्सर कहा करते थे कि आगे बढ़ते रहो, आगे का रास्ता अपने आप आगे मिल जाएगा। आप देखकर रुकिएगा नहीं, आप यह सोचकर मत बैठिएगा कि अब रास्ता बंद है। रास्ता वहीं से खुलता है जहां से बंद होता है। यही इस दुनिया की खूबसूरती है और यही एक रहस्य है जो इस रहस्यमयी दीवार को तोड़ने की क्षमता रखता है। यह कहना चाहिए कि इस दुनिया में जो व्यक्ति अपने आप पर, अपनी क्षमताओं पर भरोसा करता है, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखता है, वह इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। उसके लिए नामुमकिन शब्द बहुत छोटा है, क्योंकि वह वहीं से रास्ता खोज लेता है जहां से रास्ता बंद होने की शुरुआत होती है। सुमन कल्याणपुर भी एक ऐसी ही शख्सियत थी जिन्होंने जब जीवन की शुरुआत की और अपने आप को जिस क्षेत्र में पारंगत किया तो वहां से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इतने उच्च पायदान पर पहुंचने के बाद भी बिल्कुल साधारण, इतनी साधारण कि लाजवाब, ना कोई घमंड, ना कोई गुरूर, ना कोई अहंकार। श्रोता, मुकेश के साथ सुमन कल्याणपुर का गाया एक गीत आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत को कंपोज किया है कवालियों के कंपोजिंग मास्टर रोशन साहब ने। इस गीत को सुनिएगा।

दिल ही तो है। श्रोता, इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे मुकेश के साथ सुमन कल्याणपुर को। गीत साहिल लुधियानवी का था और संगीत रोशन साहब का। श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बज चुके हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम लोक रंग में आज हम आपको स्वर्णलता ब्राउन और गोपाल कुमार वार्ष्णेय के गाए लोकगीत सुनवा रहे हैं। कार्यक्रम का आरंभ स्वर्णलता ब्राउन के गाए इस लोकगीत से, लीजिए सुनिए।

स्वर्ण लता ब्राउन की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये लोकगीत। श्रोताओं आपको बता दें कि लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। स्वर्ण लता ब्राउन की आवाज में सुनिए ये लोकगीत।

स्वर्ण लता ब्राउन की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये लोकगीत। श्रोताओ, लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। स्वर्ण लता ब्राउन की आवाज में सुनिए एक और लोकगीत।

0: स्वर्णलता ब्राउन की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये लोकगीत। श्रोताओं, लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं गोपाल कुमार वार्ष्णेय के गाया ये लोकगीत। लीजिए सुनिए।

0: गल सरकार झूठा होले होले गई।
1: गोपाल कुमार वाषणेय की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये लोकगीत। श्रोताओं, लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति लीजिए, सुनिए

गोपाल कुमार वार्ष्णेय की आवाज में भी आप सुन रहे थे यह लोकगीत। इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, आज के और इस फिल्म संगीत में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, आज का यह कार्यक्रम भारतीय हिंदी फिल्म संगीत की स्वर्णिम दौर की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर ने गत रविवार को 89 वर्ष की उम्र में अपने मुंबई स्थित आवास पर जीवन की अंतिम सांस ली। अश्रुपूरित श्रद्धांजलि आकाशवाणी परिवार शिवपुरी की ओर से हम उन्हें अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। उनकी जो सबसे बड़ी खासियत थी वो ये थी कि श्रोताओं, जब आप किसी क्षेत्र के उच्च पायदान पर पहुंच जाते हैं, उच्च श्रेणी वर्ग में जब आपकी गिनती होने लगती है, तब लाजमी है कि अहंकार, गुरूर और घमंड एक स्वाभाविक प्रकृति प्रदत्त प्रक्रिया है जीवन की। बहुत कम लोग होते हैं जो इन सबसे बच पाते हैं। सुमन कल्याणपुर एक ऐसी हस्ती थी, एक ऐसी शख्सियत थी जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के स्वर्णिम दौर में एक ऐसा दौर आया जब सुर साम्राज्ञी लता जी ने फिल्म प्रोड्यूसरों से रॉयल्टी के विवाद के चलते गाने से मना कर दिया था और विवाद माननीय न्यायालय तक भी गया, लेकिन सब कुछ बाद में ठीक हो गया। लेकिन उस दौर में जब यह गहमा गहमी चल रही थी, तब एक ऐसी गायिका ने पदार्पण किया और उन्होंने अपनी बेमिसाल गायकी से लोगों के दिल को छुआ, मन को छुआ, मस्तिष्क को छुआ, उनकी आत्मा को छुआ। जिसने भी सुना, सिर्फ प्रकांड पंडित ही ये कह पाए कि ये लता जी की आवाज नहीं है। इस क्षेत्र के जानकार ही इस बात को समझ पाए कि ये लता जी नहीं, सुमन है, जबकि सुमन ने अपनी बेमिसाल गायकी से, अपनी गायकी और प्रतिभा की दम पर इस क्षेत्र में अपने आप को सर्वोत्कृष्ट साबित किया। श्रोताओं, ब्रह्मचारी फिल्म में एक गीत है, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर। जब ये गीत बाजार में आया, लोगों ने पर्दे पर शम्मी कपूर साहब को थिरकते हुए देखा और जब इस गीत को सुना गया तो वाकई सुमन जी के चर्चे भी हर जुबान पर थे कि क्या गायकी है, क्या गाना गाया है, कहीं से नहीं लगता कि ये लता जी नहीं है। जबकि वास्तविक तथ्य यह है, वास्तविकता और सत्यता भी यही है

यह आवाज सुमन कल्याणपुर की है। रफी साहब के साथ सुमन कल्याणपुर का गाया ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर। हसरत जयपुरी साहब की रचना है, शंकर जयकिशन का संगीत है। गीत सुनिएगा।

ब्रह्मचारी फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे रफी साहब के साथ सुमन कल्याणपुर को। गीत असर है जयपुरी का था, संगीत शंकर जयकिशन का। श्रोताओ, आकाशवाणी शुपरी की ओर से यह श्रद्धांजलि कार्यक्रम समर्पित है आज स्वरों की मधुर साधिका सुमन कल्याणपुर जी को, जिन्होंने अपनी गायकी से देश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मशहूर गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी गायकी से देश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि मशहूर गायिका सुमन कल्याणपुर जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ। उनकी मधुर आवाज और भावपूर्ण गायकी ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया। अपने गीतों के माध्यम से उन्होंने संगीत प्रेमियों और भारतीय सिनेमा के प्रशंसकों के हृदय में एक विशेष स्थान बनाया। उनके परिवारजनों और असंख्य प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं और शांति। माननीय श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर गायिका सुमन कल्याणपुर के साथ अपनी एक तस्वीर भी साझा की। उस तस्वीर में मोदी जी दोनों हाथ जोड़कर, सिर को हल्का सा झुकाकर, आंखें बंद करके सुमन कल्याणपुर के सम्मान में अपना सम्मान प्रदर्शित कर रहे हैं। वहीं सामने से सुमन कल्याणपुर जी दोनों हाथों को जोड़कर अपनी दृष्टि को मोदी जी के सम्मुख प्रतिबिंबित कर रही हैं उनके सम्मान में। श्रोताओ, कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जिनके जाने के बाद यह पता चलता है कि आखिर वो शख्सियत थी क्या। उनकी उन मूलभूत विशेषताओं से हम अवगत होते हैं जो उसके अंदर थी, अंदर होती हैं। किसी के जाने का गम क्या होता है यह तो सिर्फ वही जानता है जो उस व्यक्ति के दिल और मन में, मस्तिष्क में रचा और बसा होता है। उस व्यक्ति की मधुरता और उस व्यक्ति की तमाम विशेषताओं को सिर्फ वही पहचान सकता है जिसके अंदर उस व्यक्तित्व को पहचानने की क्षमता हो, वरना इस दुनिया में रखा क्या है। जब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में गायकी का दौर बुरे दौर से प्रभावित था, लता जी के गायकी से मना करने के उपरांत, क्योंकि रॉयल्टी के चलते एक विवाद पैदा हुआ था, उस समय सुमन कल्याणपुर ने उसकी जो भरपाई की थी वो शायद कोई नहीं कर सकता था। रफी साहब की जुगलबंदी में उन्होंने एक ऐसा और माइलस्टोन गीत गाया। आपने यह गीत अगर सुना होगा तो आपको सहज रूप से विश्वास नहीं होगा कि यह लता जी की आवाज नहीं है। नाना करते प्यार तुम इसे कर बैठे, करना था इनकार इकरार तुम इसे कर बैठे। ये गीत सुनिएगा, उसके बाद आगे की बात करते हैं आपसे।

नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, महान गायिका का रविवार देर शाम मुंबई स्थित उनके आवास पर 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कई दशकों तक कायम रहे उनके उल्लेखनीय संगीतमय सफर का अंत हो गया। उनकी आवाज सुरों की रानी लता मंगेशकर की आवाज से इतनी मिलती जुलती थी कि सामान्य श्रोता कभी कभी दोनों को एक दूसरे की आवाज समझ बैठते थे। श्रोताओं, आपको बताएं कि सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भारत के ढाका में हुआ था, जो अब बांग्लादेश की राजधानी है। 1971 में एक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से अलग हुआ। पाकिस्तान 1947 में भारत से विभाजित होकर एक नया स्वतंत्र देश बना था। श्रोताओं, सुमन कल्याणपुर के जो फिल्मी करियर की शुरुआत हुई वो वर्ष 1954 में हुई। और यहां आपको यह बताना भी जरूरी है कि 1960 और 70 का दशक उनके लिए बेहद ऊंचाई पर ले जाने वाला रहा। 1937 में जन्म हुआ, 1954 में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, 1958 में मुंबई के एक व्यवसायी रामानंद कल्याणपुर से उनकी शादी हुई। शादी के बाद रामानंद कल्याणपुर उनके हर गीत की रिकॉर्डिंग में उनके साथ जाया करते थे। श्रोताओं, ऐसा कहा जाता है कि एक संगीत समारोह में तलत महमूद साहब ने सुमन कल्याणपुर की गायकी से अत्यंत प्रभावित होकर उन्हें फिल्मी दुनिया में अवसर दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। श्रोताओं, यह ठीक उसी तरह होता है जब किसी व्यक्ति की उच्च श्रेष्ठ पराकाष्ठा के पीछे, उच्चतम पायदान पर पहुंचने के पीछे किसी व्यक्ति विशेष का बहुत बड़ा योगदान होता है और वो व्यक्ति हमेशा डार्क में रहता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि उस शख्सियत के पीछे, उस शख्सियत के जाने पहचाने चेहरे के पीछे एक अनजान सा चेहरा, जिस चेहरे को सिर्फ वह चेहरा जानता है, जिस चेहरे को दुनिया जानती है, और उस चेहरे के पीछे वो चेहरा होता है जो उस चेहरे को ऊंचाई तक ले जाता है। यही एक ऐसी विशेषता होती है, एक ऐसी विलक्षण

प्रतिभा होती है जिसे ना तो हर कोई समझ सकता है ना हर कोई जान सकता है। यही दुनिया का रंगमंच है और यही दुनिया की खूबसूरती है कि लोग आते हैं, जन्म लेते हैं और चले जाते हैं। मुकेश जी के साथ सुमन कल्याणपुर का गाया, इंदिवर साहब का लिखा, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया एक खूबसूरत गीत आपको सुनवा रहे हैं। लीजिए, सुनिए।

पहचान फिल्म का ये गीत मुकेश के साथ सुमन कल्याणपुर, गीत इंदिवर साहब का और संगीत शंकर जयकिशन साहब का। श्रोताओ, इस नश्वर संसार में सिर्फ शरीर ही नाशवान है, आत्मा अमर है। जो हमारी रूह होती है ना, ये अमर है। सुमन जी अपनी गायकी की दम पर, अपनी आवाज की दम पर, अपनी इंसानियत की दम पर उच्च पायदान पर पहुंचने के बाद न किसी बात का घमंड, न किसी बात का अहंकार, न किसी चीज का गुरूर। ऐसी बातें, ऐसा व्यवहार, ऐसी सांस्कृतिक विरासत हम भारतीयों के अंदर है जो दूर दूर तक हमें बेमिसाल बनाती है। अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हम आकाशवाणी परिवार शिवपुरी की ओर से सुमन जी को। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में उनकी धाक तब भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। उन्होंने जिस लताजी की रिक्तता को उस दौर में जब रॉयल्टी का विवाद चला था और फिल्म इंडस्ट्री को एक ऐसी गायिका की जरूरत थी, उस जरूरत को यदि आज हम याद करें। आपको याद है कोरोना काल में ऑक्सीजन की जरूरत किस तरह पड़ी थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत किस तरह पड़ी थी। ठीक उस दौर को याद कीजिए, तब सुमन जी ने अपने आप को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए गायकी के तौर पर झोंक दिया था।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है झाबुआ जिले की चिट्ठी। आलेख हरीश कुमार यादव का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत जिले में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत खेती के तरीकों और शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 10 दिवसीय कृषि रथ अभियान का शुभारंभ किया गया है। कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने बीते दिनों कृषि रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के माध्यम से गांवों में किसानों को ई टोकन आधारित उर्वरक वितरण प्रणाली, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जैविक एवं प्राकृतिक खेती, पराली प्रबंधन और संतुलित उर्वरक उपयोग जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर बीते दिनों व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। देखें, साफ करें, ढकें, डेंगू को हराने के उपाय करें थीम पर आधारित इस अभियान के तहत डेंगू जन जागरूकता प्रचार रथ को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया। प्रचार रथ के माध्यम से डेंगू एवं चिकनगुनिया से बचाव संबंधी संदेश प्रचारित किए जा रहे हैं। जिला चिकित्सालय झाबुआ में डेंगू की जाँच निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की समय पर सहायता कर उसकी जान बचाने वाले झाबुआ निवासी भावेश सोलंकी को बीते दिनों राहवीर योजना के तहत प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। रोगी कल्याण समिति की कार्यकारिणी बैठक में जिला चिकित्सालय भवन का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने, सोनोग्राफी उपकरण क्रय करने, पार्किंग व्यवस्था और फायर सेफ्टी ऑडिट संबंधी प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। बैठक में कलेक्टर ने प्रत्येक 3 माह में नियमित समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने ग्रामीणों से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने और शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक विकास और सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है। जिले में आमजनों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने बीते दिनों राणापुर बस स्टैंड का निरीक्षण कर यातायात व्यवस्था, बस संचालन और यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान स्थानीय नागरिकों ने हाट बाजार के दिनों में बढ़ने वाली भीड़, यातायात अव्यवस्था और अतिक्रमण की समस्याओं से अवगत कराया। जल संसाधन विभाग ने माही परियोजना की नहरों के मरम्मत कार्यों के लिए 16 करोड़ 68 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की है। लगभग 284 किलोमीटर लंबी इस परियोजना से वर्तमान में 19,000 से अधिक किसान और करीब 22,000 हेक्टेयर कृषि भूमि लाभान्वित हो रही है। जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान के तहत झाबुआ जिले ने प्रदेश स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जिले के सभी 6 विकास खंडों में आयोजित 559 संतृप्त शिविरों के माध्यम से 32,000 से अधिक हितग्राहियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया है। अभियान के दौरान आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन योजनाएं, किसान क्रेडिट कार्ड और उज्ज्वला योजना की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। खरीफ सीजन को देखते हुए कृषि विभाग ने जिले के किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। वर्तमान में जिले में यूरिया, डीएपी, एनपीके, एसएसपी और पोटाश सहित विभिन्न उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है। किसान ई विकास पोर्टल के माध्यम से ई टोकन प्राप्त कर अपनी आवश्यकता अनुसार उर्वरक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मौसम को देखते हुए खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने फल एवं सब्जियों के सुरक्षित भंडारण और उपयोग को लेकर एडवाइजरी जारी की है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि हरी पत्तेदार सब्जियों को धोकर और सुखाने के बाद ही साफ कपड़े या पेपर टॉवल में लपेट कर रखें और प्लास्टिक की बंद थैलियों की बजाय नेट बैग का उपयोग करें। फ्रिज का तापमान निर्धारित मानकों के अनुसार बनाए रखने तथा सब्जियों और फलों का स्वच्छ उपयोग करने की सलाह भी दी गई है। झाबुआ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक श्रवण बीते दिनों आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने सहभागिता करते हुए कहा कि मन की बात केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन और जन जागरूकता का सशक्त मंच बन चुका है। विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर कृषि मंडी परिसर झाबुआ में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय भीली बोली में गीतों और प्रदर्शनी के माध्यम से तंबाकू व अन्य नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। पल्स पोलियो अभियान की तैयारियों को लेकर जिला कार्यबल की बैठक का आयोजन बीते दिनों किया गया। इस बैठक में बताया गया कि 28 जून को जिले भर में पोलियो बूथों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी, जबकि इसके बाद 2 दिनों तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को दवा पिलाएंगी। झाबुआ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे झाबुआ जिले की चिट्ठी। आलेख था हरीश कुमार का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का था। ये
1: हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 10:05 हुए हैं। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोताओ, सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको हिंदी फिल्म जगत कहें और बाद में हम कहें कि उर्दू शायरी के और कहें कि गजलों के फनकार डॉक्टर बशीर बद्र साहब इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए। बशीर बद्र साहब की लिखी एक लाइन बहुत पॉपुलर हुई थी, बहुत चर्चित रही थी। वो लाइन याद कीजिए, मैं बताता हूं आपको। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। श्रोताओ, इस दुनिया में कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिन्हें भूल पाना बड़ा कठिन होता है, बड़ा मुश्किल होता है। उनकी लेखन शैली, उनकी कलात्मकता, जिस तरह से जो उनकी सोच होती है, उस सोच को अपने विचारों में ढालकर, या कहें कि अपने विचारों को सोच में बदलकर और लेखनी पर पारंगत होना हर किसी के बस की बात नहीं होती। डॉक्टर बशीर बद्र साहब मूलतः थे तो मेरठ के, लेकिन बाद में भोपाली हो गए। मेरठ में कुछ ऐसा हुआ कि एक बार तो मन हुआ कि इस दुनिया को ही अलविदा कह दें, लेकिन कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। श्रोताओ, हम आज भी कहते हैं कि अपने मित्रों से मिलते रहिए, दोस्तों से मिलते रहिए। न जाने कब किस दोस्त की, न जाने कब किस मित्र की आवश्यकता पड़ जाए। मित्रों के सहारे की अगर बात की जाए तो डॉक्टर बशीर बद्र से इस मित्रता के बारे में और ज्यादा कोई नहीं बोल सकता, न कह सकता। मित्रों के भरोसे पर अपने मूल शहर मेरठ को छोड़कर जो व्यक्ति इस दुनिया को अलविदा कहने जा रहा था, वो सिर्फ अपने मित्रों के विश्वास पर, दोस्ती पर, मित्रों के कहने पर भोपाल आ गया और जीवन भर भोपाल में रहे और अंतिम सांस भी उन्होंने भोपाल में ली। श्रोताओ, आज हम उन्हें यह श्रद्धांजलि स्वरूप कार्यक्रम समर्पित कर रहे हैं आकाशवाणी परिवार शिवपुरी की ओर से। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं उनकी लिखी एक गजल। आवाज उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की है, लीजिए सुनिए।

उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये गजल। शायर थे डॉक्टर बशीर बद्र। श्रोताओ, डॉक्टर बशीर बद्र जब अपने मूल स्थान मेरठ को छोड़कर अपने मित्रों के कहने पर, मित्रों की संजीदगी पर भोपाल आ गए और तब से लेकर अपनी आखिरी सांस तक भोपाल में रहे। डॉक्टर बशीर बद्र भोपाली होकर जब मेरठ छोड़कर भोपाल आ रहे थे, तब उनके मन में, उनकी शायरी में जो बात चल रही थी, उस पर उन्होंने लिखा था कि यूं ही बेसबब ना फिरा करूं, कोई हाथ भी ना मिलाएगा, कोई हाथ भी ना मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, यहां फासले से मिला करो, किसी शाम घर पे रहा करो। श्रोताओ, शायरी में एक अलग तरह का दर्द होता है, एक अलग तरह की एक मासूमियत होती है। कहना चाहिए कि एक तरह से जब हम किसी शायर की शायराना अंदाज में, किसी शायरी में डूबते हैं, उसको गहराई से सुनते हैं, तो जीवन की गहराई का एहसास होता है। और उस एहसास में जो अंदरूनी, जो अंदर की मासूमियत होती है, वो निकलकर उभरकर बाहर आ जाती है। डॉक्टर बशीर बद्र आके कहते हैं, हमने आपको एक बहुत सुप्रसिद्ध उनकी एक लाइन सुनाई थी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी उनकी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, जिंदगी में मुकाम बदल जाते हैं, देखते देखते हालात बदल जाते हैं, हम वही तुम भी वही, हम वही तुम भी वही, और ये दुनिया भी वही, फर्क इतना है, ख्यालात बदल जाते हैं। श्रोताओ, बड़ी अजीब दुनिया है ये। उस फानी दुनिया को उन्होंने अलविदा तो कहा, लेकिन बद्र साहब, आपको भूलना नामुमकिन है। आप ऐसा कुछ कह गए, ऐसा कुछ रच गए जो अद्भुत और अद्वितीय है। अशोक खोसला साहब की आवाज में गजल आपको सुनवा रहे हैं, लीजिए सुनिए है।

अशोक खोसला की आवाज थी, डॉक्टर बशीर बद्र की लिखी यह गजल थी। श्रोताओं, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना दिखा, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना दिखा, अगर गले नहीं मिलना तो हाथ भी ना मिला। हम वही हैं, तुम भी वही, और ये दुनिया भी वही, फर्क इतना है ख्यालात बदल जाते हैं। श्रोताओं, कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जो इस दुनिया में अमिट हो जाती हैं, एक ऐसी पहचान छोड़ जाती हैं अपने आप को, इतना प्रबल और मजबूत करके इस दुनिया में अपने आप को इस तरह से छोड़ जाते हैं कि कभी लगता ही नहीं कि वो कभी हमारे पास नहीं थे या हम उनके पास नहीं थे। यही इस दुनिया की खूबसूरती है और यही दोस्तों की खूबसूरती है, दोस्ती की खूबसूरती है कि दोस्तों के कहने पर डॉक्टर बशीर बद्र साहब मेरठ को छोड़कर भोपाल आए और आजीवन भोपाल रहे। हम उन्हें अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित कर

डॉक्टर बशीर बद्र की लिखी और रामकृष्ण चंदेश्वरी की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 10:30 हुए हैं। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज गायिका, सुप्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर की, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। मुंबई में अपने ही आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। श्रोताओं, सुमन कल्याणपुर की जोड़ी रफी साहब के साथ खूब जमी। रफी साहब के साथ उन्होंने अधिकांशतः ऐसे ऐसे गाने गाए, और तब जब रफी और लता की जोड़ी ने अपना परचम लहरा रखा था और उस परचम में जब खलल आया रॉयल्टी के विवाद को लेकर, तो रफी साहब ने स्वयं मना कर दिया था कि मैं लता जी के साथ गीत नहीं गा पाऊंगा। तब उस रिक्तता को भरने के लिए सुमन कल्याणपुर ने जो कमाल किया वो अद्भुत और अद्वितीय है। कभी लगा ही नहीं कि यह आवाज लता जी की नहीं है। एक गीत आपको सुनवा रहे हैं, अनजाना फिल्म का, लीजिए सुनिए।

अनजाना फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे रफी साहब की आवाज में और साथ में थी सुमन कल्याणपुर। श्रोताओं, इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, आज भी जब कोई विवाह समारोह होता है और दूल्हा दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचता है तब एक गीत बहुत चर्चित है, आज भी चर्चित है। रफी साहब की आवाज है, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। सूरज फिल्म का यह गीत है। हमने आपको बताया ना कि जिस समय लता जी ने गायकी से इनकार कर दिया था, लता जी की रिक्तता को भरने के लिए भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के पास कोई प्रति उत्तर नहीं था। उस समय, उस बुरे दौर में सुमन कल्याणपुर ने जो कमाल किया वो अद्भुत और अद्वितीय कमाल है। नमन करते हैं उनकी इस संजीदगी को, नमन करते हैं उनकी इस शख्सियत को कि उन्होंने उस रिक्तता को उस अंदाज के साथ भर दिया कि अच्छे अच्छे प्रकांड पंडित इस बात का पता नहीं लगा पाए कि यह आवाज लता जी की है या सुमन कल्याणपुर की। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। हाल ही में सोमवार के दिन उनका अंतिम संस्कार मुंबई में किया गया। गत रविवार को 89 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। श्रोताओं, एक ऐसी संजीदगी, एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ना कोई घमंड, ना कोई गुरूर, ना कोई अहंकार, लेकिन स्वर लहरियों में उनकी गायन शैली में, गायन शैली के आरोह और अवरोह में उन्होंने जिस संजीदगी से समायोजन किया वो दुर्लभ और अद्वितीय है। रफी साहब के साथ उनकी जो जोड़ी जमी, बहुत गीत गाए उन्होंने। सूरज फिल्म के एक गीत मैंने जो आपको बताया कि बहारो फूल बरसाओ, उसी फिल्म में एक गीत उन्होंने रफी साहब के साथ गाया, उस गीत को

सूरज फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे रफी साहब के साथ सुमन कल्याणपुर की आवाज में। गीत हसरत जयपुरी साहब का था, संगीत शंकर जयकिशन का। श्रोताओ, रफी साहब

शम्मी कपूर साहब के ऊपर लगभग फिल्माए हुए गीत जब रफी साहब स्टूडियो में रिकॉर्ड कराते थे तो शम्मी कपूर साहब वहां मौजूद रहते थे, और उस मौजूदगी में वो अपने चेहरे के हाव भाव से ऐसा प्रतिबिंबित करते थे कि गायक भी ठीक उसी तरह से अपने आप को उनकी शैली में अपने आप को ढाल ले। ये विशेषता अभिनेताओं की थी, और उन अभिनेताओं में शम्मी कपूर साहब की, और उनकी उस विशेषता को जिस तरह से रफी साहब ने अपने अंदर उतार कर और फिर इसी गाने में कि आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सुमन कल्याणपुर जी भी थी। राजकुमार फिल्म का एक गीत है, तुमने पुकारा और हम चले आए, रफी साहब के साथ है सुमन कल्याणपुर। यह गीत भी रफी साहब ने गाया, फिल्माया गया है शम्मी कपूर साहब के ऊपर। इस गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान भी वो स्टूडियो में मौजूद थे। क्या होता है जब बहुत बड़ा कलाकार, बहुत बड़ा अभिनेता स्टूडियो में मौजूद हो, तो छोटे सा जो कलाकार होता है, छोटा सा जो गायक गायिका या जो भी कहें हम, वो थोड़ा सा सहम जाता है। लेकिन नहीं, सुमन कल्याणपुर ने उसी संजीदगी के साथ रफी साहब का साथ दिया जिस संजीदगी से लता जी सुर में सुर मिलाती थी, और उस सुर में सुर मिलाने का काम जो सुमन कल्याणपुर ने रफी साहब के साथ किया वो अद्भुत और बिना किसी टकराहट के, बिना किसी अतिशयोक्ति के इतना महत्वपूर्ण है कि जिसका वर्णन कर पाना एक ही कार्यक्रम में मुश्किल है। ये गीत आपको सुनवा रहे हैं राजकुमार फिल्म का, तुमने पुकारा और हम चले आए। आपको कहीं से नहीं लगेगा कि यह आवाज लता जी की नहीं है, जबकि वास्तविकता यह है कि आवाज सुमन कल्याणपुर की है। लीजिए सुनिए।

तुमने पुकारा और हम चले आए। श्रोताओ, राजकुमार फिल्म का यह गीत रफी साहब के साथ सुमन कल्याणपुर, कहीं से लगा आपको कि यह आवाज लता जी की है? श्रोताओ, यही बहुत सारी विशेषताएं होती हैं किसी शख्सियत के अंदर, और रफी साहब की यदि हम बात करें तो रफी साहब ने सुमन कल्याणपुर को प्रमोट करने में किसी भी तरह की, और जो जिंदा दिली उन्होंने दिखाई, उसकी विशेषता का वर्णन करना समीचीन है। होता क्या है कि जब आप ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तब छोटा सा व्यक्ति बहुत अदना सा लगता है, और यहीं पर इंसानियत की पूछ और परख होती है। इंसानियत की बेमिसाल यहीं देख पाते हैं हम कि जब आप ऊंचाई पर हो और आपकी नजरें उस व्यक्ति पर हो जो सबसे अंतिम छोर पर खड़ा हो, उस गरीब व्यक्ति के ऊपर हो जो अभी अभी अपने आप को स्थापित करने आया हो, और इसके लिए रफी साहब की जिंदा दिली को हम सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं कि उन्होंने उस खराब दौर में जब लता जी ने रॉयल्टी के विवाद को लेकर गायकी से मना कर दिया था और तलत महमूद साहब ने अपनी जिंदा दिली दिखाई थी कि आप सुमन कल्याणपुर को लेके आइए, और जिस तरह से हसरत जयपुरी साहब के लिखे गीतों को शंकर जयकिशन साहब ने सुमन कल्याणपुर को रफी साहब के साथ जिस संबद्धता के साथ स्थापित किया और सामने लाए, वो काबिले तारीफ है। छोटी सी मुलाकात फिल्म का एक गीत आपको सुनवा रहे हैं। ये कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति होगी, लीजिए।

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता

छोटी सी मुलाकात। श्रोताओं, इस फिल्म में रफी साहब के साथ सुमन कल्याणपुर के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। इस समय दिन के 11 बजने को हैं। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। इसका अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कर रहे हैं।

0: इस बात की, जल्दी से डायल कीजिए 2660902 और स्टेटी कोड आप जानते ही हैं 0755। कॉल कीजिए और सुनिए अपनी पसंद के गीत। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्कार।
0: स्वागत है आपका हमारे फोन करे गीत सुने कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद दीदी। मैं राजेश अग्रवाल बोल रहा हूँ, यहाँ राजा राम नगर देवास मध्य प्रदेश से।
0: राजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन आपके कॉल भी बहुत लगते हैं आकाशवाणी में।
1: क्यों बहुत का? हफ्ते भर पिछले मंगलवार को लगाया था, जिसका आज लगा रहा हूँ दीदी।
0: चलिए कोई बात नहीं। एक्चुअली मैंने पिछले ट्यूसडे को आपकी बात हुई थी और वेडनेसडे को भी देखा था मैंने आपका नाम, इसीलिए
1: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, यहाँ नहीं लगाया।
0: चलिए कोई बात नहीं,
1: कोई दूसरा नाम से
0: ठीक
1: होगा,
0: ठीक हाँ हो सकता है।
1: बरोबर हफ्ते भर में ही लगाया दीदी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है राजेश जी, क्योंकि यदि कोई भी श्रोता एक हफ्ते के पहले कॉल लगाता है और हम उससे बात कर भी लेते हैं, लेकिन यदि हम देखते हैं कि एक हफ्ते के बीच में उसकी बात हो चुकी है, तो हम उसका कॉल फिर प्रोग्राम में नहीं ले पाते, बस इतनी सी बात है।
1: हाँ कई श्रोताओं ने लगाते हैं, खास तो हमारी शिकायत ये है कि दीदी ये जो लेटर का कार्यक्रम हो रहा है फरमाइश का,
0: हाँ
1: उसमें पत्र बिल्कुल निर्णय लिए जा रहे हैं छाट के, जैसे वो क्या वही गड्डी एक की एक ही गड्डी रोज वही।
0: नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, इतने हमारे श्रोताओं की गिनती नहीं है, तो वो तो जो जैसे हाथ में आते जाते हैं वैसे ही लेटर्स पढ़ते हैं, और एक ही गड्डी नहीं पड़ी जाती है, बहुत सारे। आप कभी आकाशवाणी आएंगे?
1: नहीं हम तो होके गए ही हैं वहाँ पे, अभी अक्टूबर में आए थे, जैसे स्थापना दिवस है।
0: अच्छा अच्छा
1: आपको मालूम नहीं हो भले, लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि वही के वही तिलक राणा डोमन ठाकुर ये जो दो चार नाम रटे हुए रोज के रोज वही।
0: नहीं नहीं रटे नहीं है वो, ये होता है कि एक ही श्रोता कई बार है ना 50-50 कार्ड डाल देता है, तो उसका नंबर रोटेशन में आता जाता है।
1: बाकी जैसे ये इंदौर के देवास के यहाँ के भी तो लेना चाहिए ना, भले ही वो डाले हजार
0: बिल्कुल
1: डाले, हमारा क्या होएगा फिर?
0: बिल्कुल बिल्कुल हम इस बात पे बिल्कुल चर्चा करेंगे और आपका कॉल लिया जाएगा। अभी तो आप ही बताइए, फोन करें गीत सुने में आपने कॉल किया है, तो आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: ये दीदी आज जैसे सुमन कल्याणपुर जी हमारे बीच नहीं रही है, जैसे कल ही परसों उनका निधन हो गया है,
0: जी जी,
1: तो उनकी याद में जैसे गीत ये पहचान पिक्चर का सुनवा दीजिए, वो परी कहाँ से लाऊ, या फिर आया ना तुमको प्यार जताना, ऐसा गीत है मुकेश जी के साथ है उनमें गीत।
0: पहचान फिल्म का?
1: पहचान पिक्चर
0: वो परी
1: है? हाँ वाला ले लीजिए, या फिर मुकेश जी के साथ में उनका डुएट भी है।
0: हाँ हाँ
1: पहचान पिक्चर का उन्हीं का गाया हुआ गीत सुनवा दीजिए।
0: अच्छा ठीक है, और
1: अमन कल्याणपुर जी को समर्पित है ये।
0: हाँ कौन सा वाला, सेकंड कौन सा बोला है आपने?
1: सेकंड ये आया ना हमको प्यार जताना।
0: अच्छा
1: ऐसा गीत है।
0: ठीक ठीक ठीक बिल्कुल बिल्कुल हम हाँ, आपको बिल्कुल ये गीत सुनवाएंगे।
1: ये हमारी बात थोड़ी सी रख देना मैनेजमेंट के सामने।
0: बिल्कुल रखेंगे।
1: लेटर के बारे में आरजे लेटर बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, एक एक गीत पे एक ही लेटर लेते हैं वो।
0: चलिए बिल्कुल हम बात करेंगे इस विषय पे राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दूसरे श्रोता भी लाइन में होंगे, जिस तरीके से आपसे बात कर रहे हैं ना, कभी कभी ऐसा ही लेटर्स में भी हो जाता है। ठीक है चलिए नमस्कार जी, नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते।
1: जी, नमस्ते। मैं ग्रामपुर जिला छतरपुर से संगीता पटेल बोल रहे। संगीता
0: छतरपुर से सुनीता पटेल। अनीता,
1: जी, संगीता
0: संगीता।
1: जी मैम। जी,
0: चलिए संगीता, आपसे पहले भी बात हो चुकी है हमारी, है ना?
1: ए, आप कविता मैम बोल रहे हैं?
0: हाँ
1: जी
0: जी।
1: जी
0: और कैसी हो संगीता?
1: ठीक है।
0: और आज कौन सा गीत सुनना चाहती हो? अच्छा,
1: आज सुनना चाहते हैं करण अर्जुन फिल्म का,
0: कौन सा वाला गीत इसका?
1: ए बंधन, दिलों का बंधन।
0: अच्छा, बहुत ही प्यारा गीत है ये। बंधन तो
1: मैम,
0: प्यार का बंधन
1: आपके
0: है।
1: मौसम कैसा है?
0: मौसम में गर्मी में थोड़ी सी राहत मिली है, ऐसा कह सकते हैं। बारिश बारिश हो जा रही है बीच बीच में,
1: जी
0: आंधी
1: मैम, यहाँ भी
0: तूफान।
1: थोड़ी राहत मिली है क्योंकि पानी 2-3 दिन

0: वैसा है
1: हाँ, और आंधी तूफान टाइप बहुत मौसम ऐसा
0: जी
1: हुआ है
0: जी
1: ना।
0: दोनों साथ में एक आए हैं
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो संगीता जी, कल के प्रोग्राम में अपनी पसंद का गीत बिल्कुल सुनिएगा, ठीक है? कॉल
0: जी
1: करने के
0: जी
1: लिए धन्यवाद।
0: जी थैंक यू मैम।
1: ओके।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी,
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्ते जी, स्वागत है आपका। आप शिवनारायण तिवारी जी बोल रहे
1: जी मैम, बहुत बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत पहचाना आपने।
0: हैं? जिस तरह से हमें श्रोता पहचान जाते हैं आवाज से, कई बार हम लोग भी है ना अपने श्रोताओं की आवाज पहचानने लगते हैं।
1: मैम मालूम चल गया था कि आप आज प्रोग्राम रिकॉर्डिंग में हैं।
0: अच्छा, ऐसा है? अरे वाह, क्या बात है।
1: हाँ, तो
0: और
1: मैंने
0: क्या
1: किया
0: हाल है
1: जवाब
0: आप सभी के?
1: जी।
0: हाल कैसे हैं आप सभी के? हाँ,
1: बढ़िया है हाल मैम, बहुत बढ़िया। अब तो गर्मी थोड़ी कम हो गई है।
0: हल्की सी कम हुई है।
1: काम
0: और कामकाज कैसा चल रहा है?
1: काज बढ़िया चल रहा है, कथा वार्ता पूजा होती रहती है, पंडिताई चलती रहती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अच्छा बताइए शिवनारायण जी, आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आप सुनवाए आज नंदिनी को डेडिकेट और रानू गुप्ता जी को, आपको
0: हाँ,
1: भी।
0: थैंक यू। खतरों
1: और आज का गीत है वो है खतरों के खिलाड़ी।
0: के, अच्छा ठीक है, बिल्कुल ये गीत हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन इसका कौन सा गीत?
1: तुमसे बना मेरा जीवन
0: बहुत अच्छा गीत है तो,
1: जी।
0: और मिल भी गया है हमें तो, ये हम आपको जरूर सुनाएंगे।
1: जी
0: ठीक है, चलिए तो फिर कल के प्रोग्राम में सुनिएगा अपनी
1: जी
0: पसंद
1: थैंक
0: का गीत। थैंक यू,
1: यू, नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते।
0: कौन है ये इतनी बार नमस्ते करने वाले हमारे श्रोता?
1: मैं फूलचंद पाल छतरपुर जिले के मनकारी गांव से बोल रहा हूँ।
0: फूलचंद पाल। फूलचंद जी, आपने बहुत टाइम बाद बात की है हमसे।
1: लगता है कविता मैडम बोल रही हैं आप।
0: जी हाँ बहुत पहचाना आपने, थैंक यू वेरी मच।
1: मैं कविता जी आपसे बात करने को तड़प रहा था,
0: सच में?
1: सच में बिल्कुल तड़प रहा था कि मैं क्या बताऊं कविता जी से, कैसे बात होगी, कब आप कविता जी का नंबर लगेगा, कब मेरी बात हो जाएगी। और आज मेरा ईश्वर ने सुन लिया।
0: देखिए इतना अच्छा, तो कुछ अच्छा अच्छा सोचा होता ना, इतनी सी बात में ही आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई।
1: कविता जी, वाकई में जो है आपकी आवाज बहुत ही मधुर, बहुत ही प्रिय है।
0: थैंक यू वेरी मच। और सुनाइए, मौसम कैसा है छतरपुर का?
1: कविता जी, मौसम तो बड़ा ही सुहावना है और बड़ा ही लुक्का छुपा वाला मौसम है। कभी बादल आ जाते हैं, कभी बादल छुप जाते हैं, कभी बादल फिर आ जाते हैं, और दोपहर में थोड़ा गर्मी होती है और शाम सुबह ठंडी होने लगती है।
0: बिल्कुल सही, बड़ी अच्छी अच्छी हवा चल रही है शाम को तो।
1: जी, और कुछ पानी यानी हमारे यहाँ छतरपुर जिले में गिर गया है, और खजुराहो का भी मौसम नजारा बहुत ही गलत गजब है। अब तो आपका घूमने का मौका आ गया है।
0: अब तो आना ही पड़ेगा भाई। बिल्कुल
1: जी
0: बिल्कुल, है ना, जून लास्ट वीक में पक्का प्लान करेंगे हम खजुराहो आने का।
1: जी बिल्कुल, खजुराहो के मंदिर आपको बुला रहे हैं कि कविता जी आइए आइए आप, हम जो है, और आप जल्दी ही आएंगी लगता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा फुलचंद जी, बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: बिल्कुल कविता जी, फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी,
0: अच्छा ये क्या बात है, आज
1: और
0: तो है ना ये।
1: गीत गीत
0: हाँ,
1: के बोल है कि पास पास वो आने लगे जरा जरा।
0: मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी।
1: जी,
0: हाँ जी, मिल गया हमको ये गीत तो, बहुत
1: और
0: अच्छा है।
1: ये गीत कविता जी आपको डेडिकेट रहेगा, और हमारे प्रेमदास बाबा जी हैं, मांगीलाल चंदेल जी हैं, और दिनकर सिंह जी हैं,
0: हाँ
1: और विजय कुमार पांडे जी हैं, और सभी जितने श्रोता सुन रहे हैं सभी को डेडिकेट रहेगा। और पूनम बहन है हमारी कानपुर से,
0: अच्छा,
1: तो उनको भी डेडिकेट रहेगा, क्योंकि रेडियो से हमारी इतने सारी बहनें, इतने सारे मित्र मिल गए हैं कि हम कभी सोचते भी नहीं थे कि इतने
0: बिल्कुल
1: कहाँ
0: सही
1: मिलेंगे।
0: बात है, वाकई एक बहुत अच्छा
1: जी
0: परिवार है हमारा रेडियो,
1: जी
0: है
1: बिल्कुल
0: ना?
1: बिल्कुल, और देखिए कि कविता जी, रेडियो श्रोता जो बनता है वो बहुत ही दिलदार होता है जब बन पाता है।
0: बिल्कुल सही बात है ये। चलिए कॉल
1: जी।
0: करने के लिए धन्यवाद, क्योंकि हमारे दूसरे कॉलर्स भी इंतजार कर रहे होंगे कि उनका कॉल लगे। ठीक
1: जी
0: है
1: जी बिल्कुल, सभी
0: जी
1: श्रोताओं का
0: फुलचंद
1: फोन
0: जी।
1: लगे। बहुत
0: जी
1: बहुत कविता
0: जी
1: जी, आपको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार,
0: जी आपको भी धन्यवाद।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी,
1: जिला सीनी ग्राम पातरफोड़ी से राहुल ध्रुवे बात कर रहा था। ध्रुवे,
0: राहुल
1: हाँ
0: धुर्वे।
1: जी, अभी
0: हाँ जी राहुल, बताइए कैसे हैं आप।
1: तो गर्मी पड़ रही है, थोड़ा मतलब पानी भी गिरा है कल, तो थोड़ा सा ठंडक है जरूर है यहाँ पे, लेकिन इससे पहले काफी गर्मी थी।
0: अरे भाई, हमने तो मौसम के बारे में थोड़ी ना पूछा है, आपके बारे में पूछा है, आप कैसे
1: हम
0: हैं?
1: भी अच्छे हैं मैम अभी तो।
0: चलिए, क्या काम
1: और
0: करते हैं
1: आप?
0: राहुल जी?
1: हाँ जी,
0: अभी आप काम क्या करते हैं?
1: मैं वीडियो कॉल डीटीएच के ऊपर जॉब करता हूँ।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अच्छा कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज?
1: जाने अनजाने मूवी का है। हाँ,
0: जाने अनजाने।
1: पिया पिया ओ पिया पिया।
0: एक मिनट, हम सर्च कर लें पहले, है कि नहीं जाने अनजाने। मिल गया, लेकिन इसमें पिया पिया वाला गाना तो नहीं दिख रहा है मुझे।
1: हाँ मैम,
0: आप कोई और उसका कोई बोल जो शुरू के है ना, वो कुछ और होगा।
1: नहीं, प्रिया प्रिया तू चांद है पूनम का।
0: चलिए मैं एक बार और देखूंगी, नहीं है यहाँ पर उसका। जाने अनजाने जरूर उसकी शुरुआत क्या जाने अनजाने से है क्या?
1: नहीं, प्रिया प्रिया हो प्रिया
0: छमछम
1: प्रिया।
0: बजे रे पायलिया उससे है।
1: नहीं,
0: अच्छा, तेरी नीली नीली आंखों के।
1: चांद है पूनम का, ऐसा
0: चलिए,
1: है कुछ
0: अच्छा
1: भी थी।
0: मैं देखती हूँ, जाने अनजाने फिल्म का पिया पिया।
1: हाँ,
0: यदि
1: पिया
0: ये गीत
1: पिया हो
0: नहीं
1: पिया
0: मिला,
1: पिया तू चांद है पूनम का।
0: ठीक है, और अगर ये गीत नहीं मिला तो फिर कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: इसमें आप मतलब
0: इसी फिल्म
1: साजन का
0: का,
1: घर का कर दीजिए। हाँ,
0: साजन के घर का, उसका कौन सा गीत?
1: इसका नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए।
0: चलिए, गाने तो आपने बहुत ही अच्छे चॉइस किए। ठीक
1: मैम,
0: है,
1: मैं ये कहना चाह रहा था,
0: हाँ कहिए।
1: इसमें मैंने मतलब इससे पहले 15 दिन पहले कॉल किया था तो मेरा नाम ही नहीं आ पाया था इससे।
0: कभी-कभी ऐसा होता है कि है ना, श्रोता हमारे बहुत सारे हो जाते हैं, उनके कॉल्स हम लोग ले लेते हैं, और जब एडिटिंग करने बैठते हैं तो हमको सिर्फ 58 मिनट का ये प्रोग्राम तैयार करना होता है, तो कुछ कॉलर्स हमारे छूट जाते हैं इस चक्कर में।
1: तो मैम, मैं ये कहना चाह रहा था,
0: हाँ
1: अगर मान लीजिए कॉल अगर ज्यादा 11 बजे तक, जैसे 10:30 से 11 तक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप,
0: जी,
1: तो गानों को थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए, लेकिन जो कॉलर हमारे जुड़ते हैं उनको तो मतलब शामिल कर लीजिए तो ये बेहतर हो पाता है।
0: चलिए कोशिश करेंगे आपकी कही बात पे अमल किया जाए। ठीक है राहुल जी,
1: हाँ जी, दोस्तों का नाम ले सकता हूँ?
0: हाँ बिल्कुल, फटाफट ले लीजिए क्योंकि हमारे बहुत सारे कॉलर्स इंतजार कर रहे हैं।
1: मध्य प्रदेश सागर से इतिन कटारे और शिमला से रहेंगे राकेश जी।
0: चलिए, धन्यवाद राहुल जी कॉल करने के लिए, नमस्कार।
1: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, स्वागत है आपका।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्ते जी।
1: आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया बोल रहा हूँ। दीदी
0: राजू,
1: लवानिया,
0: ओके, राजू लवानिया जी, आपसे पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन आज इतना डिस्टरबेंस क्यों आ रहा है?
1: दीदी मौसम थोड़ा सा खराब हो रखा है। हल्के बादल हैं, रात को बारिश हुई है, बिजली चमकी है, बिजली कड़की है, तो थोड़ा मौसम का
0: चलिए ठीक है। क्या हाल है राजू जी आपके?
1: जी हम तो ठीक है दीदी, और हम जानना चाहेंगे हमारी आकाशवाणी भोपाल टीम कैसी है।
0: हमारी टीम बहुत बढ़िया है, आप सबका स्नेह हमारी टीम के साथ है तो अच्छी ही होगी।
1: बिल्कुल दीदी, हमारी भी यही कामना है, आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त रहें, ताकि हमें अच्छे अच्छे कार्यक्रम भी सुनने को मिले, और आप सब लोग ऐसे ही मस्त मस्त बने रहें, सभी लोग
0: चलिए,
1: इस ओर
0: बहुत
1: से।
0: बहुत आभार आपका राजू जी, इतनी अच्छी अच्छी विशेष देने के लिए। और बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: दीदी सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ कोई भी गीत सुनवा दीजिए, क्योंकि सुमन कल्याणपुर जी अभी इस दुनिया में नहीं रही हैं।
0: बिल्कुल, तो उनको आप श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं?
1: बिल्कुल, हम अपनी तरफ से भी और सभी श्रोताओं की तरफ से भी और
0: बिल्कुल,
1: आकाशवाणी भोपाल की पूरी टीम की तरफ से
0: बहुत
1: हम
0: बहुत
1: उन्हें
0: धन्यवाद,
1: भावभीनी
0: आपने
1: श्रद्धांजलि
0: बहुत
1: देते
0: अच्छा
1: हुए
0: सोचा
1: उन्हें
0: है।
1: याद करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सोचा है। हम आपको ये गीत जरूर सुनवाएंगे, कल के प्रोग्राम में आप अवश्य सुनिएगा।
1: ओके दीदी, नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नमस्ते
1: नमस्ते मैडम। गाना
0: नमस्ते। हाँ,
1: सुनना है मैडम?
0: नाम तो बताइए।
1: मैं अमीना भी मंसूरी बोल रही हूँ, पालडाना का, इंदौर से। अमीना
0: हसीना भी मंसूरी,
1: अमीना
0: अमीना।
1: जी मैडम, 2 दिन में लगाया मैंने।
0: अच्छा, हाँ जी, कैसी हैं आप?
1: अच्छी हूँ मैडम, अब तो आपकी दुआ है। हाँ,
0: इंदौर से बोल रही हैं ना?
1: इंदौर से बोल रही हूँ, पालडाना का, इंदौर से। बहुत दिन में
0: चलिए,
1: लगाया मैडम, थोड़ी तबीयत ऐसी थी मेरी।
0: क्यों, क्या हो गया था आपको?
1: अरे, मेरे को ये थोड़ा सा जी अकड़ा था, ब्लड प्रेशर की वजह से, तो एकदम से उल्टी होने लगी, तो भर्ती कर दिया था अस्पताल में। तो आपका
0: ओहो,
1: आराम है मैडम, बहुत आराम है आपको।
0: चलिए, लेकिन रेगुलर अपना ध्यान रखा करिए और बीपी की दवाई टाइम से खाया करिए।
1: जी मैडम, गोली तो खाती हूँ, मतलब थोड़ा कमजोरी हो गई थी ना।
0: हाँ, चलिए, आप पहले अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रखिए, यही हम सबकी दुआएं हैं, ठीक है?
1: जी मैडम,
0: चलिए, अच्छा बताइए, आज कौन सा गीत सुनेंगी?
1: फिल्म इज्जत गाने के बोल,
0: हाँ,
1: क्या मिलना है ऐसे लोगों से
0: अच्छा,
1: जिनकी, हाँ, जिनकी फिजरत छुपी रहे।

0: अच्छा, बिल्कुल अवश्य जरूर सुनवाएंगे ये गीत हम आपको। और अगर ये गीत ना मिला तो क्या
1: आपकी आवाज
0: मिलना?
1: बिल्कुल धीरे आ रही है, बड़ी मुश्किल
0: हाँ सही कह रही हैं आप, आवाज बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। चलिए कोई बात

0: हेलो। हाँ
1: हेलो,
0: जी
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते।
1: मैं वरेला से वंदना उपाध्याय बोल रही हूँ।
0: मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ये आवाज सुनी सुनी है।
1: हाँ मिता दीदी, नमस्ते नमस्ते। बहुत दिनों बाद आई आप।
0: देखो वंदना जी,
1: फिर
0: फिर आपको गलतफहमी हो गई। जी
1: कविता दीदी बोल रही ना,
0: हाँ
1: आपसे ही बात हुई थी मेरी कविता दीदी।
0: बिल्कुल, वो तब भी आप ऐसी कंफ्यूज हुई थी।
1: हाँ, बिल्कुल देखा। उसके बाद आज लगा रही हूँ मैं फोन।
0: तो आप ये बताओ, आपको अमिता दीदी में और कविता दीदी में फर्क नहीं नजर आ रहा?
1: आवाज क्या है दीदी, स्लो आती है इसमें, और जब रेडियो पे सुनते हैं तो क्लियर आवाज आती है थोड़ी।
0: अच्छा, ये
1: हाँ
0: चक्कर है, चलो कोई बात नहीं। हाँ वंदना जी, बताओ
1: आज
0: आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: गाना सुना दी, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी
0: अच्छा,
1: चोरी मेरे दिल में समाते हो।
0: कौन सी फिल्म का है ये गाना?
1: गाना
0: खैर,
1: इतना
0: मिल
1: नाम तो नहीं
0: जाएगा
1: है दीदी, आज तो
0: मिल
1: दूसरा
0: जाएगा।
1: बता दूँ मिल
0: हाँ दूसरा भी बता दो, वैसे ये गाना भी मिल जाएगा। हाँ
1: जाएगा
0: लेकिन एक और बता दो
1: दूसरा।
0: फिर
1: फिर
0: भी।
1: वो कौन सा है, तू गैरों की क्यों हो गई, तू हमारी थी जान से प्यारी थी।
0: ओ भगवान, कहाँ कहाँ के ढूंढ के ला रही हूँ वंदना जी ये गाने। नहीं, सिंपल नहीं, आप तो बिल्कुल कठिन से कठिन दीजिए, तगड़ा होना
1: ये
0: चाहिए।
1: वाला गाना नहीं सुना अभी, रेडियो में भी बहुत अच्छे अच्छे गाने आ रहे थे, पुराने पुराने, तो
0: हाँ तो
1: मुझे
0: आपने
1: तो बहुत
0: नोट कर लिया
1: पुराने
0: कि अब
1: पुराने गाने भी बहुत पसंद है। केएल सहगल का है एक गाना,
0: हाँ?
1: रूही रूही तू मेरे सपनों की रानी।
0: ओ
1: बहुत अच्छा लगता है मुझे वो रूही। और भी
0: हाँ,
1: पुराने पुराने गाने मैंने एक दिन वो उसका कौन है वो गायिका,
0: भाई सुनो, गैरों पे तो ये वाला गाना मेरे सामने आया, गैरों पे करम।
1: गैर पे करम नहीं, तू हमारी थी जान से प्यारी थी, तू औरों की क्यों हो गई।
0: किसकी आवाज में है ये भी नहीं
1: ये
0: पता।
1: वो हीरो है जॉय मुखर्जी की, कौन है उनकी पिक्चर का गाना है शायद।
0: कोशिश करते
1: और
0: हैं।
1: अच्छा अच्छा ठीक है, सिंपल सा बता देती हूँ, जल्दी मिल जाए। जो कौन सा बता दूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
0: देखो
1: अभी
0: वैसे
1: तब
0: तो
1: तक
0: आपका
1: टेंडर
0: ये
1: सुना
0: पहले गीत
1: दीजिए
0: मिल
1: फिर
0: जाएगा,
1: आपको
0: जहां मैं
1: थोड़ी
0: जाती
1: देर।
0: हूँ वहीं चले
1: वहीं
0: आते
1: चले
0: हो।
1: आते हो, चोरी चोरी दीदी, आप
0: चलो
1: तो
0: टेंशन
1: मेरे
0: नहीं लो, मिलेगा यही गाना
1: प्रोग्राम में आ
0: मिलेगा।
1: गए, शॉर्टिंग के प्रोग्राम।
0: अपन ढूंढ के लाएंगे।
1: आप लोग इतना अच्छा प्रोग्राम देते, कल तो मेरे यहाँ लाइट नहीं थी, तो कल तो मैं फोन करेगी, कल का सुन नहीं पाई, तो मेंटेनेंस चल रहा, तो बिल्कुल मुझे बहुत लगा कि
0: तो
1: इन्वर्टर भी
0: आप है
1: बंद
0: ना,
1: हो गया
0: न्यूज
1: था, हो गया
0: न्यूज ऑन
1: चेंज हो
0: एआईआर
1: गया।
0: एप्लीकेशन पर नहीं सुनते क्या मोबाइल पर?
1: मोबाइल में दीदी हम डाउनलोड कर हो ही नहीं पा रहा मेरे मोबाइल में, कैसे करते वो, मैंने कई
0: अरे
1: बार किया नहीं होता।
0: नहीं, डाउनलोड हो जाता है, बहुत इजीली हो जाता है, और फिर उसको है ना सिलेक्ट कर लो, लाइव पर जाकर भोपाल सिलेक्ट कर लो
1: अच्छा
0: और बहुत अच्छे से सुनाई देता है, बहुत क्लियर सुनाई देता
1: ठीक है, मैं आज ही
0: है
1: करवाती
0: ना।
1: हूँ, मैं करती हूँ। प्ले स्टोर में जाके भी किया, पर वो
0: प्ले
1: चलाना
0: स्टोर में
1: मुझे
0: जाके ही
1: मुश्किल।
0: करना पड़ेगा, न्यूज
1: मैंने
0: ऑन
1: किया
0: एआईआर।
1: नहीं हुआ, मुझे तो
0: अच्छा
1: इतना वो है, जब एक भी अगर मिस हो गया, आज किस किस के गाने आए, बहुत उम्मीद रहती है, तो लगा रहता है, पता नहीं जो
0: चलो,
1: मिस
0: एक
1: हुई
0: बार
1: थी
0: और
1: उसी।
0: कोशिश करना, पक्का होगा। ठीक है,
1: जी नहीं, आप कभी भी नमस्ते, और आप
0: नमस्ते, कोई
1: पहचानने में गलती हो गई तो सॉरी।
0: बात नहीं कोई बात
1: अमिता
0: नहीं। ओके।
1: दीदी क्या है ना, मैं अमिता दीदी से बहुत बात करती हूँ, मतलब जितने बार भी कभी फोन लगाया अमिता दीदी और आप रहती हो तो वो कंफ्यूज हो जाते हो, रेडियो इसमें मोबाइल में बहुत दबी आवाज आती है।
0: चलो कोई बात नहीं। ओके
1: ठीक है
0: ओके,
1: दीदी,
0: थैंक यू,
1: नमस्ते,
0: बाय
1: कल सुनेंगे
0: बाय।
1: आप।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। इसी के साथ अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम से अपनी रेडियो सखी कविता रावत को नमस्कार।
1: ये प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया जा रहा था। अब समय है इस घंटे की खास खबर।

0: आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। ये पहल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत का स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। प्रदेश में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान में विद्यालयों, महाविद्यालयों और सामाजिक संगठनों को जोड़ा जाएगा। वन विभाग ने गुप्तचर ऐप विकसित किया है। अब स्थानीय नागरिक स्वयं को गुप्तचर के रूप में पंजीकृत कर वन संरक्षण अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए EKYC कराना अनिवार्य कर दिया है। श्रमिकों को अपनी लंबित EKYC 1 माह के भीतर पूर्ण करनी होगी। और भोपाल में 6 और 7 जून को राज्य स्तरीय आम महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव में प्रदेश में उत्पादित विभिन्न आम की किस्मों एवं उनके प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला नगमा हमने लिया है, आवाज सुमन कल्याणपुर की है, इंदिवर के बोल हैं और फिल्म का नाम है रॉयल मेल। पसंद आप सब श्रोताओं की। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और इनके परिवार के सदस्य भाटापारा दत्तरेंगी से इस गीत को सुनना चाहा है। द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा ने। तो आइए सुनते हैं रॉयल मेल फिल्म का ये गीत।

आपको सुनवा रहे हैं उत्सव फिल्म का वो नगमा जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। वसंत देव का लिखा हुआ गीत है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पसंद आप सब श्रोताओं की। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, शोभा शारदा दामिनी इस गीत को सुनना चाहती हैं। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन ने इस गीत को पसंद किया है। तो आइए सुनते हैं उत्सव फिल्म का ये गीत।

और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अंगूर फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है आशा भोसले ने। गुलजार का लिखा हुआ ये गीत है, संगीत आर डी बर्मन का। पसंद आप सब श्रोताओं की है। ये पत्र हमें लिख भेजा है रुचि और इनके परिवार ने। रामचंद माखीजा, काफिर भाई, सविता, स्वाति, माही, छुटकी, शरद और संपूर्ण माखीजा परिवार इस गीत को सुनना चाहते हैं धमतरी बनियापारा से। तो आइए सुनते हैं इन सब की पसंद पर अंगूर फिल्म का ये गीत।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं बुड्ढा मिल गया फिल्म का वो गीत जिसे गाया है आशा भोसले और किशोर कुमार ने। संगीत आर डी बर्मन का है, गीत लिखा है मजरूह ने। पसंद आप सब श्रोताओं की। अयूब खान, इरम, गुड़िया, शोएब, नावेद और जीशान ने इस गीत को सुनना चाहा है। ये पत्र हमें मिला है करूला मुरादाबाद से। तो आइए सुनते हैं इन सब की पसंद पर फिल्म बुड्ढा मिल गया का ये गीत।

0: खफा खफा से
1: हाय मर जाऊं।
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे,
1: क्यों नहीं
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया।

कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं, आपको सुनवा रहे हैं जंतर मंतर फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी ने, हसरत जयपुरी के बोल हैं, संगीत है शरद मलिक का, सरदार मलिक का। पसंद आप सब श्रोताओं की, प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले, इन्होंने नांदेड़ से ये गीत सुनना चाहा है। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल, राजदीप और राशि इस गीत को सुनना चाहती हैं, तो आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म जंतर मंतर से।

0: अब आपको सुनवा रहे हैं द ट्रेन फिल्म का वो गीत जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत आर डी बर्मन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। रुचि शुक्ला, रीना शुक्ला गीत और कृष्णा शुक्ला ने ये गीत पसंद किया है रीवा से। दिल्ली शहर से ये गीत सुनना चाहते हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। तो आइए सुनते हैं द ट्रेन फिल्म का ये नगमा।
1: वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं

0: द ट्रेन फिल्म के इसी गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला प्रसारण इस अंतराल के बाद होगा।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है,

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं धारावाहिक सिसकियां। आज सुनिए इसकी 8वीं कड़ी।
2: वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

पिछली कड़ी में आपने सुना कि फाता पैसों की लालच में आकर सारे का दूसरा निकाह रसूल से करवाना चाहती है, जो औरत को पांव की जूती से ज्यादा कुछ नहीं समझता। इस बात का पता चलने पर मुश्ताक को सदमा पहुंचता है और वो बीमार पड़ जाता है। अब आगे।

0: कुछ बात करनी है तुझसे।
1: हाँ बोल।
0: मैं जो सुन रही हूँ क्या वो सच है?
1: क्या सुन रही है तू?
0: तू मेरा दूसरा निकाह पढ़वाने की बात कर रही है?
1: हाँ सच सुना है तूने।
0: मुझसे पूछे बगैर तू मेरा निकाह तय कैसे कर सकती है अम्मी?
1: मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना, और मैं जो भी कर रही हूँ वो तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ।
0: अब इसमें मेरी क्या भलाई है? तू एक भलाई तो पहले ही कर चुकी।
1: बस कर, आज तक उस मुश्ताक को भूली नहीं है। कान खोल कर सुन ले, तेरा निकाह अब उसी जगह होगा जहां मैं चाहूंगी।
0: मैं ये निकाह नहीं करूंगी।
1: तेरा निकाह रसूल से ही होगा, और अपने मन की कोई बात हो भी तो उसे वहीं दफन कर ले, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी।
0: मेरा निकाह मुझसे पूछे बगैर तू कैसे कर सकती है अम्मी? मैं ये निकाह नहीं करूंगी, नहीं करूंगी।
1: अरे तुझसे पूछने की मुझे जरूरत नहीं है, और मैं तेरी माँ हूँ, जहाँ कहूंगी वहीं तेरा निकाह होगा।
0: लेकिन मैं उस रसूल से निकाह नहीं कर सकती।
1: क्यों, क्या कमी है उसमें?
0: तू खूब जानती है अम्मी उस रसूल में क्या कमी है। गांव का बच्चा बच्चा जानता है नूरी के साथ क्या किया उसने। ये बात क्या छिपी है किसी से?
1: अरे जा, नूरी बदजात थी, रसूल से उल्टा जुबान लड़ाती थी। रसूल ने जो किया सही किया। औरत को अपने शौहर की बात पर ही चलना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसे वही सजा मिलती है, और उसका हश्र नूरी जैसा होता है। पर रसूल तुझे खुश रखेगा बेटी, उसके पास पैसा भी खूब है, मेहनत करता है, कमाता है। तुम दोनों बहुत बहुत खुश रहोगे।
0: नहीं अम्मी, पैसा कमाने से कोई अच्छा आदमी नहीं हो सकता। अम्मी, पूरे गांव में एक भी आदमी ना होगा जो रसूल के बारे में अच्छा सोचता हो, और तुम मेरा निकाह उसी के साथ पढ़वाना चाहती है?
1: अरे लोगों का क्या, लोग उसके पैसों से जलते हैं, उसकी तकदीर से जलते हैं।
0: तू अपने आप को धोखा दे रही है अम्मी, लेकिन मैं कह देती हूँ

0: मैं उस रसूल से कभी निकाह नहीं करूंगी।
1: बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, एक बात कान खोल कर सुन ले, तुझे रसूल से निकाह करना होगा और ये मेरा आखिरी फैसला है।
0: मैं इस फैसले को नहीं मानती।
1: तो उस मुश्ताक की बांदी बनकर रहती, उस घर में नौकरानी बनकर रहती।
0: अम्मी,
1: भूल जा उस मुश्ताक को, अब तेरा निकाह रसूल से होगा।

सारे के लाख मना करने के बावजूद फाता उसका निकाह रसूल के साथ कर देती है। निकाह के कुछ दिनों बाद ही उन दोनों में अनबन शुरू हो जाती है।

0: खाना बन गया क्या? बड़ी भूख लगी है। साराय, साराय, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ।
1: हाँ,
0: अरे अरे, क्या सोच रही है? खाना दे।
1: हाँ लाती हूँ।
0: और ये रोनी सूरत क्यों बना रखी है तूने?
1: वो कुछ नहीं, बस।
0: कुछ नहीं? अरे तो क्या तू हंस नहीं सकती? रोनी सूरत बनाकर मेरे सामने खड़ी हो जाती है।
1: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम खाना खाओ।
0: अरे रोनी सूरत लेकर खड़ी है और मैं खाना खाऊं?
1: खाना क्यों फेंक दिया?
0: चुप कर, रहती है मेरे साथ और रोती है उस मुश्ताक को याद करके। अब अगर मेरे सामने आई तो अच्छा ना होगा। अब जा यहां से। ऐसे क्या देख रही है मुझे? चल।

0: अब्बू अब्बू खाना खा लो, काम पर भी तो जाना है।
1: ला दो बेटा।
0: अब्बू मायूस लग रहे हो, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है?
1: ठीक ही हूँ बेटा, तबीयत का क्या होता है, तकदीर में जो लिखा है वही तो देखूंगा।
0: ऐसा क्यों सोचते हो अब्बू? दिल छोटा ना करो, जब तकदीर में ऐसा ही लिखा था तो इसके अलावा और क्या होगा? बस भुगतना तो है ही।
1: रसूल कब आ रहा है?
0: पता नहीं अब्बू, कहा तो था कि 1 महीने में आ जाएगा।
2: सारे सारे
0: अब्बू लगता है रसूल आ गया।
1: जा उसे देख बेटा, किसी चीज की जरूरत हो उसे।
0: हाँ तुम जाओ अब्बू, मैं देखती हूँ।
2: साराय साराय
0: आती हूँ।
2: साराय साराय
0: कहा ना आती हूँ, फिर शोर क्यों मचा रहे हो?
2: क्या कर रही थी?
0: अब्बू को खाना खिला रही थी।
2: जब मैं आया तो पहले मेरे पास आना चाहिए था, तुम्हें तो मेरा ख्याल ही नहीं है।
0: चाय लाऊं?
2: रहने दे, मेरे आते ही तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बच जाते हैं? पता नहीं किस मनहूस घड़ी में वास्ता पड़ा था तुझसे। अरे अब कहाँ जा रही है?
0: रसोई में।
2: चुपचाप यहीं खड़ी रह, समझी?
0: तुम हमेशा मुझसे इसी तरह क्यों बोलते हो?
2: तो चूमू तुझे? अरे सूरत तो ऐसे बनाए रहती है जैसे मैं मर गया हूँ। अरे जा जा, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, जा उसी के पास जा जिसने तुझे थूक दिया है।
0: रसूल, अपने दिमाग की गंदगी अपने पास रखा करो।
2: अभी बताता हूँ तुझे।
0: रसूल।

0: अरे चाय पी लो।
1: अरे कहाँ ना रहने दो,
0: क्या हुआ, चाय क्यों नहीं पी रहे? अब
1: मन नहीं है।
0: मन नहीं है या और कोई बात है?
1: कोई बात हो भी तो तुम्हें क्या, तुम अपना काम तो कर ही रही हो।
0: तुम्हारे कहने का मतलब क्या है?
1: मैं क्या कह रहा हूं तुम अच्छी तरह जानती हो, पर तुम जानना नहीं चाहती।
0: अरे तुम बेकार की बातें सोच कर अपना मन खराब कर रहे हो। मेरी मानो तो जैसा चल रहा है चलने दो।
1: अरे सारे को देखो,
0: क्या हुआ है सारे को? अच्छी भली तो है।
1: तुम माँ हो उसकी यहाँ।
0: चुप करो, कभी तो मुबारक शब्द बोलो।
1: सारे के साथ रसूल कैसा बर्ताव करता है जानती हो?
0: रसूल ठीक है, सारे ही उससे अच्छा बर्ताव नहीं करती तो ऐसा होगा ही।
1: वादा, तूने पैसों के लालच में आकर ऐसा किया है, और अब रसूल के चंद पैसों ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया है, जो तुम अपनी बेटी के दुख को नहीं देख पा रही हो। तुमने मां होकर सारे को एक जानवर के हाथ में दे दिया है, जो हर बार उस पर जुल्म करता है, मारता पीटता है, और सारे पल पल घुटती है।
0: जी हटो भी, अब रहने भी दो। रसूल इतना बुरा नहीं, सारे अगर दो अच्छे बोल बोल लेगी तो जुबान नहीं कट जाएगी उसकी। हमेशा रोनी सूरत लेकर जाती है उसके पास, तो क्या बुरा करता है वो? अरे औरत उसी का प्यार पाती है जिसका मर्द उससे प्यार करे। पर सारे की ऐसी सूरत देखकर किसे प्यार आएगा? बोलो, बोलते क्यों नहीं?
1: इसकी जिम्मेदार भी तुम ही हो। तुमने अगर सारे का निकाह रसूल से ना किया होता तो ऐसा कभी नहीं होता।
0: अरे जाने दो, मैंने सारे की खुशी के लिए किया है ये सब।
1: तुम मां नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अगर होती तो सारे का दुख देखती। मैं नहीं देख सकता, नहीं देख सकता।
0: हाँ, अगर नहीं देख सकते तो सारे को समझाओ कि वो रसूल से अच्छा बर्ताव करे, और नहीं तो तुम अपनी आंखें बंद कर लो।
1: मैं जा रहा हूं, पुरानी कोठी में रह लूंगा, पर यहां रहकर सारे का दुख नहीं देख पाऊंगा।
0: ठीक है, जाओ। बड़े आए प्यार जताने वाले। अरे जितना पैसा रसूल देता है हमें उसका एहसान मानना चाहिए।

0: आ गई बेटी,
1: खाना खा लो अब्बू।
0: रख दे बेटा।
1: अब्बू एक बात पूछूं?
0: हाँ?
1: सच सच बताएंगे?
0: पूछो बेटी, क्या बात है?
1: अब्बू

0: सब कुछ जानते हुए भी आपने मेरा दूसरा निकाह क्यों किया?
1: ये सवाल मुझसे ना पूछा कर बेटी।
0: क्यों ना पूछूं अब्बू?
1: मैं तेरे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा।

0: के लिए होती है क्या? क्या लड़की की अपनी कोई जिंदगी नहीं होती? वो अपनी खुशियों को अपने तरीके से नहीं पा सकती, वो खुलकर हंस नहीं सकती, बोल नहीं सकती, अपनी जिंदगी को दूसरों के हाथों घोटती रहती है, बस पिसती रहती है महज देह बनकर। आपने सब जानते हुए भी आप चुप रहे, मेरी बर्बादी देखते रहे आप। क्यों अबू, क्यों, क्यों होने दिया आपने मेरा दूसरा निकाह उस रसूल के साथ? क्यों अबू, क्यों?
1: बेटा, मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। बस इतना जान ले कि तू अपनी अम्मी की नाजायज इच्छाओं की बलि वेदी पर चढ़ी है। वो चाहती है कि उसका जमाई उसे खूब पैसा दे। रसूल तेरी माँ को पैसा देता है और यही वजह है कि वो तुम पर होने वाले जुल्मों को अनदेखा करती है। पैसे के लालच ने उसे माँ से शैतान बना दिया है बेटी।
0: आपने कुछ क्यों नहीं किया अबू?
1: मैं मजबूर हूँ बेटी। तू जा, घर जा बेटी।
0: अबू, आप रो रहे हैं। अबू?
1: नहीं बेटी, रो नहीं रहा हूँ, अपने गुनाहों की सजा पा रहा हूँ।
0: अबू,
1: तू जा बेटी, तुझे देर हो रही है। ये तूने क्या किया? इस फूल सी बच्ची पर क्या?

0: कुछ समय बाद मुश्ताक के बीमार होने की खबर सुनकर हसन भट्ट उससे मिलने जाता है।
1: अरे फजी, जरा देखना तो कौन है।
2: देखती हूँ। अरे हसन भाईजान, आप? सलाम।
3: वालेकुम सलाम।
2: आइए, अंदर आइए।
3: क्या करीम भाईजान घर पे नहीं है?
1: अरे अरे हसन भट्ट, अस्सलाम वालेकुम। आइए।
3: वालेकुम सलाम।
1: आइए आइए, बैठे बैठे। अरे भाई फजी, जरा दो कप चाय तो बनाओ।
2: जी।
3: सब ठीक तो है ना?
1: बस सब ठीक है। कैसे हो हसन भट्ट? फातह कैसी है और सारे?
3: सब ठीक है।
1: आपके चेहरे पर मायूसी दिख रही है।
3: पहले ये बताइए, मुश्ताक कैसा है? सुना है उसकी तबीयत खराब है, सो मिलने आ गया।
1: ओह, बस क्या बताऊं, दवा असर ही नहीं कर रही है। दिनों दिन हालत खराब होती जा रही है।
3: किसी अच्छे डॉक्टर से क्यों नहीं मिलते?
1: हाँ, बस वो इंतजाम में लगा हूँ। कुछ पैसे हाथ आ जाए तो दिखाऊंगा। मुश्ताक के बीमार हो जाने से भाई घर की माली हालत गड़बड़ा गई है।
3: करीम भाई, आप पैसों की चिंता ना करें, हम मदद करेंगे। अभी मैं जाता हूँ, एक डॉक्टर को लेकर आता हूँ।
1: आप?
3: उनका बड़ा नाम है, अल्लाह ताला ने चाहा तो मुश्ताक जल्दी ही ठीक हो जाएगा।
1: अरे नहीं नहीं हसन भट्ट, आप तकलीफ ना करें।
3: तकलीफ कैसी, मुश्ताक के प्रति

0: अरे करीम भाई, ये है डॉक्टर साहब।
1: डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: आइए डॉक्टर साहब, मुश्ताक उस कमरे में है।
2: जी अच्छा,
0: आइए।

0: मैंने मुश्ताक को देख लिया है
1: जी।
0: मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ, अल्लाह ने चाहो तो मुश्ताक एक सप्ताह में दौड़ने लगेंगे।
1: आमीन। डॉक्टर साहब आपकी फीस
0: आप फिक्र ना करें, हसन मट ने फीस पहले ही दे दी है, आप दवा मंगवा कर समय से दवा दें। अच्छा मैं चलता हूँ, जरूरत लगे तो मुझे बुलवा भी लीजिए।
1: जी
2: अच्छा डॉक्टर
1: जैसा आप बेहतर समझें।
2: ये दवा ले, समय पर दवा देते रहिएगा, मुश्ताक जल्द ठीक हो जाएगा।
1: हसन भट आपका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं, मेरे समझ में नहीं आता।
2: अरे ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा करीम भाई अब मैं चलूंगा।
1: खुदा हाफिज।
2: खुदा हाफिज।
3: कौन?
0: मैं मुश्ताक।
3: मुश्ताक मुश्ताक आप
0: सारे तुम अब्बू कहाँ हैं?
3: अब्बू बाहर गए हैं, आते ही होंगे, आओ बैठो।
0: कुछ बोलो सारे, नई जिंदगी कैसी चल रही है?
3: बेहतर है।
0: सारे एक बात पूछूं, सच बताओगी?
3: पूछो।
0: तुम मुझसे तलाक लेकर खुश हो? अगर ऐसा है तो मुझे किसी से कोई शिकायत ना होगी।
3: तुमने मुझसे दगा किया है मुश्ताक, प्यार का ढोंग रचते रहे हो, इंतजार भी ना कर सके और तलाकनामा भेज दिया।
0: सारे मेरे प्यार पर तोहमत ना लगाओ, तुमने तलाकनामा भेजा और मैंने तो सिर्फ तुम्हारी रजा मानकर उस पर दस्तखत किए हैं।
3: क्यों झूठ बोलते हो मुश्ताक, अपने गुनाह को मेरे सर क्यों मर रहे हो? मैं ऐसा क्यों करती भला? मैं तुमसे तहे दिल से मोहब्बत करती थी, आज भी करती हूँ।
0: सारे अगर तुमने तलाकनामा नहीं भेजा तो फिर हमारे साथ धोखा हुआ है। हाँ सारे कोई है जिसने हमारे बीच ये दूरियां पैदा की है।
3: पर ऐसा कौन हो सकता है?
0: अल्लाह ना करे ऐसा हो, पर तुम्हारी अम्मी ही ऐसा कर सकती है।
3: क्या?
0: हाँ, जैसा लोगों ने मुझे बताया है कि रसूल के पैसों की वजह से तुम्हारी अम्मी ने पहले हमें तलाक दिलवाया और फिर तुम्हारा निकाह रसूल से कर दिया।
3: इसका मतलब हमारे साथ धोखा हुआ है मुश्ताक। मेरा दिल कहता था मुश्ताक कि मेरा मुश्ताक ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुमसे आज भी प्यार करती हूँ मुश्ताक, आज भी।
0: लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता सारे, तुम्हारा दूसरा निकाह हो चुका है। तुम खुश रहो, अब यही दुआ करूंगा कि मेरा प्यार जहां भी रहे सलामत रहे।
3: मुश्ताक अल्लाह जानता है या मैं जानती हूँ कि रसूल के साथ सिर्फ मेरा शरीर रह सकता है, तुम्हारी सारे नहीं मुश्ताक।
0: तो क्या तुम रसूल के साथ खुश नहीं हो?
3: मैं कैसे खुश हूँ ये देखना चाहते हो? ये देखो ये निशान उस रसूल के दिए हैं, यही है उसका प्यार।
0: ओ सारे
3: नहीं देख सकते ना, ये तो तन पर पड़े ऐसे जख्म है मुश्ताक।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक सिसकियां का 8वां भाग। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
5: आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। ये पहल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। प्रदेश में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान में विद्यालयों, महाविद्यालयों और सामाजिक संगठनों को जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों पर विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत का स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में पूर्व जज गिरिवाला सिंह और उनके बेटे समर सिंह को कल विशेष सीबीआई अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजते हुए 16 जून तक भोपाल सेंट्रल जेल में रखने का आदेश दिया। और मौसम विभाग के अनुसार टर्फ लाइन और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में फिलहाल प्री मानसून गतिविधियां सक्रिय हैं। मानसून 20 से 22 जून के बीच दस्तक दे सकता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दिन का एक बजा है। प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की है।
1: सखियों, स्वागत है आपका महिला सभा कार्यक्रम में। स्वीकार कीजिए स्मृति तिवारी का नमस्कार। सखियों, हम सभी देख रहे हैं दुनिया भर में ईंधन का संकट बढ़ रहा है। इसके लिए सभी देश प्रयास कर रहे हैं। हम सभी अपनी तरफ से प्रयास करें तो ईंधन की बचत और पर्यावरण की सुरक्षा में अपना योगदान दे सकते हैं। सखियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऊर्जा संकट को ध्यान में रखते हुए ईंधन की खपत कम करने के लिए कहा है। हम सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें या कार पूलिंग करें, पेट्रोल डीजल वाले वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करें। आसपास के कार्यों के लिए हम साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी दूर के लिए इसका उपयोग करने से हम ट्रैफिक जाम से आसानी से बच सकते हैं। सखियों, साइकिल चलाने से सेहत अच्छी रहती है। ये एक तरह की एरोबिक एक्सरसाइज है जिसे शरीर को चुस्त रखने के लिए और मसल्स को टोन करने के लिए भी चलाया जाता है। और अगर हम रोजाना 20-30 मिनट साइकिलिंग करें तो शरीर जो है हमारा शेप में रहता है। सखियों, हम कह सकते हैं साइकिल एक साधारण सवारी नहीं बल्कि सेहत और स्फूर्ति का खजाना है और इसके उपयोग से हमारे जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। सेहत पर साइकिल चलाने के फायदों को ध्यान में रखकर ही हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण के लिए साइकिल के फायदे उजागर करना और सेहत के प्रति साइकिल चलाने के फायदों से लोगों को अवगत कराने जैसे कारणों को ध्यान में रखकर ये दिवस मनाया जाता है। सखियों, ये दिवस 2018 से मनाया जा रहा है। साइकिल चलाने से वायु प्रदूषण कम होता है और इसे चलाने के लिए पेट्रोल या CNG किसी ईंधन की जरूरत नहीं होती है। सखियों, साइकिलिंग हर उम्र के लोगों के लिए एक बेहतरीन गतिविधि है। सखियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वस्थ रहने के लिए रोजाना कम से कम 30 से 45 मिनट साइकिल चलाना बहुत फायदेमंद होता है। इससे रक्त संचार अच्छा व शरीर के सभी अंगों का व्यायाम होता है। दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। साइकिलिंग करने से कैलोरी बर्न होती है, शरीर की अतिरिक्त चर्बी कम होती है। सखियों, पैडल चलाने से शरीर में एंडोर्फिन निकलता है जिससे मानसिक शांति मिलती है। साथ ही ये परिवहन का सबसे स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल साधन है। सखियों, आप भी साइकिलिंग करें लेकिन सुबह के समय। इस समय हीट वेव चल रही है इसलिए दोपहर और शाम के समय बिल्कुल भी साइकिल ना चलाएं। सखियों, साइकिल के हर पैडल के साथ एक नया सफर शुरू होता है जो हमें सिखाता है जीवन भर स्वस्थ रहना। जीवन के सफर में जब हम सफर साथ हो तो हर लम्हा खुशनुमा हो जाता है, मंजिलें आसान हो जाती हैं और रास्ते यूं ही कट जाते हैं।

0: सखियों, कुछ समय पहले हम आपसे बात कर रहे थे सेहत को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए साइकिलिंग करें, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, तन के साथ मन भी खुश रहे। इसके लिए जरूरी होता है हम अच्छा साहित्य और किताबें पढ़ें। इससे हमारे अंदर नए विचार आते हैं। साथ ही अलग अलग परिस्थिति और घटनाओं को जब हम देखते हैं तो मन में कई तरह के भाव आते हैं। इन भावों में शब्दों का संयोजन करके लय के साथ हम कविता और काव्य पाठ के रूप में व्यक्त करते हैं। सखियों, आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं काव्य पाठ। कवित्री हैं ज्योति दोहरे।
1: सभी श्रोताओं को मेरा सप्रेम नमस्कार। एक मुक्तक से सभी श्रोताओं से जुड़ने की कोशिश करती हूँ। चूंकि मैं कर्म को विशेष महत्व देती हूँ, मैं मानती हूँ कि कर्म की प्रधानता हमारे जीवन में सबसे विशेष होना चाहिए। मैं क्या कहती हूँ सुनिएगा। नशा

खिलते है मिलना तय यहाँ फूलों से, जो कांटों के संग चलते साधना कर्म की करते न किस्मत नाम लेते हैं। साधना कर्म की करते न किस्मत नाम लेते हैं। मित्रों, हर किसी के आगे हमें झुकना भी नहीं चाहिए, हमें कैसे लोगों को प्रणाम करना चाहिए, एक मुक्तक के माध्यम से आपको बताती हूँ, सुनिएगा कि

भाई को। और चार पंक्तियां और रखती हूँ कि करना हो फतेह हिमालय तो छोटी घाटियां चढ़ने से क्या होगा। कि करना हो फतेह हिमालय तो छोटी घाटियां चढ़ने से क्या होगा। और बनना हो जो सूत्रधार तो एक दो किताबें पढ़ने से क्या होगा। जानना चाहते हो समुद्र की गहराई तो उसकी तह तक जाओ। कि जानना चाहते हो समुद्र की गहराई तो उसकी तह तक जाओ। यूं छोटे तालाबों में मछलियां पकड़ने से क्या होगा। यूं छोटे तालाबों में मछलियां पकड़ने से क्या होगा। बेटियां चांद तक पहुंच गई फिर भी उन्हें आज कम आंका जाता है। और एक बेटी होने के नाते देश की सभी बेटियों को एक छंद अपना घनाक्षरी मेरा सर्वप्रिय छंद मैं उसको सभी को भेज रही हूँ। सभी का आशीष मिले। सुनिएगा कि

हैं। नशे को बंद करने के ऊपर, नशा मुक्ति के ऊपर एक छंद आप सभी को भेज रही हूँ, सप्रेम भेंट कर रही हूँ, सुनिएगा। चाहिए न प्रेम वाले गजल व गीत यहाँ, राष्ट्र को संजोने वाले छंद होने चाहिए। के चाहिए न प्रेम वाले गजल व गीत यहाँ, राष्ट्र को संजोने वाले छंद होने चाहिए। दबे ना गरीबी यहाँ जीवन के बोझ तले, रोटियों के भाव यहाँ

ने चाहिए। हमारी कवियों की कलम बहुत कुछ लिखती है, लेकिन जब एक देश प्रेम की कवयित्री कुछ लिखने का प्रयास करती है तो सबसे पहले उसे सीमा पर जो सैनिक हैं उनकी माँ याद आती हैं, क्योंकि उनकी अगर माँ ना हो तो वो सीमा पर सैनिक हमारे ना खड़े हों और हमारे देश की रखवाली ना कर रहे हों। तो सैनिकों की माँओं के ऊपर समर्पित मेरा एक घनाक्षरी आप सभी को भेंट कर रही हूँ, सुनिएगा।

वीर कोख से, कि जाए हैं जिन माओ ने तमाम वीर कोख से, ऐसी ही माओ पे हर बार लिखे लेखनी, ऐसी ही माओ पे हर बार लिखे लेखनी। और एक छंद में और आप सभी को भेज रही हूँ, सुनिएगा।

एकता के बिन बाजे शंख यहाँ सभ्यता व एकता के अखंडता के स्वप्न यहाँ बुन कौन पाएगा कि जागी नहीं युवा पीढ़ी सोई रही प्रेम में चीखती पुकारी यहाँ सुन कौन पाएगा। बिन बाजे शंख यहाँ सभ्यता व एकता के अखंडता के स्वप्न यहाँ बुन कौन पाएगा कि बिन जन चेतना के राष्ट्रभक्ति भाव बिना कि बिन जन चेतना के राष्ट्रभक्ति भाव बिना देश का भविष्य यहाँ चुन कौन पाएगा। और कैसे करें सारे यहाँ राष्ट्र का निर्माण अब कि कैसे करें सारे यहाँ राष्ट्र का निर्माण अब जाने बिना देश यहाँ गुण कौन पाएगा जाने बिना देश यहाँ।

0: कौन कौन पाएगा। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपका रस परिवर्तन करती हूँ और आपको एक गजल के एक मतले और एक शेर से जोड़ती हूँ कि गरीबों की बस्ती में कांच के ये मकान किसके हैं, कि गरीबों की बस्ती में कांच के ये मकान किसके हैं, गुलों के जिस्म पर नाखूनों की ये निशान किसके हैं, कि गरीबों की बस्ती में कांच के ये मकान किसके हैं, गुलों के जिस्म पर नाखूनों के ये निशान किसके हैं, और मचा है तंग गलियों में अचानक शोरगुल कैसा, कि मचा है तंग गलियों में अचानक शोरगुल कैसा, ये किसके घर पर आए नए मेहमान किसके हैं, ये किसके घर पर आए नए मेहमान किसके हैं। और एक शेर आप सभी के बीच पेश करती हूँ कि सभी लोगों ने अपनी बोलियां आकर लगाई हैं, कि सभी लोगों ने अपनी बोलियां आकर लगाई हैं, हमें मालूम है बिकते यहाँ ईमान किसके हैं। और एक शेर देखिएगा कि अदालत फैसला देने से पहले देख ले थोड़ा, कि अदालत फैसला देने से पहले देख ले थोड़ा, मेरे बारे में झूठे दे रखे बयान किसके हैं। और मक्ता पेश करती हूँ, यहाँ बाजार में ज्योति हर एक सामान बिकता है, यहाँ बाजार में ज्योति हर एक सामान बिकता है, दुकानों पर सजा रखे ये अरमान किसके हैं, दुकानों पर सजा रखे ये अरमान किसके हैं।
1: सखियों, अभी आपने ज्योति दोहरे से काव्य पाठ सुना। सखियों, समर वेकेशंस चल रहे हैं और हम बच्चों को नई नई एक्टिविटी से जोड़ते हैं, कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं जिससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास हो। हम देखते हैं जब भी बच्चों को अपने मन के अनुसार कुछ करना होता है तो वे मोबाइल पर गेम खेलते हैं, तो कभी टीवी पर अपने पसंदीदा कार्यक्रम को लंबे समय तक देखने में अपना समय बिताते हैं। लगातार स्क्रीन से जुड़े रहने से वे ओवर एक्टिव होने लगते हैं, उनका ध्यान भटकने लगता है। सखियों, उनकी परिवर्तनशील भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है कि उन्हें योग से जोड़े, बच्चों में योग के प्रति रुचि जागृत करें, उन्हें योग करने के लिए प्रेरित करें। सखियों, बच्चे देखकर जल्दी सीखते हैं, उनके साथ खुद भी योगा करें। एक शांत और सुरक्षित योगा स्पेस बनाएं, घर में एक आरामदायक जगह चुनें, गैजेट्स को वहां से दूर रखें और उनके साथ अभ्यास करें। सखियों, जब वे हमें करते देखेंगे तो वे स्वयं जुड़ना चाहेंगे। खेल खेल में 10-15 मिनट का अभ्यास कराते हुए योगासन को उनकी आदत में शामिल करें, साथ ही योग के प्रति उत्साहित करें। योग के आसनों को जानवरों या प्रकृति के नाम से जोड़कर मजेदार बनाएं। ताड़ासन, वृक्षासन, तितली आसन, भुजंगासन, सिंहासन कराएं। सखियों, इन योगासनों को करने से शरीर की स्ट्रेचिंग होती है, मांसपेशियों और जोड़ों का व्यायाम होता है और इससे उनका संतुलन और एरोबिक क्षमता भी बेहतर होती है। सखियों, जब बच्चे सही आसन में बैठना सीखते हैं ना, तो वे अपने शरीर के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं, उनके जीवन में स्वस्थ शारीरिक आदतें शामिल होने लगती हैं। योग में गहरी सांस लेने की प्रक्रिया बच्चों को एक समय में एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करने और उनके मन को शांत करने में मदद करती है। सखियों, योग करते समय बच्चे शरीर पर संतुलन बनाना सीखते हैं, नए आसन सीखते हैं तो उन्हें उपलब्धि का एहसास होता है, साथ ही शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, आत्मविश्वास आता है, अनुशासन में रहना सीखते हैं। उन्हें समझाएं कि योग दिनचर्या का सहज हिस्सा है, उसे दैनिक दिनचर्या में शामिल करें और इससे याददाश्त यानी कि मेमोरी भी तेज होती है, पढ़ाई में मन अधिक लगता है और बच्चों की रचनात्मकता भी बढ़ती है। सखियों, हम बच्चों के सुबह के व्यायाम और सोने से पहले की दिनचर्या में सरल योगासन को शामिल कर सकते हैं। बच्चों के साथ समय बिताने से हमारी देखिए बॉन्डिंग है ना, वो और भी मजबूत होगी, वे अपनी बातों को आपसे और अधिक शेयर करेंगे और बच्चे आपके और भी करीब आ जाएंगे।

सखियों, हम सभी देख रहे हैं कि गर्मी लगातार बढ़ रही है। हीट वेव को हम सभी महसूस कर रहे हैं और इनसे बचने के लिए हम एनर्जी ड्रिंक, शिकंजी, आम पना, मठा, छाछ, सत्तू का शरबत को अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं। ये पेट को ठंडा रखते हैं, साथ ही एनर्जी लेवल भी बढ़ाते हैं। साथ ही ठंडी ठंडी लस्सी, मैंगो शेक का हम सब आनंद ले रहे हैं। सखियों, इस समय आम तो हर तरफ देखने को मिल रहा है। आम से बने व्यंजन का स्वाद हमें अलग ही सुख देता है। सखियों, आम रस आम के गूदे से बना स्वादिष्ट और ताजा पेय है, जो अपनी प्राकृतिक मिठास और ठंडक के लिए जाना जाता है। सखियों, इस मौसम में इसके सेवन से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है। साथ ही ये पाचन को सुधारने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। सखियों, आम रस का प्रयोग कई पारंपरिक व्यंजनों में किया जाता है, साथ ही आइसक्रीम, केक में भी आम रस का उपयोग होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आम रस के बहुत लाभ होते हैं, जो गर्मियों में थकान को मिटाकर शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं। सखियों, आम रस विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। ये विटामिन ए से भरपूर होता है, जो आँखों की रोशनी को स्वस्थ रखने में मदद करता है। आम रस पाचन में सहायक होता है और इसमें फाइबर की मात्रा होती है, जो पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाती है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मददगार है। सखियो, आम रस में कैलोरी और अधिक होती है। जिसका वजन बढ़ा हुआ है या मधुमेह रोगी है, डायबिटिक पेशेंट है, वो इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करें। सखियो, आप भी घर में आम लाएं, आम रस बनाएं, पूरे परिवार के साथ इसका लुफ्त और आनंद उठाएं, लेकिन गर्मी को ध्यान में रखते हुए इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करें। अपनी सेहत का ध्यान रखें, घर से जब भी बाहर निकलें अपने शरीर को कवर करके निकलें और साथ ही पानी की बोतल हमेशा साथ में रखें। और अब समय कह रहा है हमें चलने के लिए, तो कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपनी सखी स्मृति तिवारी को। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए महावीर सिंह भदौरिया के गाए कुछ लोकगीत। आरंभ कर रहे हैं लोक भजन के साथ। आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुति है आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे महावीर सिंह भदौरिया के गाए कुछ लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की थी।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात। 1936
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे स्वाति पाराशर के गाए कुछ भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की।

0: स्वाति पाराशर के गए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आज की ये प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। मोहम्मद रफी का गाया, गुलजार का लिखा, मदन मोहन का स्वरबद्ध किया फिल्म मौसम का ये गीत है।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का गाया फिल्म मौसम का ये गीत था। डर फिल्म का गीत अब आपको सुनवाते हैं, लता मंगेशकर और ए हरिहरन ने इसे गाया है। शिवहरी के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी ने लिखा है।

0: लता मंगेशकर और ए हरिहरन का गाया ये डर फिल्म का गीत था। शिव हरी के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी ने लिखा था। इसके साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और देश के हर गांव और हर व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए। उन्होंने ये भी चिंता जताई कि अभी भी कई जनजातीय वर्गो को सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं है। जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत आयोजित इस सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा के जॉर्ज कुरियन, सुमेर सिंह सोलंकी और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह का कार्यकाल 21 जून को खत्म हो रहा है। इन सीटों के लिए नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 9 जून को जांच होगी और 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। जरूरत पड़ी तो 18 जून को मतदान और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना होगी। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से कई लोगों की मौत की खबर है। हालांकि प्रशासन ने अब तक 4 शवों की ही पुष्टि की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने भी घटना पर गहरा दुख जताया है। सीबीएसई ने बताया है कि 12वीं के लगभग 40,000 छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए सफलतापूर्वक आवेदन जमा कर दिए हैं। बोर्ड ने कल उत्तर पुस्तिकाओं की जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए है जिन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी पहले ही प्राप्त कर ली है। प्रदेश का लोक निर्माण विभाग अब सड़क निर्माण को सिर्फ निर्माण कार्य तक सीमित नहीं रखेगा। इसी सोच के साथ मंत्री राकेश सिंह की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 1 और 2 जून को महाराष्ट्र और गुजरात के अध्ययन दौरे पर गया। वहां टीम ने महाराष्ट्र के वित्तीय मॉडल, डिजिटल गवर्नेंस और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम को समझा। अब इसी तर्ज पर प्रदेश में 1 रियल टाइम इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम बनाया जाएगा ताकि निर्माण स्थल पर कोई घटना होने पर मिनटों में कार्रवाई हो सके। खंडवा जिले ने जल संचय जन भागीदारी अभियान में देश भर में 5वां और अपने जोन में 2रा स्थान हासिल किया है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 4,22,000 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण किया गया। इनमें सोकपिट, रिचार्ज पिट, बोरी बंधान और कंटूर ट्रेंच जैसी संरचनाएं शामिल हैं। 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इस बार का वैश्विक अभियान जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है। इसकी मेजबानी अजरबैजान कर रहा है। प्रदेश में भी इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खंडवा समेत कई जिलों में इस दिन एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत विकासखंडों में पीपल, नीम, बरगद और आम के पौधे लगाए जाएंगे। दूसरी तरफ पश्चिम मध्य रेलवे भी 15 मई से 15 जून तक जबलपुर मंडल में पर्यावरण जागरूकता अभियान चला रहा है। भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में 6 जून से 5 दिवसीय महुआ महोत्सव शुरू हो रहा है। ये महोत्सव संग्रहालय की 13वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। 10 जून तक चलने वाले इस महोत्सव में देश भर के जनजातीय नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक शिल्प और देशज व्यंजनों की भरमार रहेगी। संस्कृति और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी 6 जून की शाम 6:30 बजे इसका शुभारंभ करेंगे। और अब बात मौसम की। इस बार नौतपा में गर्मी की जगह आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने डेरा जमाए रखा। बारिश और तेज हवाओं से पारा 8 से 10 डिग्री तक लुढ़क गया और कहीं भी हीट वेव नहीं बनी। मौसम विभाग ने आज इंदौर, उज्जैन सहित 36 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नीमच कलेक्टर ने अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच कलेक्टर ने कल समय सीमा पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में बारिश के पहले सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आगर मालवा जिले के सुसनेर नगर परिषद द्वारा 3,27,00,000 रुपए की लागत से नगर में आधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराया जाएगा। शिवपुरी में प्रतिबंधित और नियंत्रित श्रेणी की भूमियों के अवैध हस्तांतरण, पंजीयन, नामांकन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए जिले के सभी उपपंजीयकों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को निर्देश जारी किए गए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल कर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही

0: कारण ये हुआ है। पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की। गृह मंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गांव और व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए।
2: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तले इलाके में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
1: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को सरकार साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीप अंसाहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में 2 पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट पूरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि ये कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ. जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री

0: पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली एक खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि ये लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसी प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमेरिकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमेरिकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमेरिका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है, क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए RBI ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांचा इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन

0: आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
1: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
0: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणय आयरलैंड के नहन ग्वेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने थाईलैंड के बुसानन ओमबाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंग कांग और आरोई ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों द्वारा भेजी पसंद का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम में पहला गीत प्यार का मौसम फिल्म का गीत, किशोर कुमार की आवाज में, मजरू के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत सुनना पसंद किया है। कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य आदित्य, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली ने, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम और कुसुम नेताम ने, गोला बाजार भक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित, रामजी आर्य ने, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक ने, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस तपस्या और करिश्मा कामले ने।

कार्यक्रम में अगला गीत सुनना पसंद किया है बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा ने। मोहल्ला हलवाइन शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वाकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू साजिदा रानी और हिना कौसर ने। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राजी राशि, रक्षित चित्रंजन, कमलेश उमेश, सरोज आरती, रेखा ऋतिक ऋचा, स्वीटी सागर, रिया रीत, ऋषभ राजावत और राजावत परिवार के सदस्य, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। सुनना चाहा है अभिजीत और साथियों का गाया ये दिल लगी फिल्म का गीत। समीर ने गीत लिखा है, स्वरबद्ध किया है दिलीप सेन समीर सेन ने।

अगले गीत के लिए अनुरोध लिख भेजा है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ, शाइना और निवान शर्मा ने। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमीन और प्रयागराज भट्ट ने। मगरलोड धमतरी से पुनूराम साहू राज, तेजेश्वरी साहू, राजश्री राज साहू ने। इचलकरंजी महाराष्ट्र से बसंत जी हजारे, प्रमोद हजारे, महेश हजारे, मितांशु हजारे और आदित्य हजारे ने। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, नुपुर, मोनिका, ऋषिका और रॉबिन ने। ये दिल आशिकाना फिल्म का टाइटल ट्रैक है। कुमार सानू और अलका याग्निक ने इसे गाया है। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में समीर ने लिखा है गीत।

अगली पसंद शामिल कर रहे हैं स्टोर रेडियो श्रोता संघ रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल की पसंद है। और पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री,

मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। सुनना पसंद किया है, स्वीकार किया मैंने फिल्म का ये टाइटल, स्वीकार किया मैंने फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। निदा फाजले ने लिखा, उषा खन्ना की धुन।

कार्यक्रम में अगला गीत गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या और करिश्मा कामले ने सुनना पसंद किया है। छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री ने पसंद किया है। ग्राम महसवाड़ी मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीक धाड़े, निनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े और अजय खिरोड़कर की पसंद है शक्ति फिल्म का गीत। किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने इसे गाया है। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए फिल्म शक्ति के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है, देश के हर गांव और हर व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए। प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा के जॉर्ज कुरियन, सुमेर सिंह सोलंकी, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह का कार्यकाल 21 जून को खत्म हो रहा है। इन सीटों के लिए नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 9 जून को जांच होगी, 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से कई लोगों की मौत हो गई है। हालांकि प्रशासन ने अब तक 4 शवों की ही पुष्टि की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख, घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। सीबीएसई ने बताया है कि 12वीं के लगभग 40,000 छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए सफलतापूर्वक आवेदन जमा कर दिए हैं। बोर्ड ने कल उत्तर पुस्तिकाओं की जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था और 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इस बार का वैश्विक अभियान जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है। इसकी मेजबानी अज़रबैजान कर रहा है। प्रदेश में भी इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव पर सभा समापन के पूर्व बता दें आपको सांधिकालीन सभा के मुख्य आकर्षण। शाम 5:02 पर युवाओं का कार्यक्रम युववाणी होगा। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की होगी। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुनेगा शाम 6 बजे। रात्रि 8 बजे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष मध्यम वर्ग कल्याण, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे। चर्चा का विषय है कार्यक्रम रात 9:30 पर दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10 बजे नाटक सुनेगा अशोक वन का पेड़, लेखक जगदीश अधिकारी, प्रस्तुतकर्ता भी जगदीश अधिकारी होंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आप सुनिएगा रमेश प्रेम का विचित्र वीणा पर बजाया राग बिहाग। शाम 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण होगा। ये थी जानकारी आकाशवाणी के सांधिकालीन सभा के प्रसारण की। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और साथ ही वेव्स ओटीटी ऐप पर, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। इस समय दोपहर के 3:22 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। शाम 5 बजे मीडियम वेव पर हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच डीटीएच पर हमारा प्रसारण जारी है।

यानी 1593 किलो हर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को हैं मीडियम वेव पर अब हमारा प्रसारण आरंभ होता है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा।

पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत एक अहम साझेदार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों को घरेलू अंतर्राष्ट्रीय परिचालन में सहायता देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 5 जून से सी फूड निर्यात पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। निर्वाचन आयोग ने आज से नई दिल्ली में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया है। इसमें चुनावी प्रक्रियाओं और अभियानों में मीडिया के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों पर चर्चा की जा रही है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभिक काल अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। राज्यपाल आज हिंदी पत्रकारिता द्विशताब्दी महोत्सव पुरखों को प्रणाम पोस्टर प्रदर्शनी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इस बार का वैश्विक अभियान जलवायु कार्यवाही पर केंद्रित है और इसकी मेजबानी अजरबैजान कर रहा है। प्रदेश में भी इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में 6 जून से 5 दिवसीय महुआ महोत्सव शुरू हो रहा है। 10 जून तक चलने वाले इस महोत्सव में देशभर के आदिवासी नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक शिल्प और वंश देशज व्यंजनों की भरमार रहेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की

नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ साथियों कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। कार्यक्रम युववाणी में साथियों, एक बार फिर आपकी दोस्त उमा आप सभी का स्वागत करती है। साथियों, गर्मियों का आगाज हो चुका है। मई जून की इस भयंकर गर्मी में लोग अक्सर धूप और तेज गर्मी से बचने के लिए ठंडी चीजें खाना पीना पसंद करते हैं। खासकर इस मौसम में जब लोग ठंडा पानी पीना बेहद पसंद करते हैं, चिलचिलाती धूप से आते ही फ्रिज से बोतल निकालकर पानी पीने की आदत हम में से कई लोगों की होती है। इसे पीने से हमें तुरंत राहत जरूर मिलती है, लेकिन ठंडे पानी पीने से मिलने वाली यह राहत कुछ पल की होती है। साथियों, आपको कुछ देर राहत देने वाला यह पानी आपकी सेहत के लिए काफी हानिकारक होता है। बहुत कम लोग यह ही जानते होंगे कि बर्फ वाला या चिल्ड वाटर पानी पीने से सेहत को कई गंभीर नुकसान पहुँच सकते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फ्रिज में पानी आर्टिफिशियल तरीके से ठंडा होता है, जिससे शरीर के टेम्परेचर में अचानक बदलाव आता है। इससे ब्लड वेसल्स सिकुड़ सकती हैं। इससे न सिर्फ आपका वजन बढ़ सकता है, बल्कि आपके हार्ट को भी नुकसान पहुंचता है। साथ ही ठंडा पानी आपके पाचन तंत्र को तेजी से प्रभावित करता है। नियमित रूप से ठंडा पानी पीने से खाना पचाना मुश्किल हो जाता है और साथ ही पेट दर्द, कब्ज और पेट फूलने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इतना ही नहीं, अगर आप जरूरत से ज्यादा चिल्ड वाटर पीते हैं तो इससे ब्रेन फ्रिज की समस्या भी हो सकती है। दरअसल साथियों, ठंडा पानी रीढ़ की हड्डी की सेंसिटिव नसों को ठंडा करता है, जिससे दिमाग पर असर पड़ता है। इसकी वजह से सिर दर्द और साइनस की समस्या हो सकती है। साथ हमारे शरीर में वेगस नर्व होती हैं, जो गर्दन के जरिए हार्ट, लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। अगर आप बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो इसकी वजह से आपकी ये नसें तेजी से ठंडी होने लगती हैं और हार्ट रेट को और पल्स रेट को धीमा कर देती हैं, जिससे इमरजेंसी स्थिति पैदा हो सकती है। चिल्ड वाटर से गले में खराश और कंजेशन की संभावना बढ़ जाती है। ज्यादा ठंडा पानी पीने से खासकर खाना खाने के बाद एक्स्ट्रा बलगम बनता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जमा हो जाता है और सूजन संबंधी संक्रमण का कारण बनता है। इसलिए साथियों, चिल्ड पानी ना पिए। मिट्टी के बर्तन का पानी आयुर्वेद के अनुसार हमारी हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। इसलिए फ्रिज के पानी की अपेक्षा मिट्टी के बर्तनों के पानी का उपयोग करें। इससे आप अपनी हेल्थ के साथ साथ बिजली की खपत को भी कम कर सकते हैं। साथियों, बिजली की खपत को कैसे कम किया जा सकता है जानेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये मधुर गीत।

साथियों, इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे कि हर महीने आने वाले भारी भरकम बिजली के बिल को कम कैसे कर सकते हैं। साथियों, अगर हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें तो बिजली की खपत को बड़ी आसानी से कम कर पाएंगे और जेब पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को भी कम कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी रोजमर्रा की आदतों में बदलाव करना होगा। इसके लिए आप नेचुरल लाइट का यूज करें, अपने घर की खिड़की और दरवाजों के पर्दे खोलें और सूरज की रोशनी को अंदर आने दें। जब भी हो सके आर्टिफिशियल लाइट पर निर्भर होने के बजाय यदि आप नेचुरल लाइट का उपयोग करेंगे तो आप बिजली की खपत को कम कर सकते हैं। हल्के रंग के पर्दे खरीदें, उनसे कमरों में उजाला हो सकेगा और प्राइवेसी भी बनी रहेगी। साधारण बल्ब की जगह CFL और LED बल्ब का प्रयोग करने से काफी ऊर्जा बचाई जा सकती है। साधारण बल्ब अपने 98% कंज्यूम की गई ऊर्जा को गर्मी के माध्यम से बाहर छोड़ते हैं, जबकि CFL और LED बल्ब कई ज्यादा ऊर्जा दक्ष होते हैं और कई गुना ज्यादा समय तक चलते हैं। जरूरत ना होने पर स्विच ऑफ कर दें और यह बिजली बचाने का सबसे आसान और सबसे आम तरीका है और यह वास्तव में काम करता है। इस बात पर ध्यान देना शुरू करें कि एक निश्चित समय पर आपके घर में कितनी बत्तियां हैं। इस बात के प्रति जागरूक रहें कि आपको एक समय पर कितनी बत्तियों की आवश्यकता है। जब आप एक कमरे से बाहर जाएं, तब हर बार बत्ती बुझाने की आदत बनाएं। किसी भी ऐसी डिवाइस को अनप्लग करें जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जिन डिवाइस के प्लग सॉकेट में लगे होते हैं वे बंद होने के बावजूद भी बिजली का उपयोग करते रहते हैं। फ्रिज का दरवाजा बार बार ना खोलें। दरवाजा बार बार खोलने से फ्रिज के कंप्रेसर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे बिजली की खपत बढ़ती है। AC के टेम्परेचर को 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर नियत करें। इससे नीचे टेम्परेचर पर बिजली की खपत पर असर तेजी से पड़ता है। कूलर पंखे में इलेक्ट्रिक रेगुलेटर का इस्तेमाल करें और साथ ही ऑयलिंग, कंडेंसर, वायरिंग की सर्विसेज का ध्यान रखें। इस तरह साथियों, अपनी छोटी छोटी आदतों से आप बिजली के बिल को काफी हद तक कम कर पाएंगे।

साथियों, नौ तपा में तापमान 45 डिग्री से 47 डिग्री के आसपास तक पहुंच जाता है। इसका असर हमारे साथ साथ हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर भी पड़ता है, वो भी ओवरहीट हो सकते हैं। इस दौरान मोबाइल, लैपटॉप, ईयरबड्स या पावर बैंक जल्दी गर्म होते हैं। इससे बैटरी डैमेज, लो परफॉर्मेंस या अचानक डिवाइस बंद होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। साथियों, कभी आपने सोचा है कि आखिरकार फोन में हीट बनती कैसे है? दरअसल साथियों, आपने एनर्जी का एक प्रिंसिपल पढ़ा या सुना होगा, E=mc². इसका मतलब होता है कि ऊर्जा ना बनाई जा सकती है ना ही खत्म की जा सकती है, सिर्फ बदलती रहती है। हमारा फोन भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। जब फोन यूज होता है तो बैटरी में स्टोर एनर्जी हीट में बदलती रहती है और ये ज्यादा से कम की ओर ट्रेवल करती है। नौतपा में साथियों, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ऐसे में फोन गर्म होने पर ये हीट वातावरण में ट्रांसफर नहीं हो पाती है, इसलिए फोन ज्यादा गर्म होता है और ओवरहीटिंग से गैजेट्स को कई नुकसान होते हैं, जैसे बैटरी जल्दी खराब होती है, प्रोसेसिंग स्पीड कम होती है, प्रोसेसर या मदरबोर्ड खराब हो जाता है, फोन या मोबाइल लैपटॉप बंद हो सकते हैं, बैटरी फूलने या और डिवाइस डैमेज का रिस्क बढ़ जाता है, अचानक शटडाउन से डेटा लॉस का रिस्क भी बढ़ जाता है। इतना ही नहीं साथियों, ओवरहीट से स्क्रीन पर भी असर पड़ता है, इसलिए साथियों गर्मियों में गैजेट्स को ओवरहीटिंग से बचाने के लिए कुछ आसान उपाय किए जा सकते हैं, जैसे फोन को डायरेक्ट धूप के संपर्क में ना आने दें, बैटरी को पूरी तरह डिस्चार्ज ना होने दें और फोन ओवरनाइट चार्जिंग पर तो बिल्कुल भी ना लगाएं, हमेशा ओरिजिनल चार्जर का ही यूज करें। फोन हीट होने पर उसका कवर हटा दें। लैपटॉप को बेड तकिए पर रखकर तो बिल्कुल ना चलाएं। अनयूज्ड एप्स को बंद कर दें और साथियों सॉफ्टवेयर अपडेट रखें। साथियों गर्मियों में गैजेट्स को ओवरहीटिंग से बचाकर आप उनकी सेल्फ लाइफ को काफी हद तक बढ़ा

आशा करती हूँ साथियों कि आपको हमारा आज का ये युवाणी कार्यक्रम पसंद आया होगा। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य विषयों के साथ। तब तक सुनते रहिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। आप युवाणी कार्यक्रम साथियों मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। साथियों अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। अब अपनी दोस्त उमा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। योगदान हमारे ग्वालियर केंद्र का था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
1: डीडी डायरेक्ट
0: निशुल्क न केबल का झंझट न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है
0: स्पष्ट आवाज सुंदर तस्वीर
1: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल
0: आज ही करें कनेक्ट
1: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट
2: कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 MHz पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसानवाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

0: आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से। खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहे उस वक्त।
1: स्वागत है आकाशवाणी मध्य प्रदेश में। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। पलक मुछाल और साथियों की आवाजों में इरशाद कामिल का लिखा, हिमेश रेशमिया का संगीतबद्ध किया गीत सुनते हैं। फिल्म है प्रेम रतन धन।

तुमको मेरी कसम। लीजिए इस फिल्म का गीत सुनिए नीति मोहन और पपून की आवाज़ों में। श्वेता बोथरा के लिखे गीत को संगीत दिया है प्रतीक वाले।

श्रोताओं, अगला गीत लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में है। आनंद बख्शी का लिखा हुआ है, राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया। फिल्म है मिस्टर

0: कार्यक्रम के आखिर में सुनिए धूमधाम फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और जोनिता गांधी ने।
1: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
2: डीडी डायरेक्ट
1: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
2: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
1: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
2: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
1: आज ही करें कनेक्ट
2: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।
3: कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 MHz पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से। खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहे उस वक्त।

0: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, समय है अंतराल का।
1: कवि हेमंत देवलेकर,
2: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है, हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाज़ें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाएं। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और देश के हर गांव और हर व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के एक लेख को साझा किया, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए आर्थिक अवसरों की चर्चा है। श्री मोदी ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली एक खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की नई कहानी लिख रही है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज भोपाल में हिंदी पत्रकारिता द्विशताब्दी महोत्सव के तहत आयोजित पोस्टर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने अपनी शुरुआत से ही समाचार प्रसार से आगे बढ़कर राष्ट्रीय चेतना जगाने और स्वाधीनता आंदोलन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक एक विशेष जन कल्याण अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी तैयारियों की समीक्षा की। अभियान की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृहद पौधरोपण से होगी। और राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दीपक सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पंचायत और नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ये काम तय समय सीमा में पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।
1: प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
2: ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
1: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
3: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ. जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथेन्द्र बोस को सौंपा गया है। इसमें ऋतव्रत बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की भारतीय जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide ATF price stabilization support to Indian Airlines for their domestic and international operations. The support will be provided to companies to facilitate stable ATF pricing for airlines during the ongoing period of exceptional fuel price volatility arising from the West Asia crisis. Briefing media in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said this is a self-sustaining revolving fund which will help to stabilize ATF prices for scheduled Indian carriers.
2: ATF price stabilization fund mein
5: a self sustaining revolving fund has been established under the ATF price stabilization fund. Airline carriers who want to participate in this will be provided aviation turbine fuel at a stable price during the current crisis. This is expected to significantly reduce the adverse impact on the aviation sector, where over 70 lakh jobs had started to be affected by the ongoing stress in the industry.
2: Because of the stress in the sector, wo isse significantly mitigate hoga.
4: ATF price stabilization support will be in force for a period of 36 months. International ATF prices have increased 2.5 times from 60.5 rupees per litre in March to 142 rupees per litre in May this year due to the crisis in West Asia. The Union Cabinet has also approved a scheme for support to the National Capital Region Planning Board for replacement of old trucks and buses in the Delhi NCR area with a financial outlay of 9,585 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the construction of a new coastal highway from Rameshwar to Paradip in Odisha, spanning a total length of over 163 kilometres. He said the total cost of the project will be over 8,300 crore rupees. In Karnataka, senior Congress leader D.K. Shivakumar was sworn in as the 25th Chief Minister of the state today. Governor Thawar Chand Gehlot administered the oath of office. Dr. G. Parmeshwar, who held the home portfolio in the Siddaramaiah cabinet, was sworn in as Deputy Chief Minister. 12 legislators also took oath as cabinet ministers. Several senior Congress leaders, including Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi and Congress President Mallikarjun Kharge, Chief Ministers of Telangana, Kerala and Himachal Pradesh, attended the ceremony. Prime Minister Narendra Modi has congratulated D.K. Shivakumar on taking oath as Chief Minister. In a social media post, Mr. Modi conveyed best wishes to him for his tenure. In West Bengal, political developments have intensified amid indications of a split in the Trinamool Congress. Expelled TMC MLA Ritubrata Banerjee has staked claim to the post of Leader of Opposition in the State Assembly, claiming the support of 58 legislators. According to Assembly sources, a letter signed by 58 MLAs was submitted to Speaker Ratindra Bose, seeking recognition of Banerjee's faction as the real Trinamool Congress. The group has nominated Akhruz Zaman, MLA from Raghunath Ganj in Murshidabad, as Chief Whip. Meanwhile, the Trinamool Congress has announced Shobhandeep Chattopadhyay as Leader of the House, with Ashima Patra and Noyana Bandopadhyay as Deputy Leaders and Firhad Hakim as the Chief Whip. In a massive fire at a hotel in Malviya Nagar in Delhi, 21 people lost their lives while 40 were rescued this morning. DCP of South Delhi, Anant Mittal, said the fire has been successfully extinguished with the assistance of 8 fire tenders. Rescue and search operations are underway. The cause of the fire is yet to be ascertained. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief at the loss of lives in the fire incident. Benchmark domestic equity indices ended with moderate losses today. The BSE Sensex dropped 304 points to close at 74,346. The NSE Nifty slipped 78 points to settle at 23,406. The broader market at the National Stock Exchange also ended in the negative zone. In badminton, India's Ayush Shetty entered the second round of the Indonesia Open Super 1000 after defeating China's Wang Hongyang in a comeback victory, winning 8-21, 22-20, 21-15. India also registered a notable win in mixed doubles with Rohan Kapoor and Ritwik Agarde, defeating Chinese Taipei's Yang Po Suan and Hu Ling Fang. And with that, we end this news.

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है 6:11:17। आप हैं सदाबहार गीत में अपनी दोस्त रूपा धवन के साथ। तो चलिए सुनते हैं आज का पहला सदाबहार गीत, जिसे हमने शामिल किया है फिल्म तुमसा नहीं देखा से, स्वर मोहम्मद रफी साहब का।

तुमसा नहीं देखा फिल्म से अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में और आशा जी की आवाज़ में ये बेहतरीन सा नगमा। अगला गीत हम शामिल कर रहे हैं तीन देवियां फिल्म से, आशा जी के साथ किशोर साहब को सुनेंगे आप आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: मानो कहा अब तुम हो जवां मेरी जान लड़कपन छोड़ो।
1: और अब सदाबहार से रूपा धवन को दीजिए अनुमति, आप कुछ ही पलों में सुनेंगे संस्कृत में समाचार। नमस्कार।

0: व्यय सहायतां प्रदातुं प्रशासनं निर्णयं कृतवत्। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव अवदत् यत् एतेन विमानन क्षेत्र संबद्धाः प्रायः 77 लक्ष आजीविकाः सुरक्षिताः भविष्यन्ति। एषा सहायता योजना 36 मास पर्यन्तं प्रवर्तिष्यते। मन्त्रिमण्डलेन दिल्ली निकटवर्ति क्षेत्रे वायु प्रदूषण नियन्त्रणार्थम् अपि एकस्याः बृहत्याः योजनायाः अनुमोदनं कृतम्। आर्थिक सम्बद्धया मन्त्रिमण्डलीय समित्या ओडिशा राज्ये रामेश्वरात् पारादीप पर्यन्तं 360 अधिक 100 किलोमीटर परिमितस्य नूतन तटीय राजमार्ग निर्माणाय अनुमतिः प्रदत्ता। एतद् अतिरिक्तं समित्या बिहार राज्ये राष्ट्रिय राजमार्गयोः 31 तथा 31 अधिक 200 च इत्येतयोः खगड़िया पूर्णियाखण्डस्य चतुर्पथ परियोजना अपि अनुमोदिता। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य राष्ट्रिय आदिवासी सम्मेलनस्य उद्घाटनं कृतवती। नवदिल्ल्याम् आयोजितायाम् एकीकृत जनजातीय विकास समवायानां तथा एकीकृत जनजातीय विकासायोगस्य च विस्तार विषयिकायां समायोजितायां सभायां राष्ट्रपतिः अवदत् यत् देशव्यापिनः जनजातीय समाजस्य संस्कृतिः अत्यन्ता समृद्धा अस्ति, अतः जनजातीय समुदायस्य उन्नत्यर्थाः विशेष प्रयत्नाः करणीयाः। तया उक्तं यत् विकास कार्याणि अन्तिम गृहं यावत् अन्तिम ग्रामं यावत् च अवश्यं प्राप्नुयुः। राष्ट्रपतिः चिन्ताम् अपि व्यक्तीकृतवती यत् अद्यापि केचन जनजातीयवर्गाः शासनस्य विविधाभिः योजनाभिः अनभिज्ञाः सन्ति।
1: पीएम जनमन योजना के तहत जनजातीय समुदाय में भी सबसे पिछड़े समूहों के 20,000 से अधिक गांव तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाने का लक्ष्य है। हम सब जानते हैं 75 जो ग्रुप्स वो है पीबीटीजी सबसे पिछड़े अभी भी कोई पेड़ के मंच के पे रहते हैं, उनके कोई जमीन नहीं, जमीन था लेकिन रिकॉर्डेड नहीं, इसलिए उनको जमीन देकर घर बनाना, उनके हर चीज के लिए अधिकारी लोगों को जितने कर्मचारी लोगों का दायित्व है।
0: राष्ट्रपतिः सर्वासां संस्थानां हितधारकान् आहूतवती यत् जनजातीय युवभ्यः सम्मानजनक जीविकायाः तथा प्रत्येकं जनजातीय बालकाय विद्यालय शिक्षायाः सुनिश्चितीकरणं क्रियताम्।
1: ये दूरदराज के लोग जो जंगलों में रहते हैं उन तक एक रोड मैप बनाना चाहिए। आप कौन सी गांव को कवर किया, कौन सी पॉपुलेशन के थे, ट्राइबल के कितने लोग हैं, कहां तक हम पहुंच पाए कहां तक नहीं पाए। पढ़ा लिखा होते हुए भी बहुत लोग बहुत चीजें जानते हैं लेकिन वो खुलते नहीं, लेकिन उनको खुलना पड़ेगा, शामिल होना पड़ेगा देश के विकास के लिए।

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
1: डीडी डायरेक्ट।
0: निशुल्क न केबल का झंझट न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
0: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
1: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
0: आज ही करें कनेक्ट
1: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।
2: कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

0: आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से। खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहे उस वक्त।
1: सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
1: डीडी डायरेक्ट
0: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
0: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
1: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
0: आज ही करें कनेक्ट
1: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।
2: कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत।
3: प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
4: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
3: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के तहत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
5: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
3: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी अपनी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दे दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपये से अधिक होगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 28 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा भी की है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो गया है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की भारतीय जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कार्यक्रम विवरण का समय है, तो आइए पहले आपको बता दें आज के शेष

आज रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष मध्यम वर्ग कल्याण।

चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम 9:30 पर दिल्ली से रिले किया जाएगा। 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे नाटक अशोक वन का पेड़। इस नाटक के लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं जगदीश अधिकारी। राग रजनी कार्यक्रम में आज रात 10:30 पर सुनिए रमेश प्रेम का विचित्र वीणा वादन। राग होगा बिहाग।

आज शाम 7:21 पर भोपाल से प्रसारित ग्राम सभा में आकर्षण है क्रम लोक रंग। ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। आकाशवाणी भोपाल से सुबह के नियमित कार्यक्रमों के अलावा 7:20 पर हम आपको सुनवाएंगे सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग प्रसारित किया जाएगा 8:30 पर। सुगम संगीत में 9:15 पर सुनेंगे राजीव शर्मा के गाए कुछ गीत और भजन। रणधीर पहलवान, सादत हसन मंटो का लिखा ये नाटक हम आपको सुनवाएंगे 9:30 पर। इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता होंगे राकेश ढोंडियाल। जिले की चिट्ठी का समय रहेगा 10:00। 10:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर। ये थे आकाशवाणी भोपाल से कल सुबह प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। 11:00 से आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण किया जाएगा। इसमें 11:00 सुनिए फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आपकी फरमाइश का समय है 12:00। संग्रहालय से क्रम के अंतर्गत 12:30 पर सुनेंगे सिसकियां धारावाहिक की 9वीं कड़ी। जबलपुर केंद्र की प्रस्तुतियों में सुनिए दिन में 1:00 महिला कार्यक्रम। 1:30 पर लोक संगीत। 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम। ये सभी प्रस्तुतियां जबलपुर केंद्र की होंगी। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 6:00। 8:00 आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष स्वास्थ्य सेवा। प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम कल रात्रि 10:00 दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। कल शाम 7:21 पर भोपाल से आप सुनेंगे ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम। ये थे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। इसी के साथ ये कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा,

0: हाँ, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। केंद्र सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 347 बी के चौड़ीकरण के लिए 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी। प्रदेश में 5 से 12 जून तक विशेष जनकल्याण अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने आज इसकी तैयारियों की समीक्षा की और राज्यपाल वंगोभाई पटेल ने भोपाल में हिंदी पत्रकारिता द्वि शताब्दी महोत्सव के तहत पोस्टर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि शामिलाने से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत एक अहम साझेदार है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत दोनों देशों के विशेष संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नेपाल की नई सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमान ईंधन यानी ATF की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता को मंजूरी दी है। पश्चिम एशिया संकट के कारण ATF की कीमतें मार्च में 60 रुपए से बढ़कर मई में 182 रुपए प्रति लीटर हो गई थी। ये सहायता अगले 36 महीनों तक जारी रहेगी। इससे विमानन क्षेत्र के 77 लाख रोजगार सुरक्षित रहेंगे। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी ने बताया,
1: ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरम्भ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: इसके अलावा मंत्रिमंडल ने दिल्ली NCR में पुराने 2 लाख ट्रक और 16,000 बसों को BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने की योजना को भी हरी झंडी दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 347 बी के उन्नयन और चौड़ीकरण को मंजूरी दे दी है। 233 किलोमीटर से अधिक लंबी इस परियोजना पर 4,415 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे बैतूल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी जिलों में सड़क की स्थिति सुधरेगी, यातायात जाम की समस्या से राहत मिलेगी। ये मार्ग इंदौर और नागपुर हवाई अड्डों के साथ साथ कई औद्योगिक और जनजातीय केंद्रों को भी बेहतर संपर्क देगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और देश के हर गांव और हर व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के एक लेख को साझा किया, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए आर्थिक अवसरों की चर्चा की है। श्री मोदी ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाले खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की नई कहानी लिख रही है। प्रधानमंत्री ने इसे वोकल टू लोकल की दिशा में देश की वैश्विक छलांग बताया। दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई है। 8 दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया और 40 से अधिक लोगों को बचाकर पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक एक विशेष जनकल्याण अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी समीक्षा की। अभियान की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृहद वृक्षारोपण से होगी। इसके बाद 8 जून से स्वच्छता अभियान, 12 जून से 18 जून तक जन कल्याण शिविर और 19 से 20 जून को प्राकृतिक खेती पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। ये पूरा अभियान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून को संपन्न होगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज भोपाल में हिंदी पत्रकारिता द्विशताब्दी महोत्सव के तहत आयोजित पोस्टर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने अपनी शुरुआत से ही समाचार प्रसार से आगे बढ़कर राष्ट्रीय चेतना जगाने, स्वाधीनता आंदोलन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने आज कहा कि इस दौर में हिंदी पत्रकारिता को वीडियो, पॉडकास्ट और मोबाइल मंचों के जरिए युवा पीढ़ी से जोड़ना जरूरी है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दीपक सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचायत और नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ये काम तय समय सीमा में पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। सचिव ने अंतिम मतदाता सूची समय पर जिले की वेबसाइट पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने के मौके पर शिवपुरी जिले की मैहर शक्ति और स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष ज्योति जाटव ने अपनी प्रेरक कहानी साझा की है। लखपति दीदी योजना से जुड़कर ज्योति ने स्वरोजगार की राह पकड़ी और आज वे आत्मनिर्भर जीवन जी रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा,
3: हमारे गाँव में समूह चलाती हूँ, मेरे समूह है 11 समूह है, उनकी बैठक करती हूँ और उन मतलब जो भी बैंक सखी का काम करती हूँ और बुक कीपर का भी करती हूँ, तो उसमें मुझे 5,000 रुपये महीने के मिल जाते हैं। और घर पे मेरी साड़ियों की दुकान भी है, तो साड़ियों की दुकान भी चलाती हूँ संध्या सवेरे के टाइम में। तो आज मेरी इनकम 1,44,000 से अधिक है। मोदी जी के लिए मैं धन्यवाद बोलूँगा।
0: भोपाल के रविन्द्र भवन में कल शाम मशहूर शायर और पद्मश्री प्राप्त बशीर पत्र को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के इस यादे बशीर बद्र कार्यक्रम में कई बड़े शायर, गायक और फिल्म निर्माता बशीर बद्र की विरासत पर अपने विचार रखेंगे। इसके बाद अखिल भारतीय मुशायरा शुरू होगा, जिसमें देश भर के नामचीन शायर अपना कलाम पेश करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले के इटारसी में सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में मंगल दिवस के तहत सुपोषण दिवस और टीकाकरण दिवस का आयोजन किया गया। देवास में आज यूसीसी के संबंध में सुझाव और विचार प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई। अनूपपुर जिले की छात्रा कुमारी आंचलपुरी ने जीडब्ल्यू एडवांस्ड 2026 में शानदार सफलता प्राप्त करते हुए एसटी पीडब्ल्यूडी श्रेणी में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। छिंदवाड़ा में अवैध खनन के मामले में उमरा नाला पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें पैदल न्यायालय पेश किया है। शिवपुरी जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर ने धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। कटनी में मलेरिया से बचाव रोकथाम संबंधी व्यापक जन जागरूकता फैलाई जा रही है। खरगोन में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत जिले में दहेज सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा। नशे को कहें ना अभियान के अंतर्गत शाजापुर में आज पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। खंडवा में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक कल 4 जून को होगी। शहडोल जिले में श्रमिकों के कल्याण के उद्देश्य से नागरिकों से श्रम प्रहरी बनकर श्रम विभाग को सहयोग देने की अपील की गई है। नीमच की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से पिछले 2 वर्षों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए प्लेसमेंट सुनिश्चित किया जाएगा। आगर मालवा पुलिस विभाग द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 6 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बैतूल कलेक्टर ने आज विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

जय जवान जय किसान चौपाल कार्यक्रम में बैठे व सुनन मारे अपे सभी भैया बहन काजे की शिल्पा बहन की राम राम। और सुनाओ भैया, आप सभी कैसे हो? उम्मीद है भैया कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और देखो भैया, देख रहे हैं कि मौसम में थोड़ी थोड़ी नरमी आई है। जितेक तेज़ धूप और लू जो है वह चल रही थी और तेज़ धूप पड़ रही थी, उसमें तनिक बारिश होने से बहुत कमी आई है। तो अपे देख रहे भैया कि दो तीन दिन पहले थोड़ी बारिश हुई थी, जिससे कि लू को असर जो है वह कम हो गया है। लेकिन भैया गर्मी तो है ही, इसलिए गर्मी से बचन के लाने भैया तो सावधानी अपे को अभी भी रखनी पड़ेगी। भैया देखो, घर से हम जब भी घर से बाहर निकलें तो एक तो भैया मुंह पे सूती कपड़ा बांध के ज़रूर निकलें, ताकि सीधे अपने को धूप जो है मुंह पर नहीं लगे। और आंखों पे चश्मा, घर संगे घर से जब भी निकलें तो खाली पेट नहीं निकलें, कुछ ना कुछ नाश्ता या कलो आदि करके ही घर से बाहर निकलें। और संगे ये बात को ध्यान रखें कि भैया हल्को और सुपाच्य खाना ही खाएं, क्योंकि भैया देखो जितेक हल्को, जैसे कि हम लौकी तुरई गिलकी आदि खाते हैं, तो वह खाना जो है वह जल्दी सुपाच्य और हजम हो जाते हैं। और इसी के संगे अगर हम ज़्यादा गरिष्ठ खाना खाते हैं, जैसे तेल चिकनाई ज़्यादा मिर्च मसाले, तो वह खाना देर से पचते हैं और गर्मी भी ज़्यादा लगाते हैं। इसलिए देखो भैया ये बात को ध्यान रखें कि हल्को और सुपाच्य भोजन ही करें। संगे भैया इस मौसम में पानी जो है खूब पिए, क्योंकि देखो पसीना जितेक ज़्यादा कर शरीर से निकलत है तो पानी की कमी भी उतेक ही शरीर में हो जाते हैं। तो पानी को हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। साथ में उसमें भैया देखो नींबू शिकंजी है, जैसे नींबू थोड़ा सा नमक थोड़े से शक्कर डाल के अगर हम पिए तो वह भी हमारे जो गर्मी के दिनों में शरीर को ठंडक देते हैं और पानी की पूर्ति करते हैं। संगे ग्लूकोज भी ले सकते हैं, है ना, तो ग्लूकोज भी जो है पानी की पूर्ति करते हैं और शरीर को ठंडक देते हैं। संगे इस समय जौन देखो भैया बाजार में हम देख रहे हैं खूब सारे मौसमी फल आ रहे हैं, जिसमें खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, संतरा, ये सभी अंगूर, ये सभी जो है अपने इस मौसम में अपने शरीर के लाने बहुत ताजगी के साथ साथ पानी की पूर्ति भी करते हैं। तो भैया ये चीज़ों को खूब इस्तेमाल करें। संगे भैया खीरा और ककड़ी जो है वह भी पानी ही की मात्रा को जो है वह अपने शरीर में बहुत ज़्यादा इसकी पूर्ति जो है करत है। तो ये सब अगर हम अपने भैया बहन ये ध्यान रखेंगे तो भैया देखो गर्मी तो है ही, लेकिन गर्मी से अपने को राहत भी ये सब चीज़ें देंगी। साथ ही गर्मी के दिनों भैया हल्के रंग जो है वह अपने आँखों को बहुत भावते हैं, तो गर्मी के दिनों में सूती कपड़ा को इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये अपने आँखों को तो भावते ही हैं, साथ ही शरीर को भी सुकून देते हैं, तो इसलिए पसीना को सोखते हैं, तो इसलिए शरीर को ठंडक भी देते हैं, इसलिए हल्के और सूती कपड़ा ही पहने। तो अगर हम इन सब छोटी छोटी बातों को भैया हम ध्यान रखेंगे तो गर्मी के दिनों में हमें जो ज़्यादा परेशानी को सामना जो है वह नहीं करने पड़े। साथ ही घर के बुज़ुर्ग हैं, घर के छोटे बच्चा हैं, इनको भी गर्मी से बचाएं। और साथ ही साथ घर अपने जो पालतू पशु हैं, जैसे भेड़, बकरी, गैया, भैंसिया, इन सबको भी अपने को ध्यान रखने हैं। तो को भैया ये सब जो है इन गर्मी तो इन्हें भी सताऊते और मनुष्यों से ज़्यादा सताऊते, तो हमें इनको भी खान पान के साथ साथ इनके जो सीधे धूप में

उनको नहीं बांधें, खुले में नहीं बांधें, हवादार स्थान पर बांधें, और हो सके तो उनके पास भी थोड़ा पंखा या कूलर आदि हम रख दें। तो भैया देखो, हमारे जो ये पालतू पशु होते हैं, जो हम इनसे लाभ लेते हैं, चाहे वह खेती किसानी हो, चाहे वह दुधारू पशु हों, अगर हम दूध ले रहे हैं, तो उनको ध्यान भी हमें और आपको ही रखने हैं। तो ये बात को ध्यान रखें कि भैया उनको खान पान साफ और स्वच्छ हो, पानी उन्हें ताजो और ठंडो पानी पिलाएं, बासी खाना नहीं दें, बासी खाना अगर हो तो उसे हटा करके ही ताजो खाना दें। तो इस तरीके से हमारा पशु भी स्वस्थ रहेगा, और जब पशु स्वस्थ रहेगा तो हमारी खेती किसानी को काम भी आसानी से हो जाएगा। तो भैया ये तो भाई बात अपे गर्मी से बचन की, और अब इस समय हम बात करें भैया अनाज भंडारण की, क्योंकि भैया देखो सभी भैया के जो है अनाज जो है वह बाजार में बहुत से भैया बेच भी चुके हैं, कछु भैया बेचन की तैयारी पर हैं, तो भैया और कुछ भैया जो होते हैं वे भैया अनाज को भंडारण करते हैं, आधो अनाज बेच देते हैं कुछ भैया, और कुछ अनाज जो है अपने साल भर के लाने घर में भंडारण करके भी रखते हैं। तो एक तो भैया ये बात कि देखो घर से बाहर जब हम अनाज को बेचने जाएं तो ये बात को ध्यान रखें कि किसी भी बिचौलियों के चक्कर में नहीं पड़ें, जो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य तय करोगा वो है उस पर ही बेचें। इसके लिए भैया देखो ई नेम पोर्टल है, इस पे जा करके हम पूरी जानकारी ले सकते हैं कि कहाँ पे हमें जो है अपनी फसल को दाम सही मिल रहा है, कहाँ पे बेचें, कैसे बेचें, कहाँ पे किस तरीके से जाएं, यानी किसी से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम तनिक सी अगर हम जागरूक होंगे तो इस ई नेम पोर्टल पर जा करके हम पूरी जानकारी ले सकते हैं, तो इस तरीके से अपनी फसल को हम सही दाम पर बेचें। क्योंकि भैया देखो जो अपने साल भर मेहनत कर रहे थे उसको पूरा लाभ जो है इस फसल को बेचकर अगर हमें नहीं मिले थे तो इससे हमें जो परेशानी को सामने आगे करना पड़ा थे, इससे हमें बचन के लाने हमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो भाई बात भैया देखो बेचें की, और जौन भैया देखो अनाज को भंडारण करते हैं वे भी ये बात को ध्यान रखें कि एक तो पूरी तरीके से अनाज जो है वह सूख जाए। इसके लिए भैया एक दाना हम अपने मुंह में रख के देखें और दांत के नीचे रख के देखें, तो अगर कट से आवाज़ आउट है तो समझें कि गेहूं को दाना जो है वह सही तरीका से सूख हुआ है। यदि वह नहीं सूखो है, उसमें सीड़न है, तो उसे अच्छी तरीका से धूप तेज़ धूप में सुखा लें, तभी हम अनाज को भंडारण करें। कैसे भैया यदि ज़रा सी भी अगर हमारे अनाज में नमी रह जाएगी तो उसमें कीड़ा लग सकते हैं, तो इसलिए भैया देखो ये बात को ध्यान रखें कि अनाज पूरी तरीके से सुखा लें। संगे जिस बर्तन में, जिस कुटिया में, ड्रम में, बोरन में अगर अपने को अनाज भरने हैं, या तो वह नए हो, बोरा अगर हम बोरे में भर रहे हैं, यदि वे नहीं हैं तो उनको कीटनाशक घोल में डाल के अच्छी तरीके से कीटनाशक घोल में डालकर उनको अच्छी तरीके धोकर और धूप में सुखाकर तभी उसमें अनाज को भंडारण करें। जई तरीके से हम ड्रम है, कुटिया है, उसको भी कीटनाशक घोल से पहले धो लें, अच्छी तरीके से साफ कर लें, उसमें एक भी दाना पुरानो दाना नहीं रहना चाहिए। यदि एक भी दाना अगर रह जाएगा भैया तो हमारे नए अनाज के लिए खराब करण में वह एक दाना पूरी भूमिका निभाएगा। तो ये बात को ध्यान रखें कि उसमें कोई एक दाना भी नहीं रहे, और अच्छी तरीके से धूप में सुखा कर तभी उसमें भंडारण करें। साथ ही भैया जब भी भंडारण करें तो सबसे पहले नीम की पत्ती सुखा लें, और तले में अच्छी तरीके से नीम की पत्ती बिछा करके ही उसके ऊपर अनाज डालें, तभी हमारा, उसके अलावा अगर कोई कीटनाशक दवाई भी हम अगर उसमें रखते हैं तभी हमारा अनाज जो है पूरे साल भर तक सुरक्षित रहते हैं। और यदि बोरों में अनाज को भंडारण कर रहे हैं भैया, तो बोरों को एक तो साफ की बात बताइए आपको, दूसरे सीड़न वाली स्थान पर नहीं रखें,
जहाँ पर सीड़न हो वहाँ पर अनाज को भंडारण बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि एक तो सीड़न और ऊपर से अनाज, उसमें जल्दी जो है कीड़ा लगन की संभावना जो है वह बनी रहते हैं। तो ये बात को ध्यान रखें। साथ ही भैया सीधे ज़मीन के संपर्क में नहीं रखें, तनिक ऊँचे पटला पे या ईंटों को थोड़ी ऊंचाई दे करके ही जो है अनाज को भंडारण करें, और दीवालों से सटा कर नहीं रखें, दीवालों से भी थोड़ी दूरी बना करके रखें, क्योंकि दीवारों से भी सीड़न बारिश के दिनों में आ जाते हैं तो उससे भी हमारा अनाज जो है वह खराब हो जाते हैं कि खराब हो सकते हैं। तो ये बात को ध्यान रखें भैया। संगे भैया देखो, जब भी हम अनाज को भंडारण करें तो ये बात को ध्यान रखें, जिस में अनाज भंडारण कर रहे हैं उसको ऊपर से मुंह अच्छी तरीक़े से बंद होना चाहिए, उस ताकि उसमें हवा नमी आदि बिल्कुल नहीं जाए। क्योंकि भैया अभी आने वाले समय में जब बारिश का मौसम होगा तो बहुत सारी नमी होगी, तो उसमें नमी अगर जाएगी तो हमारा अनाज जो है एक तो सीड़ भी जाएगा और दूसरी उसमें कीड़ा लगन की संभावना बनी रहेगी। तो ये बात को ध्यान रखें कि उसमें ऊपर से अच्छी तरीके से हम पैक करके ही उसमें रखें। और यदि हमें कुछ अनाज अपने घर के लिए रोजीने के लिए रखने हैं तो वह अलग रखें। ये नहीं है कि भैया हमने अनाज ड्रम में भर दो, कुटिया में भर दो, हम उसे बार बार खोल करके उसमें से निकालत रहें। तो भैया अगर ऐसा करेंगे तो अनाज में नमी जाएगी, हवा जाएगी और अनाज खराब हो सकते हैं। तो ये बात को ध्यान रखें कि अनाज जो है अपन रोजीना के लाएँ, अनाज जो है वह अलग रखें, भंडारण को अनाज अलग रखें। तो इस तरीके से हमारा अनाज जो है वह सुरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि भैया देखो, अनाज जो है यदि घर में भरो रहते तो ऐसा लगाते है पूरा धन्य धान्य भर हुआ है ना, बहुत अनाज वो रहते। और यही अनाज जब हमारी मेहनत को फल जो है वह खराब होते तो हमें बड़े कष्ट होते हैं। तो भैया इसके लिए हमें छोटी छोटी बातों को रख के, हम पर सावधानी रख के यदि हम चलेंगे तो हमारा अनाज जो है वह पूरे साल भर तक सुरक्षित रहेगा और उसमें किसी तरीके को कीट नहीं लगेगा। तो भैया इस बात के संगे हम देते हैं इस चर्चा को यहीं पर विराम। काय से भैया हम चाह रहे कि आपके लाने कछु मनोरंजन कर दें, तो चलो विष्णु पटेरिया और साथियों को गाओ ये प्यारो सो लोकगीत सुनते हैं।

0: भैया अभी अपन सुन रहे थे विष्णु पटेरिया और साथियों को गाओ ये लोकगीत, और अब हम आपके लाने एक सुनवान जा रहे हैं भेंट वार्ता, जिसको विषय है ग्रीष्म ऋतु में पौधों को कीट रोगों से कैसे बचाएं। और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्ता, और इनसे बातचीत कर रहे हैं अपने भैया डॉक्टर समद अग्रवाल। तो चलो सुन लेते हैं पुनः प्रसारित ये भेंट वार्ता।
1: श्रोताओं नमस्कार, किसानवाणी कार्यक्रम में आज हम आपके लिए जिस विषय पर बातचीत कर रहे हैं उस बातचीत का विषय है ग्रीष्म ऋतु में पौधों को कीट रोगों से कैसे बचाएं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मौसम भी यही है, और इस मौसम में जो हमारी जायद की फसलें हैं या कद्दू पर की फसलें हैं, इसमें कीट और कई तरह के दिक्कतें आती हैं, रोग भी आते हैं, इनसे कैसे बचाएं, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ श्री जगदीश चंद्र गुप्ता जी हैं। आप वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र शिवपुरी में, और पौध संरक्षण पर इनका विशेषज्ञता भी है। तो गुप्ता जी, सभी सुनने वालों के मध्य में स्वागत है, नमस्कार।
2: नमस्कार
1: सर। जैसा कि विषय है आप हमारे किसान भाइयों के साथ, आपने भी सुना कि ग्रीष्म ऋतु में पौधों को कीट रोगों से कैसे बचाए, तो ये जो मौसम चल रहा है जिसमें टेम्परेचर बढ़ोतरी की ओर ही है, तो ऐसे में दो प्रश्न उभर कर आते हैं कि इस समय कौन कौन से पौधे हैं जो हमारे खेत में हो रहे हैं, चाहे वो सब्जी के मोड में हो, चाहे वो फूल के रूप में हो या कृषि के रूप में हो, तो वो कौन कौन से पौधे होंगे, इन पौधों का पहले से थोड़ा सा बताएं, या जिसे कद्दू वर्गीय सब्जियां भी कह सकते हैं।
2: बहुत अच्छी आपने बात कही। किसान भाई, हमारे ग्रीष्मकालीन फसलों में मुख्य रूप से मूंग, उड़द, कद्दू वर्गीय फसलों में जैसे सब्जियां होती हैं, खासतौर से इसमें कद्दू है।

0: लौकी है, तोरई है, करेला है, तरबूजा है, खरबूजा है, चिचिंडा है, ककड़ी है, मिर्ची है, टमाटर है कुछ। ये फसलें हमारे किसान भाई सब्जी उगाते हैं। तो तापमान थोड़ा अधिक रहता है, लेकिन ये जो फसलें हैं इस अधिक तापमान को सहन करती हैं, इनमें सहन करने की क्षमता
1: इनकी
0: होती है।
1: प्रकृति इस तरह की है कि ज्यादा टेम्परेचर सहन कर जाती है।
0: हाँ
1: अब मौसम का भी बदलाव आ रहा है, मतलब मौसम अधिक है, पानी की कमी भी है साथ ही साथ हमारे आसपास। तो कौन कौन से कीट होंगे और उन कीट या रोग, कुछ भी बोल सकते हैं, रोग माने बीमारी होगी और कीट माने कोई तिलंगा हो सकता है, तिलचट्टा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई बाहरी चीज हो गई, और रोग माने अंदर की चीज हो गई। तो दोनों चीजों को पहचाने कैसे हमारा किसान अलग अलग फसल के लिए, और फिर उसका प्राकृतिक या दवा के मोड में किस तरह से नियंत्रण करें जिससे उसकी फसल बहुत अच्छी हो।
0: ठीक बात है, हमारे किसान भाई बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, खाद बीज लगाते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, उसके बावजूद भी किसानों की जो फसलें हैं, सब्जियां हैं, उनमें कीट व्याधियों का प्रकोप हो जाता है। इसका प्रबंधन करना अति आवश्यक है अच्छा उत्पादन लेने के लिए। प्रबंधन, अगर हम बात करते हैं प्रबंधन की, तो एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन इसमें मुख्य रोल अदा करता है। एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन में सारी चीजें आ जाती हैं कीट और व्याधियों को नियंत्रण करने की। तो ये एक बहुत प्राचीन भी है और किसान भाइयों में बहुत पॉपुलर भी है, बहुत फेमस है, बहुत ये इसको अपनाते हैं किसान भाई, एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन को। एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन को करने के लिए सबसे पहले ग्रीष्मकालीन जुताई करें,
1: गहरी वाली,
0: गहरी जुताई करें। गहरी जुताई करने से क्या होता है, उसमें जो कीट व्याधियों के अंडाणु कीटाणु पड़े रहते हैं वो गर्मी में तेज धूप में वो खत्म हो जाते हैं, तो उनकी खरीफ की फसल बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन अभी हमारी ग्रीष्मकालीन फसलें चल रही हैं,
1: जी
0: तो इनमें फसलें लगी हुई हैं।
1: तो कुछ जुताई तो हो ही नहीं सकती।
0: हाँ, तो ये जुताई, वो खाली खेत न छोड़ें, जुताई करके ही खेत को छोड़ें। बाकी जहाँ फसलें लगी हैं, जहाँ पानी की व्यवस्था है, वहीं पर सब्जियां या वहीं पर फूलों की खेती या वहीं पर मूंग उड़द की खेती किसान भाई कर रहे हैं, तो वो अपने पानी के हिसाब से व्यवस्था करते हैं, कितना पानी है और कितनी जगह में हमको ये चीजें लगानी है। अब बात आती है कि कीट एवं रोगों का नियंत्रण कैसे करें, कौन कौन से कीट आते हैं, कौन, जैसे कि कद्दू वर्गीय फसलें हैं, कद्दू वर्गीय फसलों में खास तौर से एक लाल कीड़ा आता है और एक थ्रिप्स आती है, जो एक उड़ने वाला कीड़ा होता है, थ्रिप्स,
1: पतंगा
0: और
1: जैसा,
0: पतंगा जैसा छोटा, और एक सफेद मक्खी होती है। ये कीट बहुत नुकसान करते हैं।
1: तो इनका निपटारा या निस्तारण कैसे
0: हाँ,
1: किया जाएगा?
0: तो इनका जो लाल कीड़ा है, लाल कीड़े के लिए किसान भाई डाइक्लोरोप्स एक दवाई है, डाइक्लोरोप्स 76% में ही आती है। ये दवा 250 मिलीलीटर दवा 200 लीटर पानी में मिला करके प्रति एकड़ के हिसाब से 2 बार इसका छिड़काव करेंगे तो ये लाल कीड़े का नियंत्रण हो जाता है। फिर इसमें एक और चीज कर सकते हैं हमारे किसान भाई कि एक जहरीला रसायन बना के सकोरों में रख सकते हैं जगह जगह। उसको बनाने के लिए इमीडाक्लोरपिड है या क्लोरपाइरीफास दवा है, ये उसमें मिला लें, 4 लीटर पानी ले लें और थोड़ी सी राख, आधा कप राख करीब घोल के उसमें अच्छी तरह से मिला करके और सकोरों में जगह जगह रख दें, तो लाल कीड़ा जो है वहां आएगा, बैठेगा, तो उसके कारण वो उसमें चिपक, थोड़ा उसमें गुड़ भी मिला दें आधा किलो अच्छा घोल करके। ये चीज करके किसान भाई करेंगे तो लाल कीड़े का नियंत्रण उनका हो जाता है। और एक दवा और है, अगर किसान भाई स्प्रे नहीं कर पा रहे हैं, तो छिड़काव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए वो आपके कार्बोफ्यूरॉन दवा 4 से 5 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से, यानी 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भुरकाव कर देंगे तो भी इस लाल कीड़े का नियंत्रण हो जाता है।
1: ये तो आपने इसका बताया, कुछ प्राकृतिक इलाज भी होगा?
0: हाँ,
1: नेचुरल,
0: हाँ, नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती और जैविक खेती
1: और प्राकृतिक ही इलाज।
0: तो इसमें 2 चीजें हैं, जैसे आपने देखा होगा कि रासायनिक कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग होता चला आ रहा है, पेस्टिसाइड का, जिसके कारण हम तरह तरह की बीमारी, हमारे खेत बीमार हो गए, हमारी मिट्टी बीमार हो गई, हमारे जानवर बीमार हो गए, उनसे जो हमें पदार्थ मिलते हैं वो सब दूषित है, उनको खाने से हमें बीमारियां हो रही है। तो वैज्ञानिकों की खोज के कारण एक प्राकृतिक खेती यानी नेचुरल फार्मिंग का इजाद हुआ है। इसमें जीवामृत, घन जीवामृत, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, नीम अस्त्र, इन दवाओं का खुद अपने घर पर बना करके, एक इसमें देसी गाय की जरूरत पड़ती है। अगर देसी गाय है, गौमूत्र उपलब्ध है, गौ का जो है गोबर उपलब्ध है, तो इन चीजों को आसानी से घर पर बना सकते हैं और इसमें लागत भी बहुत कम आती है।
1: हमारा किसान जानता है इन सारी चीजों को?
0: हाँ, हमारे किसान जानते भी हैं और हम कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण भी देते हैं और जहाँ जहाँ गाँव में हम जाते हैं वहाँ

0: हम ये जो नेचुरल फार्मिंग है, प्राकृतिक खेती है, इसके बारे में हम किसानों को टेंड करते रहते हैं।
1: इन सारे जो आपके घोल हैं,
0: हाँ
1: तो इसका प्रयोग किस मात्रा में करना है?
0: हाँ ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि जैसे नीम अस्त्र है, नीम अस्त्र से हम बहुत सारे कीटों का, पतंगों का, सफेद मक्खी का, इल्लियों का नियंत्रण कर सकते हैं। नीम अस्त्र बनाने की कोई खास विधि नहीं है। 15-20 लीटर गौमूत्र ले लें और 5 किलो नीम के पत्ते ले लें, इनको अच्छी तरह से उबाल करके 1 घंटे और 48 घंटे ठंडा करने रख दें, फिर ये घोल तैयार है। छान करके हमको 3 लीटर से 4 लीटर इस घोल को 100 लीटर पानी में मिलाना है।
1: तो 104 लीटर दवा बन गया।
0: हाँ, इस दवा को प्रति बीघा के हिसाब से या प्रति एकड़ के हिसाब से हम किसान भाइयों की सब्जियों में उसमें अगर छिड़कवाए या वो छिड़के इसको बना करके, तो ये सारे कीड़े नियंत्रित हो जाते हैं।
1: आपने नीम की पत्ती का जिक्र किया, तो नीम की पत्ती सूखी के हरी?
0: हरी पत्ती ले सकते हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ।
1: और अग्निअस्त्र?
0: अग्निअस्त्र में भी ज्यादा कोई वो नहीं है, वो भी आसान है। उसमें क्या है, नीम की 2 किलो पत्ती लेते हैं, 20 लीटर गौमूत्र लेते हैं और 1 किलो तंबाकू की पत्ती, जो खाने वाला तंबाकू होता है, जिसको खाते हैं किसान भाई या बहुत
1: वो
0: सारे
1: दवा
0: जो
1: के रूप में
0: जनता।
1: काम आ रही
0: हाँ
1: है।
0: वो दवा, क्योंकि वो जहरीली है लेकिन उनको समझ नहीं है, तो इसको हमने उसमें लिया है, नेचुरल फार्मिंग है,
1: तो
0: जिस
1: कीड़े
0: जो
1: को
0: जो
1: मारती
0: कीड़ों
1: है।
0: को मारती है, तो इसको ले लें 1 किलो। आधा किलो लहसुन ले लें और आधा किलो हरी मिर्च ले लें, इनको कूट पीस करके उस 20 लीटर गौमूत्र में मिला करके उबाल दें और उबाल
1: पानी
0: के छान के वो भी 3 से 4 लीटर प्रति 100 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करेंगे, तो ये हमारे जितने भी सब्जियों में कीट और पतंगे लग रहे हैं उनका नियंत्रण आसानी से हो
1: और
0: जाएगा।
1: घन जीवामृत?
0: घन जीवामृत क्या है, बीजामृत तो घन जीवामृत में थोड़ा सा ही अंतर है। जैसे जीवामृत है, जीवामृत 200 लीटर का ड्रम लिया, उस 200 लीटर के ड्रम में 1 किलो मिट्टी, 1 किलो गुड़, 1 किलो गोबर, 10 लीटर गोबर और 1 किलो बेसन, 1 किलो पुराने पेड़ के मिट्टी के नीचे की मिट्टी मिलाकर के अच्छी तरह से हिला लें, 4-5 दिन में तैयार जीवामृत। इसका जो नीचे का पार्ट बचता है, जो ठोस भाग, उसको सुखा के उसके लड्डू बना लें और जब हम पानी लगाएं खेत में या नई फसल बोए तो उनको हम खेत में फेंक दें जगह जगह, वो घनजीवामृत होता है।
1: लड्डू फेंकने से?
0: हाँ, उसके बना करके
1: ये घनजीवामृत।
0: सूखे। हाँ,
1: और कोई सा है?
0: और एक ब्रह्मास्त्र है
1: जी,
0: जो,
1: ब्रह्मास्त्र तो सबसे बड़ा होगा।
0: हाँ, जो इसमें मोटी से मोटी इल्ली भी खत्म कर देता है, उसमें 2 किलो नीम की पत्ती और जिनको गाय नहीं खाती है ऐसी 5 और पत्तियां लेना है, जैसे अमरूद की पत्ती, बेल की पत्ती, कनेर की पत्ती, बेशरम की पत्ती, एलोवेरा की पत्ती, ये सब 2-2 किलो लेकर के 20 किलो गौमूत्र में उबाल दें। उबालने के बाद में 48 घंटे ठंडा कर दें और वही 3 लीटर 100 लीटर में मिला करके छिड़काव करेंगे, तो आपके सारे जितने भी कीट और व्याधियां हैं उनका नियंत्रण हो जाएगा फसलों में।
1: ये तो हो गया हमारा प्राकृतिक इलाज।
0: जी
1: दवा के तौर पर आपने दवा का नाम
0: हाँ,
1: बताया।
0: दवा के रूप
1: इसके
0: में
1: अलावा अगर कोई, चूंकि जिस तरह से साइंस बढ़ रहा है, विज्ञान की खोजें बढ़ रही हैं, उस तरह से हमारे रोग भी बढ़ रहे हैं और कीट भी बढ़ रहे हैं, तो ये जो हमारे अस्त्र हैं, ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र, घन जीवामृत, ये अन्य पर भी कारगर हैं कि सिर्फ कुछ विशेष पर ही कारगर हैं?
0: ये सभी फसलों पर कार्य कर रहे हैं, यही तो इसकी विशेषता है। प्राकृतिक खेती की विशेषता यही है कि हम जितने भी फल फ्रूट्स खा रहे हैं उनमें छिड़काव करें, जितनी भी हम सब्जियां उगा के खाते हैं उनमें छिड़काव करें। एक गाय किसान भाई पाल लें और उससे जितने भी गौमूत्र और जितना भी गोबर है उसको अगर हम इसमें उपयोग करें तो हमारी खेती बहुत अच्छी हो सकती है। सभी फसलों में ये बहुत फायदेमंद है।
1: यानी कि गोबर और गौमूत्र वेस्ट मटेरियल नहीं है, वो सोना है
0: किसान के लिए सबसे कीमती। जिस प्रकार नीम का पौधा किसान का सबसे मित्र पौधा होता है, उसी प्रकार हमारी प्राकृतिक खेती में अगर हमारी देसी गाय हमारे पास है, किसान भाई के पास है, उससे जो पदार्थ हमें मिलते हैं वो अमृत के तुल्य है।
1: यानी दूध तो आप बेच रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं, इससे आप दूसरी चीजें बनाकर आप बेच भी सकते हैं और खुद उपयोग भी कर सकते हैं,
0: जहर मुक्त खेती कर सकते हैं, मैं तो ये कहूंगा।
1: तो इससे जो हमारी फसल पैदा होगी उसके दाम कुछ अलग मिलते हैं?
0: हाँ, सरकार ने ऐसी व्यवस्थाएं की हैं, सभी जगह ये चीज नहीं आई है, लेकिन जो रजिस्टर्ड किसान हैं हमारे भाई, जैसे जैविक खेती में और प्राकृतिक खेती में, वो उन किसान भाइयों को कुछ जगह, बड़ी बड़ी जगह अलग से उनका मूल्य मिलता है, ज्यादा मूल्य पर वो बिकती हैं, इसलिए इसको धीरे धीरे हम सबको मिलकर के इसको बढ़ावा देना चाहिए और किसान भाइयों को उत्साहित प्रोत्साहित करना चाहिए इसके लिए।
1: तो ये जो मौसम वर्तमान का चल रहा है, इस मौसम में इसके अलावा और कौन सा कीट और हो
0: हाँ,
1: सकता है?
0: इसमें हमारे किसान भाई मूंग की फसल बहुत लेते हैं, हमारे देश में मूंग की ग्रीष्मकालीन बहुत अच्छी फसल हो रही है और पैदावार भी बहुत अच्छी आ रही है। उसमें सफेद मक्खी बहुत परेशान करती है, कभी कभी पीत शिरा रोग भी मूंग में देखने को मिलता है, वो फैलता है विषाणु रोग। तो इसके लिए हमारे किसान भाई जो है, जैसे उसमें इमिडाक्लोरपिड दवा है, थायोमेथोक्साम दवा है, ये 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से 3 बार छिड़काव कर देंगे तो ये सफेद मक्खी है इससे अपनी फसल को बचा सकते हैं। मूंग में एक इल्ली लगती है, फली में

0: इस तरह से मूंग का में जो लगने वाले कीट हैं और जो इल्ली हैं उसका नियंत्रण आसानी से हो जाता है।
1: जगदीश चंद्र गुप्ता जी, आप हमारे किसानों के बीच में आए और एक जो विषय था ग्रीष्म ऋतु में पौधों को कीट रोगों से कैसे बचाएं, इस एक अच्छे विषय पर, जिस क्योंकि इस समय हमारा किसान ग्रीष्मकालीन खेती कर रहा है जिसमें जायद की फसलें भी हैं, कद्दू वर्गीय सब्जियां भी हैं, मूंग उड़द का आपने जिक्र किया, ये हैं, इन सबका प्राकृतिक तरीके से और कुछ दवाओं के माध्यम से इलाज करेगा तो वो अपने खेती को कीट और रोगों से मुक्त कर सकता है और अच्छा उत्पादन करेगा जिससे उसे अधिक लाभ भी मिलेगा। आप हमारे किसानों के साथ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: भैया अभी अपन सुन रहे थे भेंट वार्ता, विषय है तो ग्रीष्म ऋतु में पौधों को कीट रोगों से कैसे बचाएं, और इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्ता जी और इनसे बातचीत कर रहे थे अपने भैया समर्थ अग्रवाल। तो भैया ये तो भई बात भेंट वार्ता की, अब हम चाह रहे हैं कि आपके लाने कछु और मनोरंजन कर दें, तो चलो सुन लेते हैं राजीव कुमार रावत को गाओ ये प्यारो सो लोकगीत।

भैया अभी अपन सुन रहे थे राजीव कुमार रावत को गाओ ये प्यारो सो लोकगीत। अब भैया बात कर रहे थे आज के मौसम की। आज शिवपुरी जिला को अधिकतम तापमान रहो 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहो 28 डिग्री सेल्सियस। मौसम में आर्द्रता यानी नमी रही 39% और हवा की बात करें तो वह रही 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब चलत कल के कार्यक्रम चौपाल में चर्चा बता दें, कल चौपाल में चर्चा रहेगी खेत बचाओ अभियान, ऊर्जा का बेहतर विकल्प सौर ऊर्जा, और किसानवाणी में राष्ट्रीय बांस मिशन, गर्मियों में पशुओं के लिए पौष्टिक आधार क्यों और कैसे। और इसी के संग कार्यक्रम चौपाल को समय अभी यहीं पर समाप्त होते हैं। अपनी बहन शिल्पा को आज्ञा दो, राम राम, जय जवान जय किसान।

0: वाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष मध्यम वर्ग कल्याण।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
2: दिस इज आकाशवाणी। In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government, transforming middle-class lives through reform and welfare. Participants are Ashok Tandon, political analyst, and Sharad Kohli, economic analyst. Moderator is Anubha Rohatgi.

0: India has undergone significant economic, technological and social transformation in the 12 years of the NDA government under the stewardship of Prime Minister Narendra Modi. For the country's middle class, the focus on infrastructure expansion, welfare initiatives, tax reforms, financial inclusion and digital governance has given wings to their hopes and aspirations on the one hand and made their lives easier, fairer and more dignified on the other. And that is the topic of our discussion today. To share their insights and views on this issue, I'm now joined by political analyst Ashok Tandon and economic analyst Sharad Kohli. Mr. Tandon, Mr. Kohli, welcome to the program.
1: Thank you very much.
2: Thank you.
0: I'll start with a question to both of you. What are the most crucial and significant initiatives that have made the most impact on the middle class in the last 12 years?
1: Well, Anubha, if you see down the line, you know, 12 years, it may sound like a very long period. But then if you work out from the government perspective, there's been so much which has been done in these 12 years. It's almost seems like 120 years from the kind of output that we've had. I think it is transformational for the people of the country, especially and the burgeoning middle class of the country. To my estimate, as an economic analyst, I would say the total size of middle class is probably 65 to 70 crores today. Mm-hmm. This includes those 25 crore people who move from poverty to the neo-middle class. So if we add them, so we've got, I mean, we're almost twice the population of the United States of the size of the middle class in India itself. I think every aspect of their life has seen a transformation. As you said, roti kapra makan once, I remember. I think the way they eat, the way they live, the way they travel, their own lifestyles, just about everything has been impacted. And as we go forward, we would love to, you know, go in deep dive into each of those aspects.
0: Absolutely. Mr. Tandon.
2: मोदी सरकार ने जो सुधार कार्यक्रम लिए पिछले 12 साल में
0: जी
2: उसमें जो मध्यम वर्ग की आर्थिक उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है टैक्स में छूट जीएसटी का सरलीकरण डिजिटल क्रांति हाउसिंग सब्सिडी जैसे बड़े सुधारों से मध्यम वर्ग की बचत बढ़ी है उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है और उससे उनका जीवन स्तर भी ऊपर उठा है अगर मैं कुछ चीजों की बात करूं जैसे हमने बात की तो टैक्स में बड़ी राहत मैं उसकी अभी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा जीएसटी रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है और रेरा जैसे सुरक्षित घर का सपना लोगों का पूरा हुआ है पीएम आवास योजना के अंतर्गत तो ऐसे कई कल्याणकारी योजनाएं हैं जैसे आयुष्मान भारत की हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें उज्ज्वला योजना की बात करें जनधन योजना की बात करें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें सामाजिक सुरक्षा की बात करें पीएम स्वदिन योजनाओं की बात करें तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो केवल मध्यम वर्ग को तो सहायक तो नहीं हो रही लेकिन जो मध्यम वर्ग नहीं था उनको मध्यम वर्ग में लाने का जो काम किया
0: जैसे भी शरद जी ने
2: बिल्कुल ठीक कहा क्योंकि भारत में हम जैसे कहते थे कि गरीबी रेखा के नीचे इतने प्रतिशत लोग हैं कितने लोगों को गरीबी रेखा से उठाकर मध्यम वर्ग में लाया गया क्योंकि भारत में मध्यम वर्ग की आप 15-16 कैटेगरी बना सकते हैं तो उन सब कैटेगरीज को लाभ हुआ है और जिसकी जो पहचान है वो ये है कि आज लोगों के जेब में खर्च करने के लिए पैसा आ गया है
0: आपने और शरद जी ने दोनों ने अभी जितनी एक जो सरकार की जितनी पहल थी इनिशिएटिव्स की उनकी बात की और आप दोनों ने एक जो बात की उसी से बात आगे बढ़ाते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग थे उनको गरीबी रेखा से नीचे लोगों को जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से उठाकर ऊपर लेकर आए हैं तो There has been a significant expansion of the middle class in the last 12 years with more than 25 crore people exiting multidimensional poverty and entering the new middle class. How big an achievement do you think that is of the government, of the Modi government, Sharadji?
1: I think it's a huge achievement because 25 crore may be a very easy number to speak.
0: Yes.
1: But this number itself may be more than, Anubha, the population of many of the countries around the world. और देखिए हुआ क्या कि पावर्टी इंडेक्स की जो डेफिनेशन बदला गया यू नो वी चेंज द डेफिनेशन बिकॉज आप पावर्टी को पहले कैसे डिफाइन करते थे इतने रुपए रोज का आई थिंक नीति आयोग केम आउट विद अ वेरी न्यू एंड अ प्रॉमिसिंग डेफिनेशन कि आपका अगर जीवन का स्तर सुधर रहा है यू नो ऑन न्यूट्रिशन ऑन हेल्थ आपके पास घर नहीं है टुमारो यू गेट अ हाउस यू डोंट हैव अ वाटर कनेक्शन नाउ यू हैव अ वाटर कनेक्शन लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट द टॉयलेट्स व्हिच इज बीन यू नो सैनिटेशन हैज बीन वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर्स हार्ट यू नो जंगल में और खेतों में जाके यू नो टॉयलेट का इस्तेमाल करना या वहाँ पर इधर उधर बैठ के महिलाओं के लिए खासकर बहुत सो आई थिंक नाउ देर आर टॉयलेट्स एट सो द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीड्स टू बी अंडरस्टूड अनुभव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट नॉट दैट अ पर्सन हैज अ वेरी ह्यूज बैंक बैलेंस बट ही इज एबल टू अफोर्ड and live a lifestyle which any other normal middle class lives. So I think that has been the paradigm shift in the way we look at poverty, because those people are financially fine. They may be earning whatever they earn, but today they have facilities which are probably being enjoyed by some of the people who lead a more prosperous life.
0: The facilities that are very basic facilities.
1: Absolutely.
0: Which is everybody's right and which should they should get.
1: No, but the thing is that me and you can call them basic, but for them it was a luxury at one point of
0: right.
1: time. And today they feel that these were basic amenities which I was lacking. And it is thanks to the government schemes like Pradhan Mantri Awas Yojana, you know, the whole sanitation program which has been done. You know, Arbab, before you move forward, I would like to highlight that for me as an economic analyst, the biggest takeaway, because there's a long list. In fact, if we just name all the developmental and welfare schemes, I think the next half an hour may not be enough. So biggest takeaway for me, because we are hardcore economic analysts, for me is the massive 100 lakh crore plus infrastructure spend. Because that is one, in economics we call it, Anubha, the trickle-down effect. That has impact har work ko samaj ke usne fayda pahunchaya aur middle class to usme aati kyunki isse naukriyan bani hain, isse logon ki income. Aur main aapko bahut interesting baat bataun jo Tandon sahab meri baat se agree karenge ke ab mujhse jab log poochte hain, kyunki hota kya jab aapki zindagi mein ye sab ghatnaen ghatti rehti hain welfare schemes, to you take it in your stead. Aapko lagta hai theek hai ye to hona hi tha, bhai ye to mera haq hai wagaira wagaira, aise khayal aate hain. Par bahut acha tarika isko dekhne ka kya, which I am sure the listeners of Akashwani would like to dwell upon and deep dive, is ke aap 2014 mein जब ये सरकार आई थी 12 साल पहले, आप कहां खड़े थे? शायद लोगों की मेमोरी इतनी अच्छी ना हो. इट्स वेरी हार्ड टू रिमेंबर के व्हाट आई यूज्ड टू अर्न, व्हाट वाज माय नेट वर्थ इन 2014, और आज आप कहां खड़े हैं. तो अगर आप दोनों को कंपेयर, क्योंकि हम तो कैसे देखते हैं, बहुत आसान तरीका है. आई थिंक मिस्टर टंडन वुड अग्री. इन 2014 वी वर अ $2 trillion इकॉनमी. सो इन 67 ईयर्स फ्रॉम जीरो वी रीच 2 trillion, एंड इन द लास्ट 12 ईयर्स वी रीच 4 trillion. तो अगर इकोनॉमी डबल हुई है, तो इकोनॉमी तो हमको और आपको मिलाकर ही बनती है ना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय पीपल लाइक अस. सो आई थिंक दैट्स अ बेटर वे टू लुक एट इट, एंड दैट फॉर मी दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे.
0: अशोक जी, मध्यम वर्ग की, जैसे कि भी शरद जी ने भी हमारे डिस्कशन की शुरुआत में कहा कि तीन सबसे बड़ी चिंताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, और इन तीनों के लिए ही जरूरी है रोजगार और नौकरी. तो पिछले बीते 12 सालों में भारत सरकार ने जो तेजी से बढ़ती युवा आबादी है देश की, उसके लिए नौकरी और खासकर स्वरोजगार के अवसरों को जो दिए हैं, उनको जो उसके लिए पहल शुरू की हैं, जो उसके लिए कार्यक्रम करे हैं, उन्हें आप कैसे देखते हैं? खासकर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, या नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इन सब योजनाओं का आबादी को नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार दिलाने में कितना बड़ा योगदान है?
2: मैं आपकी बात पर आने से पहले स्वास्थ्य की बात करना चाहता हूँ. मुझे लगता है कि समाज में स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रोटी, कपड़ा और मकान है. और उस दिशा में जो आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 22 करोड़ से अधिक नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए जैसे अभी बताया गया था, और आवास नल यानी पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक किफायती घर बनाए गए हैं. आपने रोटी, कपड़ा, मकान की बात की. वहीं जल जीवन मिशन के माध्यम से करोड़ों ग्रामीण और अर्ध शहरी घरों तक सीधे जल से साफ पानी पहुंचाया गया है. और जैसे अभी बात हो रही थी, अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो GDP के दम पर. लेकिन इसमें एक राष्ट्र एक टैक्स यानी GST, और ये जो इसमें जो सरलीकरण किया गया, ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक सुधार था जिसने हमारे देश के बिखरे हुए टैक्स ढांचे को खत्म कर पूरे भारत को एक बाजार बना दिया. मैं अगर स्टार्टअप की बात करना चाहूँ तो हम देखते हैं कि इसके PLI योजनाओं के सहयोग से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है, और जिससे इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में घरेलू जो इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है. तो इस तरह से और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं.
0: शरद जी, मैं अपने अभी जैसे अशोक जी ने बात की स्वास्थ्य की, पर मैं वापस आऊंगी जो हम नौकरी की बात कर रहे थे उसमें उन्होंने, और अशोक जी ने जो एक और बात करी स्टार्टअप जो इकोसिस्टम की, तो हम जब बात कर रहे थे कि जो सरकार की जो पहल थी, जो विभिन्न योजनाएं हैं, उनमें रोजगार मुहैया करवाने में, उनके लिए रोजगार क्रिएट करने में कितना बड़ा, और खासकर अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के लिए जो उसको इंकरेज करने के लिए सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं, उससे मिडिल क्लास की जो एस्पिरेशंस हैं उसको कितना प्रोत्साहन मिला है?
1: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है अनुभा. देखिए गवर्नमेंट, यू नो, एज एन एम्प्लॉयर, सरकारी क्षेत्र में जितनी नौकरियां हैं अनुभा,

0: वो तो सरकार उतनी देगी। आप देखें प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है, समय समय पर अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रधानमंत्री जी खुद बांटते हैं।
1: बिल्कुल।
0: पर इसमें यह ध्यान रखना होगा दैट गवर्नमेंट कैन नॉट एम्प्लॉय एवरीबॉडी इन द कंट्री। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एन एनेबलिंग प्लेटफॉर्म वेयर इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। तो आपने स्टार्टअप का बात किया, आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन दैट। टुडे वी हैव स्टार्टअप इंडिया, जब शुरू किया गया था मुझे याद है 2016 की ये बात है, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल सेड दैट स्टार्टअप इंडिया, यू नो, पीपल हैव बीन डूइंग बिजनेसेस हियर फॉर टाइम्स इममेमोरियल। सो व्हाट इज न्यू? यस, देयर वाज समथिंग न्यू बिकॉज स्टार्टअप फोकस्ड ऑन इनोवेशन, स्टार्टअप फोकस ऑन न्यू आइडियाज, एंड दैट इज वेयर द यूथ ऑफ द कंट्री और द यूथ इंटेलेक्ट ऑफ द कंट्री गॉट एक्टिवेटेड। A lot of youngsters, and today, just on Startup India, there are 2 lakh plus registered startups. And you know, you will not believe that the employment provided by these startups today is 2.3 million plus people who've been employed. And government has created a startup fund,
1: yes,
0: where, you know, because these startups look for funding and they've been looking at funding to private sources, these angel investors and so on. So here, government became an angel.
1: Right.
0: And I think the whole setting up of incubation centers, setting up of those places where these startups can get trained, I think that has done magic to this country. And today, I'm telling you, from being job seekers,
1: yes,
0: to being job creators, when I talk to a cross-section of youth today, what they tell me is that, yes, we want to work, not that, but we only want to work to gain experience. Once they gain experience, they want to be, you know, there is a flame burning inside every youth. Yes, I have to do something of my own. And I think this aspirational India is driving the growth of the country. You know, if 65% of our population, Anubha, is below 35 years of age, we are a very, very young country. And, you know, for everybody to find employment, you know, may not be possible in,
1: yes,
0: the times to come. So if you become job creators, you just don't employ yourself. You create jobs for so many people around you. And, you know, we talk of Mudra Yojana, which was focused on women entrepreneurs, where government gives you a loan for up to a certain level, up to 10 lakh rupees, 5 lakh rupees, you borrow, you start. I've seen so many women entrepreneurs, you know, you'll be surprised, the participation of women in the mainstream economic activity in this country is not as high as men. We all know that. There are so many although I treat homemakers as a very, very active GDP.
1: In fact, actually,
0: we did an analysis recently, which said that if the GDP of women homemakers, it's not counted in the GDP,
1: right,
0: but then they contribute very, very significantly. But then those women who've now joined the main economic mainstream, their percentage is between 30 and 35%. This Mudra Yojana has helped women come forward. And I see so many women entrepreneurs today, not just employing themselves, but they've got a big team who follows them, who are employed with them. So I think the vision of this government was to make sure that you don't chase rozgar, you also create rozgar for other people. That for me, you know, and the whole taxation system,
1: yep,
0: and ease of doing business, I think that has helped the middle class. There was a time when middle class person used to think, main business kaise karunga, karungi, ye to bahut mushkil hota hai, company kaise banayenge, phir sarkar itne sare taxes lagati, 17 taxes ko mila ke GST jab aaya, aur jab se GST 2.0 aaya hai, usne to aisa lagta hai GST ko, I mean, people have opened their arms and embraced it. पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ गया है।
1: आपने जीएसटी की बात की और उससे पहले कि हम टैक्स रिफॉर्म्स की बात करें, क्योंकि एक वो बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, एक ऐसा सेक्टर है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो मध्यम वर्ग परिवार हैं उनके जीवन में बहुत ज्यादा फर्क आया है। बिकॉज यू नो सम पीपल थिंक दैट द मिडिल क्लास हैज बीन यू नो अनफेयरली बीन बर्डन विद टैक्स बर्डन, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इनकम टैक्स। सो इन द लास्ट 12 इयर्स व्हेन वी लुक एट द टैक्स रिफॉर्म्स दैट द मोदी गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड, इफ वी लुक एट द जीरो टैक्स लिमिट एंड वेदर लाइक यू मेंशन द जीएसटी, नॉट जस्ट द इंट्रोडक्शन of GST, but after that, last year we saw the GST 2.0 also. How have these tax-related reforms in the past decade impacted middle class? Sir Tandon, what would you say to that?
2: देखिए, इसमें एक और पहलू भी है
1: जी,
2: कि जो पेंशनर्स हैं या जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनका भी महंगाई भत्ता लगातार बढ़ाया जाता है उस महंगाई के इंडेक्स के साथ मिलाकर। तो टैक्स रिफॉर्म जो है, आपने जिनके जिक्र किया, उससे भी हम लोग अपनी मिडिल क्लास की बात करें, हम लोगों को 40-40, 50-50 हजार रुपए साल का टैक्स बचा है। तो हम भी मिडिल क्लास हैं सब लोग, तो ये जो लाभ मिला है मिडिल क्लास को और जो टैक्स के बारे में जितनी भी बातें हुई हैं, तो ये सब कुछ मिलाकर अगर देखें तो मैं समझता हूँ मिडिल क्लास आज बहुत खुश है। और शायद मिडिल क्लास की 4-5 लेयर्स को भी अगर दें, अपर मिडिल क्लास की अगर अभी बात छोड़ भी दें, तो लोअर मिडिल क्लास को मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदा होगा।
1: शरद जी, यू नो, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टैक्स रिलेटेड रिफॉर्म्स, इट्स नॉट जस्ट द एग्जेम्पशन, यू नो दैट द एग्जेम्पशन लिमिट हैज, यू नो, इनफैक्ट चेंज 4 टाइम्स, इट इज इंक्रीज 4 टाइम्स सिंस 2014, बट इट्स ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स, इट्स द प्रोसेस ऑफ, यू नो, द ट्रांसपेरेंसी दैट हैज बीन ब्रॉट इन दिस

0: process. So what would you say to that? How has it made the lives of the middle class, you know, much easier? And not more than that, would you say that, you know, the fact that the government has made the process so easy, and if you look at the number of ITRs filed, in fact, last year, more than 8 crore ITRs were filed. That's also showing the government, the Modi government's trust in the people, in their honesty. And it's a salute to the middle class.
1: All right, we call that a Sabka Vishwas. A government has gained that Vishwas where people come forward and file. And I'll give you a very interesting, you know, dynamics of this whole tax, you know, number which you spoke of.
0: Gee.
1: About 9 crore returns were filed. And, you know, the real taxpayers, the people who actually paid tax, they were about 3 crore or so. But then because it's mandatory to file the return, so people participated in that activity, people came forward, and they have now understood with 12,75,000 rupees of income for the first time in India is tax exempt. You know, we did a case study of a couple who were both earning. One was earning about 5 lakhs and the other was earning about 7 lakhs, about 12 lakhs of earnings. Now, they were not able to save for earlier for investments, for SIPs, for health insurance. Combined together, they saved tax about a lakh of rupees. Now, this lakh of rupees is going into health insurance, is going into insurance, is going into their retirement planning as well. And, you know, it'll be unfair, Anubha, if when we talk of tax and we don't talk of the tax savings made by GST. Somebody asked me that only 3 crore people in India pay tax. I said, no, every citizen of this country pays GST because that's indirect taxation. So this GST 2.0 has put money in the pockets of people. And because primarily we are a consumption-driven economy, 55 to 60% of our economy comprises of when me and you and Mr. Tandon goes and buy goods from the shopkeepers, from service providers. So I think that has taken a big boost. And in the current scenario, when global economy is facing challenges, it is the Indian consumption, Anubha, which is driving the growth of the country.
0: Let's move on to the next, you know, area which I think has impacted the lives of the middle class in a very significant manner, which is digitization. And we all know that Prime Minister Modi is a big votary of digitization. So what role has digitization played in the empowerment of middle class? Would you say that initiatives such as Aadhaar or even, you know, DigiLocker or even Umang, I'm just giving some few examples, that they have not only made public services mobile and paperless, but they've also in a way deepened the trust of the people in the government systems, Mr. Kohli?
1: I think it has brought the banking system, Anubha, in the pockets of people.
0: Financial inclusion?
1: Absolutely. You know, Jan Dhan Yojana, more than 56 crore accounts. And these were the people who probably thought that banks are always a dream for us. You know, they used to keep their money, you know, under the mattresses and so on. So today, all that money is in the bank and a very substantial deposit is there. I think 25 lakh crore rupees every month, 300 lakh crore rupees of transactions happening in a year.
0: Yes.
1: I think this has been transformational. And a lot of countries around the world now want to emulate that example.
0: Absolutely.
1: So many countries have borrowed this fintech innovation from us and they want to go for it, from buying a roadside nariyal to probably making big payments at the hotels. Just about, I have a feeling, Anubha, as an economic analyst, that to my mind, this has added about a percentage point to GDP, which means just the UPI has facilitated our GDP in stepping up by about 100 basis points, which is a very, very significant value for that matter.
0: Ashok ji, aap kuch kehna
2: chahte hain? Main ye kehna chahta hoon ki ye Jan Dhan, Aadhaar aur mobile, ye jo jam ki tikdi hai, isne bicholiyon ko khatam kar diya hai. Aur iske saath saath jo 1600 se adhik purane aur obsolete kanoon jinko hum kehte hain unko khatam kiya gaya hai. Sarkari naukriyan ho, nichle star mein interviews ko khatam kiya gaya hai. Dastavejon ke self attestation ko shuru kiya hai. Ye sab bhrashtachar ko bhi samapt karte hain aur sabse zyada iska labh jo hai wo madhyam varg ko hua.
0: Ji, hum kyunki digitization ki baat kar rahe hain aur hum baat kar rahe hain technological revolution ki, to internet connectivity ko bhi baat karna bahut zaruri ban jata hai. Pichle 12 saalon mein sarkar ke vibhinn prayason ke chalte लगभग 98% गांवों में 4G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है और तेज इंटरनेट के चलते ग्रामीण विकास में काफी तेजी आई है. उसे आप कैसे देखते हैं? और साथ ही साथ डेटा इतना सस्ता हुआ है पिछले 12 सालों में, और ये जो हमारी जिस तरह से तेज कनेक्टिविटी मिली है, इससे मध्यम वर्ग के विकास पर किस तरह का और कितना प्रभाव पड़ा है?
1: जबरदस्त प्रभाव पड़ा है अनुभव. आपने ऐसा लगता है जैसे इस मध्यम वर्ग की जो दुखती रग थी उस पर हाथ रख दिया, बिकॉज दुनिया का सबसे सस्ता डेटा हमारे देश में है. और क्या कमाल इसने किया है कि इसने जो गांव और शहर के बीच में जो एक खाई हुआ करती
0: डिजिटल डिवाइड, जिसको
1: डिजिटल डिवाइड क्या लाइफस्टाइल डिवाइड था, बिकॉज दीज पीपल इन द विलेज अनुभव दे नेवर यूज्ड टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द टाउन. टुडे व्हेन आई गो टू अ विलेज आई फाइंड द थिंग्स दे यूज द वे दे टॉक व्हाट दे वेयर द लाइफस्टाइल दे लीड इज प्रीटी मच लाइक अ नॉर्मल टाउन सिटीजन एंड देयर आर सो मेनी लर्निंग्स व्हिच आर हैपनिंग. प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली मेड एन अपील व्हिच सेड के आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए. कैसे ये कोविड में हम करते पढ़ाई लिखाई बंद हो जानी थी अगर ये कनेक्टिविटी नहीं होती. बच्चों का कोई नुकसान कोविड में नहीं हुआ. आज भी प्रधानमंत्री जी हम अपने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए. क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि उसके पीछे इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी की पावर आज है.
0: सरकार ने जो पिछले 12 सालों में काम किया,
1: काम किया है,
0: हमें दिख
1: उसके आधार पर उन्होंने बोला. उनको पता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा और लोग वैसे ही लाभ उठाते रहेंगे. सो आई थिंक दिस होल्ड और वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर फॉर दैट मैटर. मुझे ऐसे लोग मिलते हैं अनुभव हु यूज्ड टू लिव इन से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, आज वो कई पहाड़ों पर जाके रहते हैं और बहुत सुकून की जिंदगी जीते हैं. और शायद उनके एम्प्लॉयर को, उनके क्लाइंट्स को ये मालूम भी नहीं होता कि वो कहां बैठ के काम कर रहे हैं. दैट हैज बीन द मैजिक ऑफ डिजिटलाइजेशन.
0: अशोक जी आप कुछ कहना?
2: नहीं, मैं इसमें सोशल सिक्योरिटी का एंगल जरूर लाना चाहता हूं, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और जो लेबर है, श्रमिक है, उनके लिए जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आई है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आई है और अटल पेंशन योजना आई है, ये ऐसी योजनाओं के आने से और पीएम स्वनिधि योजना है, इसके जरिए स्ट्रीट वेंडर जो है, सड़क पर जो सामान लगाता है, रेड़ी खोमचा लगाता है, और उनको फिर से अपना काम करने के लिए कितनी आसान शर्तों पर जो है वो लोन दिया जा रहा है. तो इसी कड़ी में मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि 12 सालों में ये जो गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया गया, सुशासन, और भारत के जो प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया गया है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये जो सिद्धांत पर चलते हुए सरकार ने ट्रांसपेरेंसी लाई है, स्पीड लाए हैं और टेक्नोलॉजी पर जो जोर दिया है, ये गुड गवर्नेंस भी अल्टीमेटली हम देखें तो मिडिल क्लास को ही इसका लाभ हो रहा है.
0: We have seen in the last 12 years since 2014 when NDA government under Prime Minister Modi, you know, came in power, we have seen that there's been a continuous focus on expanding and improving infrastructure. In fact, every year in budget, we've been seeing an increase in the allocation for infrastructure. So how has this improved the quality of life of the middle class and fast-tracked their economic prosperity?
1: Oh, it's done in a huge way, because we pick up anything. For example, highways. Any middle class family traveling from one town to another, 8 to 9 hours, Anubha, for a 200 kilometer distance was a normal earlier. Now you cover that distance in 2 hours and 2.5 hours. Look at the time saved. And if you're using your own vehicle to travel, look at the wear and tear that you save. And why forget metros? The way metro has been expanded, Anubha, over the last few years, I have stories of somebody in Delhi or Mumbai, you know, who used to spend 2 hours to reach the workplace, 2 hours to come back. Today, that journey happens in 25 minutes. Look at the saving in fatigue which that commuter does. And Udaan, Hawaii Chappal se Hawaii Yatra tak. Well, a plane journey used to be a dream for people. कि हम सारी उम्र में सोचता था कब मैं हवाई जहाज में बैठूंगा. आज मुझे लगता है आप अगर किसी भी हवाई यात्रा में जाएं, आपको एक आम आदमी उसमें दिखेगा. अब वो ऐसी लग्जरी नहीं है. छोटे छोटे एयरपोर्ट्स को बनाकर उनको कनेक्ट कर देना और चंद मिनटों में या घंटे में पहुंच जाना, जिसके लिए आप सारी रात की जर्नी करते थे. आपको याद होगा राजधानी और शताब्दी, अकेली ट्रेन हुआ करती थी जो कि प्रीमियम बोली जाती थी, जल्दी पहुंचना है. आज वंदे भारत लेके आप कुछ घंटों में एक जगह से दूसरी जगह और ऐसे कंफर्ट पहुंच रहे, which is of international level. The things we used to watch internationally, के इस ट्रेन में टीवी भी होता है, इसमें reclining seats होती हैं, आज वो मुझे लगता है आम आदमी की पहुंच में. So I think this government has brought luxury, which used to be called earlier, as a comfort and necessity to the people of the country.
0: And you know, that brings me to my next question, क्योंकि आप जैसे बात करें कि infrastructure में जो improvement हुआ है, be it roads, be it railways, be it, you know, airports, जो expansion हुआ है, तो हमने देखा है कि हवाई यात्रा में जैसे भी आपने कहा कि बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है. वंदे भारत जैसे हमारे पास वर्ल्ड क्लास ट्रेन्स हैं, जहां 2014 में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, अब वो बढ़ के 160 हो चुके हैं, 225 तक. जो मेट्रो रेल का नेटवर्क है वो 26 शहरों में फैल चुका है. तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम कार्यक्रम के शुरू में हम बात कर रहे थे कि मध्यम वर्ग की चिंता होती थी रोटी, कपड़ा, मकान, पर अब जब उनकी ये बेसिक नेसेसिटीज काफी हद तक वो आराम से उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पूरी हो रही है, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ा है, इसको जो फैल रहा है तेजी से, इससे मध्यम वर्ग की जो आकांक्षाएं हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उस पर कितना असर पड़ेगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अशोक जी पहले आपसे.
2: इसके लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बुनियादी ढांचे हो रहे हैं, उसके लिए एक पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया और इसीलिए एक सेक्टर में जो प्रगति हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो सब एक दूसरे को जानते हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है और उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है और उसमें स्टार्टअप भी लगे हुए हैं। ये सब काम कोई सरकार अकेले नहीं कर रही है, चाहे वो हम सड़कों की बात करें या रेलवे की बात करें, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हो रही है वो भी मिडिल क्लास को बहुत फायदा कर रही है। अब देखिए ना, जब रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है तो हम देखें लाखों मजदूर उसमें काम करते हैं, तो ये कुल मिलाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जीडीपी में केवल हाईवेज और रोड 1% तो जीडीपी में वही बढ़ोतरी करते हैं। अगर आप सोचिए रेलवे को अगर ले लें और हम एयर ट्रैफिक वगैरह की बात करें तो इस मामले में अगर देखें तो जो एक डेवलपिंग कंट्री के नाते भारत रहा है अब तक, उसकी पहचान है, वो अब

0: बड़ी तेजी से डेवलप्ड कंट्री की ओर जा रहा है, इसलिए जो लक्ष्य रखा गया है कि हम 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे, उसकी ओर देश तेजी से बढ़ रहा है।
1: शरद जी, आप क्या कहेंगे, हम जब बात कर रहे थे एस्पिरेशंस की, आकांक्षाओं की, अब मध्यम वर्ग का जो पिछले 12 सालों में हमने देश में विकास देखा है, आर्थिक विकास देखा है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन देखी है, हर तरह से जो हमारा देश प्रगति की राह पर एक बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है, उससे मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं पर कितना असर पड़ रहा है और उनकी आकांक्षाएं जो पूरी हो रही है उससे देश की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट पर कैसा असर पड़ रहा है?
2: आई थिंक द पॉइंट यू हैव रेज्ड अनुभव रिलेट्स टू विकसित भारत 2047, और अभी आपने जब बुनियादी ढांचे की बात करी तो उसमें हर एक रुपया जो बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाता है, ये एक आर्थिक सिद्धांत है, उसका 8 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। आपने कहीं सड़क बनाई, उसके आसपास अस्पताल आ जाएंगे, होटल्स आ जाएंगे, अपार्टमेंट्स आ जाएंगे, मॉल्स आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आ जाएंगे। देखिए, एक सड़क बनने से, और ये ऐसे मेरे पास अनेकों उदाहरण है देश की, अगर मैं कोई भी एक सड़क उठा लूं तो मुझे लगता है कि ये जो विकसित भारत की यात्रा है पूरी, ये जो आपने एस्पिरेशनल इंडिया की बात करी, ये विकसित भारत की यात्रा में बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि मुझे याद है एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा मकान, और अगर आप उस फिल्म को याद करें और आज उसको इस परिपेक्ष में देखें, ऐसा लगता है उस फिल्म को हम 300-400 साल पहले छोड़ के आ चुके हैं। क्योंकि जब लोग देखते हो कहते हैं ये भी जमाना था क्या, रोटी कपड़े मकान के बारे में सोचना पड़ता था? क्योंकि आज आप सोचते हैं कि आप हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप वर्ल्ड क्लास हाईवे में ट्रैवल कर रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप एक इनोवेटिव स्टार्टअप चला रहे हैं। तो मुझे लगता है वी हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे अनुभव फ्रॉम वेयर वी वर।
1: यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट द मिडिल क्लास नाउ, वन सेगमेंट ऑफ द मिडिल क्लास दैट आई थिंक वी हैव टू टॉक अबाउट एंड वी शुड मेंशन इज द वुमेन। Women, you know, are the backbone of any middle class family. What, in your opinion, in the last 12 years, the various schemes, the various initiatives that the Modi government has taken, how have they uplifted and empowered women, especially of the middle class women, which in turn, you know, have made the middle class much more prosperous? Ashok ji, aap batana chahiye.
0: Dekhiye, humne jitni bhi jan kalyan yojanaon ki baat ki hai, agar hum dekhenge to fayda to usse har vargh ko hua hai, lekin vishesh taur se mahilaon aur kisanon aur yuvaon se jude hue jo hain. Ab aap dekhiye, agar hum बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, तो जो गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से जो मुक्ति मिली और उससे स्वच्छ ईंधन की उपलब्धि हुई और मुफ्त एलपीजी मिली, ये तो सीधा सीधा मैं कहूंगा महिलाओं के ही कल्याण के लिए हुआ है। इसी तरह से हम जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें और सामाजिक सुरक्षा के लिए, तो मैंने पहले भी कहा है, तो महिलाओं के लिए आवास की योजना हमने बात की, टॉयलेट के बारे में बात की, तो ये सब योजना, आयुष्मान भारत ये योजना से भी जो 5 लाख का मुफ्त इलाज है, इसमें महिलाएं सबसे ज्यादा इनको भी लाभ हो रहा है। और सबसे बड़ी यही है कि जिसको हम वेमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, तो उसमें लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, स्टार्टअप में बहुत महिलाएं हैं, तो हर क्षेत्र में महिलाएं जब सामने आ रही हैं और उनकी अगर स्वास्थ्य सुरक्षा, जैसे वेमेन सिक्योरिटी है, तो ये चीजें जब आज तसल्ली होगी तो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बाहर आकर काम करेंगी और इन सब योजनाओं का लाभ उठाते हुए वो आज खुद भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू या अदरवाइज स्टार्टअप के थ्रू वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं।
1: जी अशरद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट हैज बीन द थीम ऑफ दिस गवर्नमेंट, एंड महिला सशक्तिकरण जिसको हम कहते हैं, और महिलाएं चाहे उनकी एजुकेशन की बात हो, बिटिया की पढ़ाई की बात हो, बिटिया की सुरक्षा की बात हो, मुझे लगता है यहां से सारा का सारा ये जो उत्थान हुआ है वहां से निकल कर आया। एंड टुडे वुमेन, एज आई सेड अर्लियर, दे आर इन द मेनस्ट्रीम, द परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आर इन्वॉल्वड इन द मेनस्ट्रीम दैट इज इंक्रीजिंग, एंड दिस इज अनुभव नॉट जस्ट हैपनिंग इन द टाउन। I find lot of women, as Mr. Tandon said, that you know, जो self-help groups हैं, वहाँ पर महिलाएं इकट्ठी होके कुछ business शुरू कर रही हैं, Ministry of Cooperative बन गई है, जहाँ से बहुत सारी cooperative societies के जरिए महिलाएं आगे आ रही हैं। और आप अगर देखें इसका result कहाँ दिख रहा है अनुभव, तो आप देखें कि जब भी results आते हैं किसी भी examination के, वहाँ महिला candidate सबसे आगे होती हैं। ये इस बात को बताता है कि सरकार ने महिला education को और महिलाओं के सशक्तिकरण को कितना seriously लिया है। और हमारी आधी आबादी है, तो मुझे लगता है कभी भी उनके साथ भेदभाव तो कभी भी जस्टिफाइड नहीं था, पर आज जो विभिन्न स्कीम्स की वजह से महिलाओं के हम स्कीम्स गिनवाएं तो बहुत लंबी लिस्ट है महिलाओं की स्कीम की, पर मुझे लगता है कि महिलाओं का मेन स्ट्रीम में आना, और अगर मैं एक जरूरी बात कहना चाहूंगा, आई थिंक यू विल बी एबल टू रिलेट, अगर महिला काम नहीं भी कर रही है, मान लीजिए वो कहीं कमाई नहीं करती है, तो घर बैठे बैठे प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर हैं, महिलाएं इस बात को मानेंगी पहले उनके नाम किए गए हैं।
1: बिल्कुल,
2: आप देखिए कि घर में अगर पुरुष, खाली पुरुष है तो अलग बात है, पर अगर महिला है तो घर बैठे बैठे महिला सशक्तिकरण हो रहा है। महिला अपने पति को कह सकती है, देखिए ये घर मेरे नाम है, मेरा भी इस घर में उतना ही योगदान है। और मैं समझता हूं उसने महिला को एक कॉन्फिडेंस दिया है। सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं महिलाओं के मामले में मानता हूं ये उनका कमाई के जरिए बनना, इन्होंने उज्ज्वला की बात करी, वो सब तो है ही है, पर मुझे लगता है महिलाओं में एक जो कॉन्फिडेंस आया है, और ये कॉन्फिडेंस

0: आपको बताऊं सबसे ज्यादा मुझे कहां दिखा, जब प्रधानमंत्री जी ने महिला का पार्लियामेंट में बिल लाने की इस सरकार ने मुहिम छेड़ी, किसी वजह से वो नहीं पास हो पाया, पर सरकार की इंटेंट बताती है कि महिलाएं आधी आबादी नहीं है, महिलाएं ज्यादा शक्तिशाली आबादी भी हैं, ये प्रधानमंत्री जी की मंशा रही है।
1: आप दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि हम अब तक बात कर रहे थे कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल में जो उन्होंने कदम उठाए उसका मध्यम वक्त में कितना फर्क पड़ा, कितना असर पड़ा, बट व्हेन वी लुक एट यू नो इन द फ्यूचर, लेट्स लुक एट द इन द फ्यूचर, इन द नेक्स्ट डेकेड वेयर डू सी द इंडियन मिडिल क्लास, वेयर इट इज गोइंग टू बी, एंड हाउ मच ऑफ अ मेजर फैक्टर विल इट बी इन इंडियाज डेवलपमेंट? अशोक जी,
2: देखिए जब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो मिडिल क्लास भी हम मान रहे हैं कि उसका सबसे ज्यादा उनको फायदा हो रहा है, तो यही मिडिल क्लास देश को प्रगति की ओर भी ले जा रहा है, और यही मिडिल क्लास ही देश को आज हम देखते हैं तो खेलों के मैदान में जो हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा खिलाड़ी हमारे मिडिल क्लास हैं। पहले हम सोचते थे कई खेल ऐसे हैं जो बहुत अमीर लोगों के खेल हैं, आज जो है स्मॉल टाउन से क्रिकेटर्स आ रहे हैं, हॉकी के प्लेयर्स आ रहे हैं, रेसलर्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि टेनिस के प्लेयर्स भी आ रहे हैं, तो ये सब जो विकास हो रहा है तो खेलों में हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे ओलंपिक वगैरह ये देखें तो ये सब मिडिल क्लास का ही आगे बढ़ना है, और इससे आगे चलकर मिडिल क्लास वो भी ये जो विकसित भारत का सपना है उसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा योगदान यही मिडिल क्लास देगा।
1: शरद जी, अशोक जी ने गरीब और अमीर का जो अंतर है वो बहुत कम होता जा रहा है।
0: देखिए जब भी कोई अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ती है, डेवलप की ओर बढ़ती है, तो वो खाई अपने आप भरती जाती है। मैं मिडिल क्लास को पर्सनली तीन हिस्सों में बांटता हूँ, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, तो मुझे लगता है इन तीनों को अगर हम मिला दें, आपका क्योंकि सवाल था कि हम भारत के विकास में इनका क्या योगदान रहेगा, मुझे लगता है लोअर मिडिल क्लास में आएगी, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में आएगी, और अपर मिडिल क्लास शायद अमीर बन जाए। द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज, if you take in the world of sports, you take in the world of innovation, you take in the world of space, you take in the world of anything, I think the biggest success stories are coming from middle class.
1: Mr. Ashok Tandon, Mr. Sharad Kohli, thank you so much for joining us in Akashvani's special series on 12 years of Modi government.
0: It was a pleasure.
2: Thank you.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnstalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming middle-class lives through reform and welfare. Participants were Ashok Tandon, political analyst, and Sharad Kohli, economic analyst. Moderator was Anubha Rohatgi. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News On Air. This program is also available on our YouTube channel, News On Air Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
4: आप सुन रहे थे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष मध्यम वर्ग कल्याण। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत गुड्डी फिल्म के गीत से, आवाज़ वाणी जयराम की, शब्द रचना गुलजार की और संगीतकार वसंत देसाई।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, समय है अंतराल का। श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। आकाशवाणी भोपाल से प्रसारण हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करने के संबंध में ये सूचना है। प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस, निर्माता, अधिकार स्वामी, एग्रीगेटर, कंटेंट क्रिएटर को आमंत्रित किया जाता है। ये कार्यक्रम सोर्सिंग राजस्व साझाकरण या रेवेन्यू शेयरिंग प्रायोजित अथवा स्पॉन्सर्ड और निशुल्क या ग्रेटिस आधार पर किया जाएगा। ये सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए संशोधनों आदेशों के अनुरूप होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने से पहले वे प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों और आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ये सभी दस्तावेज प्रसार भारती आकाशवाणी की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। आकाशवाणी भोपाल से हिंदी, उर्दू अथवा सिंधी भाषा में रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग के लिए इच्छुक आवेदक ईमेल bhopal@prasarbharti.gov.in और दूसरी ईमेल है hopeairbhopal@gmail.com। इन दोनों ईमेल पर से किसी पर भी आप अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। सूचना समाप्त हुई।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी और

0: एशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
2: ओडिशा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से ओडिशा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
0: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

0: गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डी के शिव कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में एक महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
4: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको हो रही है।
3: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
5: लगभग 1 साल ले रहा हूँ, तो सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
3: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in।

0: Frederiksen on assuming office as the Prime Minister of Denmark for a remarkable third consecutive term. In a social media post, Mr. Modi said India and Denmark share an enduring partnership founded on mutual trust, shared values and a common commitment to a sustainable future. The Prime Minister said he is looking forward to working closely with Mr. Frederiksen to further strengthen the India-Denmark Green Strategic Partnership and take the cooperation to new heights for the benefit of the people of both countries. United States Ambassador to India Sergio Gore has said 99% of the proposed India-US interim trade agreement has been finalized and both sides are working to resolve the remaining issues. Speaking at the CTE 2026 India conference in Mumbai today, Mr. Gore expressed confidence that the agreement could be concluded within the next few weeks. The Iran conflict has entered a severe new phase of escalation as Iranian ballistic missiles and drones struck U.S. military bases across Kuwait and Bahrain in the early hours today. A drone strike broke through Kuwait's air defenses and hit the main passenger terminal at Kuwait International Airport, killing one Indian national and injuring 63 others. Injuries ranged from blast wounds and amputations to head trauma and cerebral hemorrhages. The Indian Embassy in Kuwait confirmed the death of one of its nationals in the attack, expressing its deepest condolences to the bereaved family and saying the mission is closely coordinating with Kuwaiti authorities to provide all possible support. The India Meteorological Department has issued an orange warning for heavy rainfall over Keralam and Mahe tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Uttarakhand, parts of northeastern India, West Bengal, Karnataka, Konkan, Goa, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep during the next 2 days. In badminton, India's Ayush Shetty advanced to the second round of the Indonesia Open Super 1000 with a comeback win over China's Wang Hongyang, 8-21, 22-20, 21-15. India also secured a mixed doubles victory as Rohan Kapoor and Ritwik Agarde defeated Chinese Taipei's Yang Po Huan and Hu Lingfang. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. Also gives nod to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Ritubrata Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal and West Bengal Legislative Assembly. Congress leader D.K. Sivakumar sworn in as 25th Chief Minister of Karnataka. Dr. G. Parameshwar becomes Deputy Chief Minister, while 12 legislators also take oath as Cabinet Ministers. Massive fire in Malviya Nagar in Delhi claims 21 lives. And in badminton, India's Ayush Shetty enters second round of Indonesia Open Super 1000. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। मरकजी काबीना ने भारतीय एयरलाइन कंपनियों की मदद के लिए एटीएफ की कीमतों को मुस्तहकम करने की खातिर 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उसने दिल्ली एनसीआर इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने की खातिर कौमी राजधानी खित्ता मंसूबाबंदी बोर्ड को भी मंजूरी दी है। पार्टी से निकाले गए तृणमूल कांग्रेस के रुकन असेंबली ऋतुव्रता बनर्जी को मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली में अपोजिशन का रहनुमा मुकर्रर किया गया है। कांग्रेस के लीडर डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें वजीर आला की हैसियत से हलफ ले लिया है। डॉक्टर जी परमेश्वर नायब वजीर आला बने हैं, जबकि 12 लेजिस्लेचर ने काबीनी वजरा की हैसियत से भी हलफ लिया है। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में आग लगने के एक बड़े हादसे में 21 अफराद की जान चली गई है। पुलिस ने गैर इरादतन कत्ल के इल्जाम के तहत एफआईआर दर्ज की है। मौसमियात के महकमे ने कल केरलम और माहे में बहुत शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। और बैडमिंटन में भारत के आयुष शेट्टी चीन के वैंग होंगयांग को हराकर इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने तेल मार्केटिंग कंपनियों के लिए एक मरतबा दी जाने वाली बजट इमदाद के तहत 10,000 करोड़ रुपए की रकम को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद भारतीय एयरलाइन कंपनियों को उनकी घरेलू और बैन अलाक्वामी परवाजों के लिए हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतों को मुस्तहकम रखने में मदद फराहम करना है। मगरबी एशिया कशीदगी के सबब ईंधन की कीमत में पैदा होने वाले गैर मामूली अदम इस्तेहकाम के दौरान ये मदद एयरलाइन कंपनियों को एटीएफ की कीमतों को मुस्तहकम करने में मदद की खातिर फराहम की जाएगी। नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए इत्तलातो नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि ये अपने आप में काफी फंड है जो भारतीय तैयारा बरदार कंपनियों को हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतों को मुस्तहकम रखने में मदद फराहम करेगा।
2: एटीएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। एटीएफ प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल एटीएफ प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
1: मरकजी काबीना ने 9,585 करोड़ रुपए की माली अखराजात के साथ दिल्ली एनसीआर इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को तब्दील करने की खातिर कौमी राजधानी खित्ते से मुतालिक मंसूबा बंदी बोर्ड की मदद के लिए एक स्कीम को भी मंजूरी दी है।
3: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने उड़ीसा के रामेश्वर से पारादीप तक एक नई साहिली शाहरा की तामीर की भी मंजूरी दी है जिसकी कुल लंबाई 163 किलोमीटर से ज्यादा है। मगरबी बंगाल में अहम सियासी वाक़े के तहत रीता ब्रता बनर्जी को मगरबी बंगाल कानून साज असम्बली में अपोजिशन का लीडर मुकर्रर किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के लेजिस्लेचर के एक बागी ग्रुप को एक अलहदा कानून साज पार्टी के तौर पर असेंबली के स्पीकर की जानिब से तस्लीम किए जाने के बाद ये तकरीरी सामने आई है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: रीता ब्रता जो सीपीआईएम के राज्यसभा के साबिक रुकन पार्लियामेंट हैं, वो बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए और उन्हें तकरीबन 60 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल है जो पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों के कानून के तहत जरूरी दो तिहाई से ज्यादा है। ममता बनर्जी के ग्रुप ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को ओपोजिशन का लीडर नामजद किया था। स्पीकर से मीटिंग के बाद नामा निगारों से बात करते हुए रीताब्रता बंदोपाध्याय ने दावा किया है कि बागी लेजिस्लेचर्स ने अब ऐवान में हकीकी और असल ओपोजिशन तश्कील दी है। उन्होंने कहा कि उनका ग्रुप एक तामीरी ओपोजिशन का किरदार अदा करेगा और जब जरूरत होगी हुकूमत की हिमायत करेगा, लेकिन जिन पॉलिसियों की वो मुखालफत करेगा उन पर साबित कदम रहेगा। तृणमूल कांग्रेस के दरमियान शदीद सियासी बहरान के तहत ये वाकया सामने आया है जिसे हालिया असेंबली इंतखाबात के बाद अंदरूनी बगावत का सामना है। पार्टी ने इससे पहले अरकान असेंबली रीताब्रता बंदोपाध्याय और संदीपन साहा को मुबैना तौर पर पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों की बिना पर पार्टी से निकाल दिया था। सियासी माहिरीन इस वाकये को जब से वो इख्तदार में आई हैं उस वक्त से ममता बनर्जी की क्यादत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज करार दे रहे हैं। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: कर्नाटक में कांग्रेस के सीनियर लीडर डी के शिव कुमार को रियासत के 25वें वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया है। गवर्नर थावरचंद गहलोत ने उन्हें ओहदे का हलफ दिलाया। डॉक्टर बी परमेश्वर जिन्होंने सिद्धरमैया काबीना में दाखिली उमूर के फराइज अंजाम दिए थे, उन्हें नायब वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया। 12 कानून साजों ने भी काबीना वुजरा के तौर पर हलफ लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डी के शिव कुमार को वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाए जाने पर मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने उनकी मुद्दत कार के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आज सुबह मालवीय नगर के एक होटल में भयानक आग लगने के वाकये में गैर मुल्की शहरियों समेत 21 अफराद हलाक हो गए जबकि 40 दीगर को बचा लिया गया। जुनूबी दिल्ली के DCP अनंत मित्तल ने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है और जख्मियों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है। अभी 26 अफराद जेरे इलाज हैं। 10 पुलिस एहलकारों को भी आग में फंसे हुए अफराद को बचाने की कार्रवाई के दौरान सांस लेने में दुश्वारी के सबब अस्पताल में दाखिल कराया गया। दिल्ली पुलिस ने गैर इरादतन कत्ल के इल्जाम के तहत FIR दर्ज की है। पेश है एक रिपोर्ट।
5: दिल्ली पुलिस ने जुनूबी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक होटल में भयानक आग लगने के वाकये में गैर इरादतन कत्ल के इल्जाम के तहत FIR दर्ज की है। इस सानहे में कम से कम 21 अफराद हलाक हो गए। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने वाकये की छानबीन का हुक्म जारी किया है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू ने कहा है कि DM, DCP और MCD के डिप्टी कमिश्नर की मुश्तरका कयादत में कल से एक माह के दौरान आग लगने की रोकथाम पर अमल आवरी से मुतालिक मुआयने, ऑडिट्स और अदम तामील की सूरत में सीलिंग की कार्रवाई करने के लिए होटल्स, गेस्ट हाउसों, नर्सिंग होम्स, कोचिंग सेंटर्स और दीगर मराकज के मुआयने की मुहिम शुरू की जाएगी। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधा कृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आग लगने के सानहे में हुए जानी नुकसान पर रंजो अफसोस का इजहार किया है। छत्तीसगढ़ में शहरी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात के वोटों की गिनती कल होगी। 3 महलों में हुए पंचायती इंतखाबात के नतीजे का ऐलान भी कल ही होगा। शहरी बल्दियाती इदारों के आम और जिमनी इंतखाबात और 3 महलों में हुए पंचायती इंतखाबात पिछले पीर को हुए थे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की गुज़श्ता 12 साल के दौरान दूर अंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के तहत भारत में खातिर ख्वाह तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और जवानों के फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की तरफ से किए गए इकदामात के बारे में एक खुसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम भारतीय मुतवस्सित तबके को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए इकदामात के बारे में बात करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
6: गुज़श्ता 12 बरसों में हुकूमत ने वसी असलाहत के जरिए भारतीय मुतवस्सित तबके को बाइख्तियार बनाया है। टैक्स निजाम को सहल बनाया, बैंक कार्य को मुस्तहकम बनाया और पेंशन निजाम ने इस तबके के माली तहफ्फुज को मजीद बेहतर बनाया है। नए टैक्स निजाम के तहत 12 लाख रुपए सालाना की आमदनी वाले अफराद को टैक्स से मुस्तस्ना रखा गया है। इसके अलावा GST में इस्लाहात के जरिए रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में कमी आई है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी स्कीम के तहत करोड़ों अफराद की जिंदगी में नुमाया तब्दीली आई है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने कहा कि इस स्कीम से किराए पर रहने वाले अफराद को नुमाया राहत मिली है।
7: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं।
6: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 हेल्थ कार्ड जारी किए गए जिससे आम लोगों को हिफ्जाने सेहत के शोबे में तहफ्फुज फराहम किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना स्कीम के तहत जन औषधि केंद्रों पर मयारी जेनरिक दवाएं 50-80% कम कीमतों पर दस्तयाब हैं। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए बिहार के ब्रह्मदेव ने कहा कि इन केंद्रों पर आम दुकानों के मुकाबले दवाएं निहायत ही किफायती कीमतों पर दस्तयाब हैं।
8: लगभग 1 साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, तो सस्ती दवाई मिलती है। डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
6: 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी आम आदमी को बाख्तियार बनाने के अमल में एक मजबूत अवामिल साबित हुई है। इस स्कीम के तहत अहल मुस्तफिदीन को अब तक 40 लाख करोड़ रुपए के कर्जे तकसीम किए जा चुके हैं। जैसे जैसे आमदनी में इजाफा हो रहा है और मौके वसी हो रहे हैं, भारतीय मुतवस्सित तबका मुल्क की तरक्की, उमंग और खुशहाल मुस्तकबिल में फाल रोल अदा कर रहा है। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शबाना बेगम।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क के वजीर आजम के तौर पर लगातार 3री बार ओहदा संभालने पर मेटे फ्रेडरिक्सन को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भारत और डेनमार्क के दरमियान बाहमी एतमाद मुश्तरका अकदार और पायदार मुस्तकबिल के मुश्तरका अज़्म पर मबनी शराकत दारी है। वजीर आजम ने कहा कि वो भारत डेनमार्क ग्रीन कलीदी शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए जनाब फ्रेडरिकसन के साथ करीबी तौर पर मिलकर काम करने के मुंतजर हैं। लाओस के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा थोंग सावन फोम विहाने ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान सदर जमहूरिया ने कहा कि दोनों ममालिक के दहरीना सकाफती ताल्लुकात हैं जो बुद्ध मत के मुश्तरका विरसे और रामायण से जाहिर होते हैं। उन्होंने कहा कि सिफारती ताल्लुकात के क्याम के 70वें सालगिरह का जश्न भारत लाओस दोतरफा ताल्लुकात में एक अहम संगे मील है। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेलसी एलियोना रॉड्रिग्स कोम्स भारत के 5 रोजा दौरे के लिए नई दिल्ली पहुंच गई हैं। उमूर खारजा इकतसादियात और खजाना के वजरा और दीगर हुकाम पर मुश्तमिल एक वफ भी उनके हमरा भारत तशरीफ लाया है। दौरे के दौरान मोहतरमा रॉड्रिग्स वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दोतरफा तबादले ख्याल करेंगी। इस तबादले ख्याल में भारत वेनेजुएला ताल्लुकात के वसी तर पहलुओं का जायजा और तवानाई के तहफ्फुज़ तजारत सरमायाकारी दवासाजी हिफ्ज़ान सेहत नकलो हमल और काबिले तजदीद तवानाई के शोबों में मजीद तावुन के लिए राह हमवार करना शामिल है। भारतीय कंपनियों ने श्रीलंका के बुनियादी ढांचे और तवानाई के शोबे में अहम कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं जिससे दोनों पड़ोसी मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए इक्तिसादी तालमेल की अक्कासी होती है। लंका आईओसी पीएलसी ने सापू गासकांडा पावर स्टेशन के प्लांट ए फॉर 2026-27 के लिए 3,16,000 लीटर लुब्रिकेटिंग ऑयल सप्लाई करने का 392.47 मिलियन श्रीलंकाई रुपए की मालियत का ठेका हासिल किया है। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने केरलम और माहे में बहुत तेज बारिश के पेश नजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड शिमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों मगरबी बंगाल कर्नाटक कोंकण गोवा तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकल अंडमान और निकोबार जजायर और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन के दौरान बहुत तेज बारिश की पेशगोई है। महकमे ने मशरकी राजस्थान हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख गिलगित बल्तिस्तान मुजफ्फराबाद में कल गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी आयुष शेट्टी इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। उन्होंने चीन के वैंग होंगयांग को हराकर शानदार वापसी की है। मिक्स डबल्स मुकाबले में भी भारत के रोहन कपूर और ऋत्विका गाडे की जोड़ी ने चीनी ताइपे की जोड़ी को हराकर एक और जीत दर्ज की है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने भारतीय एयरलाइन कंपनियों की मदद के लिए एटीएफ की कीमतों को मुस्तहकम करने की खातिर 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उसने दिल्ली एनसीआर इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने की खातिर कौमी राजधानी खत्ता मनसूबा बंदी बोर्ड को भी मंजूरी दी है। पार्टी से निकाले गए तृणमूल कांग्रेस के रुकन असेंबली रीता प्रताप बनर्जी को मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली में अपोजिशन का रहनुमा मुकर्रर किया गया है। कांग्रेस के लीडर डीके शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। डॉक्टर जी राम परमेश्वर नायब वजीर आला बने हैं जबकि 12 लेजिस्लेचर ने काबीनी वजरा की हैसियत से हलफ लिया। दिल्ली के मालविया नगर इलाके में आग लगने के एक बड़े हादसे में 21 अफराद की जान चली गई। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Caraccia Kavşehri. ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है मॉनसून पूर्वानुमान, कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर जेपीएस दबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: जब तपती धरती की दरारें आसमान की ओर उम्मीद से देखती हैं, जब किसान की निगाहें खेत से ज्यादा क्षितिज पर टिक जाती हैं, जब गांव की चौपाल से लेकर देश के बाजार तक एक ही सवाल गूंजने लगता है, मॉनसून कब आएगा, तब ये सिर्फ मौसम का इंतजार नहीं होता, ये इंतजार होता है नई फसल का, नए अवसरों का, नई उम्मीदों का। भारत में मॉनसून महज बारिश नहीं है, ये खेतों की धड़कन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है और करोड़ों लोगों के सपनों का आधार है। इसकी चाल तय करती है कि खेतों में कितनी हरियाली होगी, गांव में कितनी खुशहाली होगी और अर्थव्यवस्था की रफ्तार कितनी तेज होगी। यही वजह है कि मॉनसून का हर पूर्वानुमान केवल मौसम विज्ञान का विषय नहीं, बल्कि कृषि, ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत बन जाता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, मॉनसून का पूर्वानुमान, कृषि, ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। हमारे साथ हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जेपीएस दबास। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि इस वर्ष का मानसून क्या संदेश लेकर आ रहा है, किसानों के लिए इसमें क्या संभावनाएं हैं और ग्रामीण भारत और अर्थव्यवस्था पर इसके क्या दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अखिल जी आपके साथ, आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस साल मौसम विभाग ने जो मॉनसून का पूर्वानुमान जारी किया है उसमें डायनेमिक और सांख्यिकीय मॉडल के क्या संकेत हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमारी पूर्वानुमान तकनीक भी बदली है और उसमें बहुत ज्यादा एफिशिएंसी भी देखने को मिली है।
3: जो भारत मौसम विज्ञान विभाग जो नॉर्मल फोरकास्ट को हम बोलते हैं, जो मॉनसून की वर्षा के लिए फोरकास्ट जारी करता है, इसके लिए अब भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है पिछले कुछ वर्षों से एक डायनेमिक जो है मॉडल का उपयोग कर रहा है। इसमें स्टैटिस्टिकल यानी कि सांख्यिकीय से संबंधित जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसके साथ साथ जो डायनेमिकल मॉडल्स होते हैं क्लाइमेट के वो भी रन किए जाते हैं। फिर उन दोनों को आधार बना करके जो वर्षा का क्या रेंज रह सकता है आने वाले मॉनसून के सीजन के दौरान, ऋतु के दौरान, उसको वह फिर जारी किया जाता है। तो अभी अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों से अगर आप उसके डेटा को भी देखेंगे तो जो ये मॉनसून का जो पूर्वानुमान जा रहा है यानी कि फोरकास्ट में जो एक्यूरेसी है उसमें भी काफी जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफी बेहतर हुई।
1: जी डॉक्टर दबास, चूंकि आप कृषि वैज्ञानिक हैं और जब आप बोलते हैं तो भारत के किसान बहुत गौर से सुनते हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान को देखते हुए इस खरीफ के मौसम में किसानों को किस तरह की फसल योजना अपनानी चाहिए, या कम पानी वाली या जल्दी पकने वाली किस्मों पर ध्यान देना उन्हें चाहिए।
2: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बार हमें उम्मीद है कि उत्तरी वर्षा कम है, 10% के करीब कम बता रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, क्योंकि फसल जो है पानी से ज्यादा जरूरी है कौन कौन सी स्टेज पे उसको कोई सूखा ना पड़े, तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जहां तक हमारी कृषि विज्ञान का सवाल है, इस समय हमारे पास 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र हैं, लगभग 80 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं और आईसीएआर इंस्टीट्यूट हैं जो कि किसानों को गाइड करने के लिए और भारत सरकार की तरफ से किसान कॉल सेंटर 24/7 काम कर रहा है। हमारे पास ऐसी किस्में हैं जो कम पानी में तैयार हो जाती हैं, हमारे पास कुछ ऐसी विधियां हैं जिसमें कम पानी लगता है और पैदावार अच्छी मिलती है, और साथ साथ में हमारे जो किसान है उसको हमें शिक्षित करना है कि जो भी पानी जमीन पे गिरे उसमें कम से कम रन ऑफ से मतलब फ्लड के तौर में बहे, ज्यादा से ज्यादा पानी हमारी जमीन मिट्टी के अंदर जाए और उसका सदुपयोग कर पाए, और पानी जो फसल को होता है उसके साथ साथ में उससे फसलों के बहुत सारे दुश्मन है जो उस पानी को चुराने की कोशिश करते हैं, इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है खरपतवारों का। तो अगर हम हमारी जो कृषि क्रिया ऐसे करेंगे जिससे कि पानी की भी बचत हो, खरपतवार का नियंत्रण हो, तो ये जो 10% पानी की जो वर्षा इस बार हमें कम पूर्वानुमान है, इसके बावजूद भी हम खरीफ के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि बीज के साथ साथ हमें एक तो जितने भी हमारे पास देसी खाद हैं, खासकर चाहे कुरडी का खाद हो, चाहे हमारे पास वर्मी कम्पोस्ट हो, चाहे बायोगैस की सलरी हो, अगर बायोगैस की सलरी और वर्मी कम्पोस्ट है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये खाद न केवल हमारी फसलों को पोषण देते हैं बल्कि हमारी जमीन की जलधारण क्षमता को बढ़ाते हैं और साथ साथ में बरसात से पहले ही हमें अपने खेतों की जुताई भी करनी है और जुताई करने के साथ साथ में उसकी मेड़बंदी को मजबूत करना है कि जो भी बूंद गिरे वो या तो हमारे खेत में मिट्टी में नीचे जाए जमीन के अंदर जाए या हमारी फसल को मिले और कम से कम जो पानी का ह्रास जो है वो रनऑफ के तौर पे हो या खरपतवार ले पाए तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। दूसरी ध्यान रखने वाली बात होती है जो भी हम फसल लेते हैं उसमें कुछ क्रिटिकल अवस्थाएं होती हैं जिसमें हमारे किसानों को जो भी बरसात का पानी होता है वो इकट्ठा करके उसमें अगर हम उपयोग कर पाते हैं तो उसके बावजूद भी हम अपना फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारा जो कृषि विज्ञान तंत्र है और साथ साथ में जो हमारा मौसम विभाग है ये जब दोनों मिलकर क्योंकि काम कर रहे हैं इस समय मौसम विभाग की तरफ से हर आईसर इंस्टीट्यूट को हर कृषि विज्ञान केंद्रों को काफी सूचना जाती है कि हफ्ते में के दो दिन बाद मंगलवार को शुक्रवार को कि नेक्स्ट 5 डे कैसा मौसम रहने वाला है क्या पूर्वानुमान है उसी के आधार पे हमारे कृषि वैज्ञानिक हर एक सब्जेक्ट के बैठते हैं और वो बताते हैं कि हमारे किसानों को कौन सा बीज बोना है कब बोना है कैसे बोना है बीज की ट्रीटमेंट किससे करना उपचार कैसे करना है और हमें इस हालात से निपटने के लिए हमारे साथ में हमारा जो प्रसार तंत्र है खासकर हमारा दूरदर्शन मास मीडिया है और हमारे ऑल इंडिया रेडियो है और साथ में दूसरी जो चीजें हैं वो भी किसानों को एजुकेट करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम इसका लाभ उठाएंगे हम इससे किसी तरह हरास नहीं होने देंगे और इस विपरीत परिस्थिति को भी हम एक अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़े उत्पाद की गुणवत्ता भी बेटर हो हम कीड़े मकोड़े बीमारियों का भी ठीक से प्रबंध कर पाए और साथ साथ में हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हुए हर बूंद का सदुपयोग करके अधिक से अधिक अन्न सब्जी फल और सभी फूल और सभी चीजें उगाएं।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव आपसे ये समझना चाहेंगे कि अक्सर देखा जाता है कि देश में सामान्य मानसून का औसत तो ठीक रहता है लेकिन कुछ राज्यों में सूखा और कुछ में बाढ़ आ जाती है इस बार वर्षा के जो स्थानिक वितरण को लेकर मौसम विभाग का क्या आकलन है?
3: मॉनसून जो है वो हर साल एक नई तरह की परिस्थिति को लेकर के आता है तो इस वर्ष भी जो मॉनसून में जो वर्षा है पूर्वानुमान दिया गया है उसके अनुसार वो करीब करीब 90% रहने की संभावना है जो लॉन्ग टर्म एवरेज है यानी दीर्घावधि औसत का जिसमें प्लस माइनस 4% की कमी हो सकती है। अब ये जो वर्षा का पूर्वानुमान किया गया है ये अगले 4 महीनों के लिए जो है वो किया गया है यानी कि जून से लेकर के सितंबर तक का। अब इसमें ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि जैसे आपने अभी बताया कि कुछ राज्यों में जो मानसून की वर्षा है वो कम हो सकती है कुछ राज्यों में ज्यादा हो सकती है। इसमें अभी तक का जो स्थानिक जो हमारा प्रण है पूर्वानुमान का उसमें ये है कि जो पूर्वोत्तर राज्य है यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहां पर जो वर्षा है वो करीब करीब सामान्य रहने की संभावना है उत्तर पूर्व भारत में यानी कि जो लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी दीर्घावधि औसत का 94 से 106% तक की रेंज में वर्षा हो सकती है। वही मध्य भारत में और दक्षिण पूर्वी भारत में 94% जो है दीर्घावधि औसत का उससे कम वर्षा रहने की संभावना है उत्तर पश्चिम भारत में 92% यानी कि 92% से कम वर्षा रहने की संभावना है यानी कि वर्षा जो है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है। हालांकि इसमें ये भी जरूरत समझने की बात है कि ये जो वर्षा है ये बहुत ही इवन तरीके से चारों महीनों में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहती है कभी किसी समय में ज्यादा वर्षा मिल जाती है इसके कई बार फ्लड की सिचुएशन देखने को मिलती है कई बार मौसम ब्रेक कंडीशन भी आती है जब वर्षा काफी घट जाती है तो इसके लिए भारत मौसम विभाग लगातार पूर्वानुमान देता रहता है। इसमें जैसे कृषि के लिए अगर हम बात करें तो सप्ताह में 2 बार अगले 5 दिनों का विवरण दिया जाता है इसके साथ साथ हर बृहस्पतिवार को बारिश से संबंधित एक्सटेंडेड रेन फोरकास्ट जारी किया जाता है इसमें अगले 4 हफ्तों के लिए सप्ताहवार यानी कि हर सप्ताह में कैसा वर्षा रह सकती है उसका भी पूर्वानुमान जारी किया जाता है। इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि इसमें जो हमारा मुख्य रूप से जो मॉनसून कोर जोन है यानी कि वो क्षेत्र जो कि ज्यादातर मौसमी वर्षा पर जो निर्भर करता है कृषि के लिए वहां पर जो है वर्षा का पूर्वानुमान भी जो हमारे अभी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है उसमें सामान्य से कम वर्षा की संभावना जो है वो दर्शाई गई है। तो इसको देखते हुए जो मौसम की जो पूर्वानुमान किए जा रहे हैं स्थानिक स्तर पर भी और डिफरेंट टाइम फ्रेम के लिए यानी कि जो हर दिन दैनिक रूप में पूर्वानुमान किए जाते हैं इसके साथ साथ में जो एक्सटेंडेड रेंज यानी कि विस्तारित रेंज का जो पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग करता है उसका भी बहुत अच्छे से उपयोग होना बहुत जरूरी है ताकि बहुत कुशल रूप से जो ये प्रिपरेटरी चीजें हैं उनको मैनेज किया सके एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजों को मैनेज किया जाए।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर डबास, आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि जहां पर कम बारिश होने की आशंका जताई जा रही है वहां किसान किस तरीके से अपनी फसल का ध्यान रखें, और जैसा कि अभी डॉक्टर श्रीवास्तव बता रहे हैं कि कुछ राज्यों में ज्यादा बारिश की भी संभावना है। यदि मानसून के दौरान अचानक बहुत भारी बारिश होती है तो जल भराव से फसलों को बचाने के लिए किसानों को कौन से बुनियादी वैज्ञानिक उपाय पहले से कर लेने चाहिए?
2: हमारे जो किसान है वो हमें क्षेत्र वाइज हमको बात करते हैं, जैसे राजस्थान पूरा एरिया है, इसमें हम लोगों ने बहुत किसानों को आगाह किया हुआ कि उन्होंने खेतों पे टैंक बना रखे, तालाब बना रखे हैं, उनकी कोशिश होती जो भी ज्यादा बारिश हो उसको टैंक में जाए। और इसी तरह से हमारे पूरे देश में सभी नदियों पे बांध बने हुए हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि अपने आवश्यकता के अनुसार पानी को इकट्ठा रखें और पानी को पूरा, कितना हमारे पास पानी है, कितने आगे बारिश होने वाली है, कितना भी छोड़ना है, तो ये बैराज से हम लोग नियंत्रण करने की कोशिश सरकार करती है। और इसी का फायदा उठा के किसानों को भी हम गाइड करते हैं कि जिन क्षेत्रों में अधिक बारिश होने वाली है वहां पे हम धान की फसल या जो फसलें ज्यादा पानी चाहिए उसका रिकमेंड करते हैं। और ये भी हम किसान को आगाह करते हैं कि जो पानी खेत से निकालना है, क्योंकि जल निकासी भी बहुत जरूरी है, अगर हमें फसल अच्छी लेनी है और बरसात ज्यादा है तो वहां पे जल निकासी का भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब जल निकासी किसान करे तो इस आधार पे करे कि उसकी जो उपजाऊ मिट्टी भी ना जाए, फसल को नुकसान ना हो, और मौसम विभाग को ध्यान में रखते हुए इन बातों के, क्योंकि किसान की जितनी भी कृषि क्रियाएं आगे जो पूरे चार मानसून के जो महीने रहेंगे वो हम लोग हर वीक में दो बार बताते हैं किसानों को, और सभी कृषि विज्ञान केंद्र भी और सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी, हम ये बताना चाहते हैं अगर बरसात की संभावना है तो उसमें किसान को क्या करना है, क्या नहीं करना है और कौन सी विधि अपनानी है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा धान का ही, अगर धान की सब क्षेत्र नीचे हैं जिसमें पानी खड़ा होता है तो हमारे पास धान के अलग अलग किस्में हैं जो अलग अलग ऊंचाई में भी और पानी को भी सहन कर सकती हैं। अगर बरसात कम हो रही है लेकिन हमें धान फिर भी पैदा करना है, खासकर नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट में जहाँ क्योंकि बासमती का हमारा एक्सपोर्ट लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा का है और इसमें हमें लगातार पैसा मिलता है और हमारा देश बासमती के नाम से काफी जाना भी जाता है, तो बासमती के में भी हमें एक तो डायरेक्ट सीडिंग के लिए बहुत सारी नई किस्में निकाली हैं जिसमें 35% पानी बचता है। इसी तरह से SRI विधि से भी अगर हम बासमती के चावल की खेती करते हैं तो 30-35% पानी बचता है और साथ में फसल भी अच्छी होती है, कीड़े बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी हम किसान को पहले से एजुकेट करके रखें जिससे कि किसान अपनी बचत करते हुए, और जहां पानी की संभावना बहुत कम है तो हम किसानों को कहेंगे धान जैसी फसल ना लगा के या तो मक्का लगाएं या मोटे अनाज लगाएं या दलहनी फसल लगाएं, लेकिन जो भी फसल लगाएं उनमें खरपतवार नियंत्रण और निराई गुड़ाई ये एक विशेष योगदान है, इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है क्योंकि खरपतवार तो पानी के साथ साथ में न्यूट्रिएंट भी चुराई करते हैं, मतलब किसान से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जो निराई गुड़ाई है वो एक फसल की जड़ों को एक ऐसा एटमोसफियर प्रदान करती है जिससे कि पौधे की जड़ें काफी ग्रोथ करती हैं और वो दूर तक के पानी के पूंछ खींच लेती है और पानी एकदम से सीधा वाष्पीकरण से उड़ता नहीं है बल्कि जमीन में बना रहता है। और कुछ क्रिटिकल अवस्थाओं पर हम किसानों को बार बार ध्यान देते हैं कि इस समय हमें पानी की वो विधि अडॉप्ट करनी है जैसे ड्रिप सिंचाई है या स्प्रिंकलर विधि है जहाँ पे हम कम पानी से भी ज्यादा लाभ उठा पाए, खासकर जब आपने दक्षिण भारत की बात या मध्य भारत की बात की जहाँ पे इस बार बारिश की थोड़ी संभावना कम लग रही है तो वहाँ पे हम किसानों को उस किस्म की सलाह देते हैं। तो हमारे जो कृषि वैज्ञानिक वो भी तैयार है, साथ साथ में भारत सरकार ने अभी लास्ट तो लगभग एक हफ्ता पहले ही एक मीटिंग ली है जिसमें सभी राज्यों के कृषि विभाग के जितने भी अधिकारी थे, साथ साथ में हमारी क्या योजना होनी चाहिए, हमारे पास कौन सी चीजों के कितने सीड हैं और किसान को सही समय पर सीड भी मिले, साथ साथ में उसके पास हमारे उर्वरक भी पहुंचे और किसान को सब सुविधाएं मिले, तो उसके लिए सरकार पहले से तत्पर होके ऑलरेडी कार्य योजना बना रही है। और इस समय जो हमारी कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR जो है ये पूरे देश में इस महीने को किसानों को एजुकेट करने के लिए यूज कर रही है और कृषि वैज्ञानिक गाँव में जा रहे हैं उनको एजुकेट कर रहे हैं, तो हमारी तैयारी पूरी है और वो हमारे प्रयास रहेगी किसानों को हम किस तरह से लागत को कम करने में मदद करें, कैसे पानी के संरक्षण में मदद करें, कैसे किसानों को तालाब और सब चीजों में गाइड करें, मल्चिंग इसमें एक बहुत बड़ा योगदान करती है।
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
2: तो उन सब चीजों को हम काफी जोर दे रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारा देश जो है तकनीकी तौर के तौर पे और उसमें हमारा सक्षम है और आप लोगों के सहयोग से हम बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, जब जलवायु परिवर्तन की हम बात करते हैं और जलवायु परिवर्तन के दौर में अल नीनो और ला नीना के जो संकेतक हैं वो तेजी से बदल रहे हैं, दो छोटे छोटे सवाल। पहले तो हमारे श्रोताओं के लिए अल नीनो और ला नीना को थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दें, और साथ ही उसी से जुड़ा एक सवाल यह है कि इस साल के मानसून पर इनका क्या और कितना असर देखने को मिल सकता है।
3: अगर हम एल नीनो को बहुत ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये एक तरह से ऐसी सिचुएशन होती है, ये इस तरह का सिचुएशन डेवलप होता है जो कि काफी दूर से ही भारतवर्ष के जो मौसम को प्रभावित कर सकता है। भारतवर्ष के कहे या अगर सौर ग्रह रूप में समझे तो ये पूरे ग्लोबल जो वेदर सिस्टम है, जो वेदर के इवेंट हो रहे होते हैं, उसको प्रभावित करता है। इसमें मुख्य रूप से अगर हम एलिनो की बात करते हैं तो जो प्रशांत महासागर, जो भूमध्य रेखा के पास का प्रशांत महासागर है, वहां पर जो समुद्र की सतह है उसमें जो टेम्परेचर है, उसका तापमान जो है उसका धीरे धीरे वो बढ़ जाता है, यानी कि वो असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। जब प्रशांत महासागर का जो भूमध्य रेखा के पास समुद्र सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं एल नीनो। और जब ये समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से ये ठंडा हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं ला नीना। तो ये जो दो इवेंट है ये एक तरह से प्राकृतिक इवेंट है जो कुछ सालों के बाद जो हमें देखने को मिलते रहते हैं। जब समुद्र का पानी गर्म हो जाता है भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर में, तो इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि जो हवाएं हैं, जो हवा की जो एक नेचुरल जो डायरेक्शन होता है उसमें इनका जो रुख होता है ये उसको बदलने का काम करता है। हवा जो भारत में जो मॉनसून को खींच के लाने वाली हवाएं हैं ये उनको कमजोर करने का एक तरह से कार्य करता है। इसलिए एल नीनो का बहुत असर जो है काफी हद तक भारत के मॉनसून पर देखा जाता है। इन जनरल अगर हम बात करें तो जब भी एल नीनो कंडीशन होती है तो भारत में जो वर्षा है उसमें जो कमी देखी जाती है। हालांकि कुछ वर्ष ऐसे भी देखे गए हैं जब एल नीनो के बावजूद भी काफी अच्छी वर्षा भारतवर्ष में देखने को मिली है। इसमें हमें यही समझने की जरूरत है कि जब ला नीना कंडीशन होती है तब भारतवर्ष में जो वर्षा है उसका जनरल ट्रेंड अगर देखें एक अगर जनरली हम बात करें उसके बारे में तो वो वर्षा के लिए सहायक सिद्ध होता है। जबकि एल नीनो कंडीशन यानी कि जब समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो वो वर्षा के लिए नेगेटिवली काम करता है, नकारात्मक रूप से उसको प्रभावित करता है। लेकिन जो मॉनसून सिस्टम है वो अपने आप में बहुत रहस्य सिस्टम है। इसमें सिर्फ एक फैक्टर का जो है यानी कि एक जो इवेंट है जैसे एल नीनो सिर्फ इसका ही असर नहीं होता है, बहुत सारे अन्य कारक हैं जो भारत के मॉनसून को प्रभावित करते हैं। जैसे कि इंडियन ओशन डायपोल यानी कि जो हमारा जो हिंद महासागर में जो डायपोल स्थिति बनती है उसका भी असर होता है कई बार। तो सिर्फ एक कारक से भारत के मॉनसून का जो है डायरेक्शन तय नहीं होता है, लेकिन एल नीनो को इन जनरल देखा जाता है तो ये एक काफी ज्यादा जो है प्रभाव डालता है भारत के मॉनसून के ऊपर। अगर हम बात करें 2026 की यानी कि जो आने वाले जो अभी मॉनसून का सीजन हमारा शुरू हो गया है लगभग, इसमें तो अभी जो एल नीनो की कंडीशन है वो अभी न्यूट्रल कंडीशन से एल नीनो की वीक कंडीशन की ओर जो है ट्रांजिशन चल रहा है, यानी कि मॉनसून के दौरान एल नीनो कंडीशन से डेवलप करने के गाइडेंस जो है सारे मॉडल दिखा रहे हैं और यही पूर्वानुमान भी दिया गया है। यानी कि मॉनसून के दौरान एल नीनो कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है। प्रशांत महासागर में समुद्र के जो सतह तापमान है वह असामान्य रूप से गर्म होगा जो कि हवाओं के रुख को निर्धारित तौर पर प्रभावित करेगा और हम इसका असर भी मौसम की जो मॉनसून की जो वर्षा है इसमें भी हमें देखने को मिल सकता है। और इसी को देखते हुए यही कारक रहा है कि जो वर्षा का पूर्वानुमान है वो बिलो नॉर्मल यानी कि सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान में इसकी बहुत बड़ा योगदान रहा।
1: जी डॉक्टर डबास, उन किसानों के लिए आप क्या कहेंगे जहां पर जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचयन को लेकर कुछ किसान काफी सजग रहते हैं, उन किसानों को किन व्यवहारिक उपायों पर ध्यान देना चाहिए?
2: ये जो हमारे किसान हैं जिनके पास में जल सिंचाई की बहुत अच्छी विधियां हैं और साथ साथ में सजग हैं, इनको मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले तो एक अच्छी किस्म का चुनाव करना है, बीज का सही समय से प्रबंध करना है। प्रबंध करने के बाद में हमारे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि कुछ पोषक तत्व तो वैसे होते हैं जो हमारी फसल को सूखे से लड़ने की भी ताकत देते हैं और उसकी जड़ों के विकास को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जिससे कि उसको फायदा होता है। तो एक संतुलित मात्रा में खाद का उपयोग करना है, उसमें केवल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ही नहीं करने, साथ साथ में फास्फोरस, पोटास और दूसरी चीजों का भी देख करना है। और जो सरकार ने हमें एक योजना दी है सॉयल टेस्टिंग की, उसके आधार पर अगर खाद का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद आती है कि हमें किस्म का चुनाव, क्योंकि इस समय हमें उस किस्म का चुनाव करना है जो जल्दी पक के तैयार हो, जिसका अनाज भी अच्छा हो, साथ साथ में कम पानी ले। हमें विधि भी वो चुननी है कि उसका प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन हो। कई बार हम जब बुआई करते हैं तो बीज की मात्रा ज्यादा होती है लेकिन पौधे काफी सघन हो जाते हैं, तो हमें अगर पौधों की संख्या सही रखेंगे तो कम पानी में हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। और साथ साथ में खरपतवारों का प्रबंध बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान ले करता है क्योंकि खरपतवार काफी मात्रा में बीमारी भी फैलाते हैं, कीड़े भी फैलाते हैं, साथ साथ में पानी का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो अगर हम खरपतवारों का प्रबंध कर लेते हैं उससे भी बहुत बड़े पानी की बचत होती है और साथ साथ में हमारी मिट्टी का अच्छा रहता है। और निराई गुड़ाई समय पर होना बहुत ही जरूरी है। और इसके साथ साथ में हमें जो पानी हमारे पास है वो सही टाइम है। मोस्टली अगर आपके पास अपनी इरिगेशन फैसिलिटी है तो पानी का सुबह और शाम इस्तेमाल करना है, और क्रिटिकल स्टेज पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि बाली निकलनी है, बाली आने वाली है, उग रहा है या फुटाव चल रहा है। और कई बार कुछ किसान भाई ज्यादा खेत में पानी खड़ा रखते हैं, उससे नुकसान भी होता है, खासकर धान की फसल में। तो अगर हम पानी सूखने दें और फिर पानी लगाएं तो उससे लगभग 30-35% पानी की बचत होती है और पैदावार भी अच्छी आती है, कीट और बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो मैं उन किसानों को ये कहना चाहूंगा कि उसका उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से मक्का की फसल में भी कुछ खास क्रिटिकल स्टेजेस होती है, उसका विशेष ध्यान रखना है, खासकर जब उसमें फुटाव हो, जब टेसल बने, उसमें फ्लावरिंग आए, तो उस समय पानी की कमी ना हो तो बहुत अच्छा रहता है। और खरपतवार प्रबंधन यहाँ भी करना है, और साथ साथ में मक्का के में कीट प्रबंधन पे भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आजकल एक फाल साथ निवार आ रहा है जो काफी नुकसान करता है। तो उसको हम समय से पहले अगर टैकल कर लेंगे तो हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। साथ साथ में जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक लगातार संपर्क में बने रहे, और जितना भी अधिक से अधिक मात्रा में देसी खाद का प्रयोग करेंगे उससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ेगी, और साथ साथ में मिट्टी का जब उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो हमारी फसल अच्छी पैदा होगी। तो वह हमें विशेष ध्यान रखना है और संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग करें, किसी भी हालत में घबराएं नहीं। और हमें अपने किसान पर पूरा विश्वास है कि किसान हमारा बहुत सक्षम है, सरकार की योजनाएं अच्छी हैं, और आपका जो विस्तार तंत्र है, खासकर मास मीडिया है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: और साथ में जो हमारे मौसम विभाग का जो सहयोग है, तो इसके सहयोग का, हम इसकी सूचनाओं का, जानकारी का उपयोग करते हुए मुझे लगता है कि हम स्थिति में बहुत अच्छी तरह से उभर के आएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे।
1: जी डॉक्टर श्रीवास्तव, एक और बड़ा बदलाव ये दिख रहा है कि अब कम दिनों में बहुत भारी बारिश, जिसे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स कहते हैं, वो हो जाती है, और शुष्क दिन यानी ड्राई स्पेल्स बढ़ रहे हैं। मौसम विज्ञान इस नए पैटर्न को कैसे देख रहा है?
3: तो इसमें हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जैसे जैसे धरती का एटमॉस्फेयर का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, तो इसके जो मॉइस्चर को होल्ड करने की, यानी कि ये कितनी अपने अंदर पानी को, हवा

0: वाटर वेपर की वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जब इस तरह के जो गर्म एनवायरनमेंट की कंडीशन होती है, ये लगातार कन्वेक्टिव एक्टिविटीज को, जो कि सडनली गर्मी की वजह से एकदम से क्लाउड डेवलपमेंट को और एसोसिएटेड उसके साथ में बहुत ही इंटेंस बारिश को जो है काफी ज्यादा सहायक होता है। और क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है एटमोसफेयर में, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं जहां पर बहुत सारी वर्षा एक बहुत ही सीमित समय में हो जाती है और उसके बाद में काफी कई दिनों तक फिर ड्राई स्पेल देखने को मिलता है, इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है। तो जैसे कि ये सब मौसम बदलाव हो रहे हैं, इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए ताकि जो भी ये वर्षा है, एक तो ये इकट्ठा इतनी वर्षा हो रही है, ये जो पानी जो हमें मिल रहा है इसका, ये रन ऑफ के जरिए इसका थोड़ा वेस्टेज ना हो और इसको हम सदुपयोग कर सके, तो इसका एकत्रित करने के लिए भी कुछ ना कुछ उपाय पहले से बनाया जा सके।
1: जी डॉक्टर डबास आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा मॉनसून ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को कैसे बढ़ाता है और इसका असर ट्रैक्टर, एफएमसीजी और अन्य उद्योगों पर कैसे पड़ता है।
2: जैसे ही किसान की आमदनी बढ़ती है, किसान को अच्छी फसल मिलती है, किसान पहले से तत्पर होता है क्योंकि उसको और आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, अपने सपने देखता है, तो सपनों में वो चाहता है कि उसके पास अच्छी मशीनरी होनी चाहिए, अच्छी तकनीकियां होनी चाहिए और आगे के मौसम को रक्षा करने के लिए उसके पास सभी संसाधन होने चाहिए, तो वो पैसा जो है बाजार में लगाता है, बाकी चीजें बाजार में नहीं लगती हैं। तो जब भी किसी का उत्पादन बढ़ता है, किसान को पैसे ज्यादा जाते हैं, तो आपके जितने भी ट्रैक्टर हैं या मशीनरी है या फार्म इक्विपमेंट है या सीड है या दूसरी चीजें हैं, और इसके साथ साथ में हमारे जो उपभोक्ता को भी अच्छी किस्म का भोजन मिलता है और जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है तो देश का नाम होता है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कोई कम से कम 20 साल से हमारी एक्सपोर्ट धान, बासमती धान में हम आप पूरे वर्ल्ड में एक बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं और इससे और भी अच्छा करने की संभावना है, क्योंकि किसान हमारा सक्षम है, हमारी खेती में भी जान है और गवर्नमेंट भी चाहती है, गवर्नमेंट ने काफी अच्छी परिस्थितियां बनाई है जिससे कि किसान एक्सपोर्ट कर सके, जो हमारे भारतीय किसान संगठन बने हैं, किसान उत्पादक संगठन बने हैं, वो भी इस तरफ आपकी आगे बढ़ रहे हैं और सरकार ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि कौन से जिले से कौन सा प्रोडक्ट की ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग हो सकती है, कैसे हम उसको जिले वो सक्षम कर सकते हैं। तो सरकार की जो योजनाएं हैं, किसान की मेहनत है और जो भी किसान का उत्पादन बढ़ता है वो सारा का सारा बाजार में आता है, जब बाजार में आता है तो पूरे देश में रौनक आती है। तो एक किसी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो भी पैसा गवर्नमेंट अलॉट करती है तो उसका फायदा सबसे ज्यादा होता है, ये हमारे जितने भी अर्थशास्त्री कृषि अर्थशास्त्री हैं उन्हें काफी प्रेजेंट किया गया, अगर हम कृषि में 1 रुपया खर्च करते हैं तो हमारी आमदनी और बाकी क्षेत्रों से कहीं ज्यादा होती है। तो इसको देखते हुए मैं कहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में सरकार को और अधिक ध्यान देने की जरूरत है और किसान को और अधिक सक्षम बनाने की जरूरत है, और साथ साथ में हमें ये देखना मंडी में भाव क्रैश ना करें। जब किसान कई बार मेहनत करता है, अच्छा उत्पादन लेता है, तो जब भाव क्रैश कर जाता है तो किसान टूट जाता है। तो सरकार को जब भाव अधिक होते हैं तो उसको तो कम करने की कोशिश करती है, लेकिन सरकार को ये भी कोशिश करनी है कि किसान को उत्पादन लागत से अधिक पैसा मिले, और ये खाली हमारी वो नहीं मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाली फसलें ही नहीं बल्कि जो सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं, क्योंकि देश को हर चीज की जरूरत पड़ती है, तो हमें सरकार को उस तरफ भी थोड़ा सजग होने की जरूरत है।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, दुनिया भर की तकनीकों पर चर्चा होती है, जब कोई भी नए गैजेट्स मार्केट में आते हैं तो हम चर्चा करते हैं कि अमेरिका में ये चल रहा है, यूरोप में ये चल रहा है, दुनिया के दूसरे देशों में ये चल रहा है। मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में आपसे समझना चाहेंगे कि दुनिया के अलग अलग देशों में किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और भारत ने पिछले 1 दशक में पूर्वानुमान की तकनीकों में किस तरह का बदलाव किया है और उसके क्या प्रभाव दिख रहे हैं, बहुत संक्षेप में।
0: जी देखिए, पहले तो भारत मौसम में अगर पूरे वैश्विक स्तर बात करें तो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है वो ऑब्जर्वेशन के क्षेत्र में हो रहा है। अभी जितने भी तरह तरह के मैकेनिज्म है जो मौसम को ऑब्जर्व करने के, उसमें काफी ज्यादा जो है वृद्धि हो रही है। इसको साथ साथ में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है एटमॉस्फेरिक प्रोसेस को लेकर के वातावरण में, एटमॉस्फेयर में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे न्यूमेरिकल मॉडल्स हैं जिनको हम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स पर रन करते हैं और हमें गाइडेंस मिलता है जिसके बेसिस पर हम लोग फोरकास्ट इशू करते हैं, तो इसमें भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। जहां तक बात है भारत मौसम विज्ञान विभाग की, तो पिछले 10 वर्षों में आप देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जर्विंग नेटवर्क है, ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है, बहुत ज्यादा उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। जो हमारे सैटेलाइट सिस्टम्स है उसमें बढ़ोतरी हुई है, बहुत उन्नत हुए हैं। साथ साथ में रडार है उसका कवरेज भी काफी बढ़ गया है। उसके जैसे जो ये अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जो काफी इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी को,

0: को भी ट्रैक करने में काफी ज्यादा रियल टाइम में मदद मिलती है। इसके साथ साथ जो मॉडल्स हैं, जो न्यूमेरिकल मॉडल्स हम लोग यहाँ रन कर रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में भी, और साथ साथ में जो अन्य संस्थान है भारत सरकार के, वहां पर भी वो जो मॉडल्स रन किए जा रहे हैं उसमें काफी ज्यादा रिजोल्यूशन में परिवर्तन हुए, इम्प्रूवमेंट हुआ है, और काफी हाई रिजोल्यूशन मॉडल जो फ्रेमवर्क है वो डेवलप किए गए हैं, और उनके बेसिस पे जो गाइडेंस मिल रही है उसको उपयोग करके पूर्वानुमान दिया जा रहा है। इसके साथ साथ में AI का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल अब शुरू हो गया है, और AI ML को यूज करके, यानी कि जो कृत्रिम जो इंटेलिजेंस है ये, इसका भी काफी भरपूर उपयोग किया जा रहा है ताकि पूर्वानुमान को और अधिक सटीक बनाया जा सके।
1: जी हाँ बिल्कुल, मॉनसून भारत के लिए केवल एक मौसम नहीं बल्कि जीवन, जीविका और विकास का आधार है। इसकी हर बूंद खेतों में अन्न, गांव में अवसर और अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा लेकर आती है। आज की चर्चा से ये साफ है कि मॉनसून का पूर्वानुमान केवल बारिश का अनुमान नहीं बल्कि कृषि उत्पादन, ग्रामीण रोजगार, बाजार की मांग और देश की आर्थिक गति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेतक है। साथ ही बदलती जलवायु परिस्थितियों में वैज्ञानिक पूर्वानुमान, आधुनिक कृषि तकनीकों और जल संरक्षण के उपायों का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। डॉक्टर श्रीवास्तव और डॉक्टर डबास, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे मॉनसून पूर्वानुमान कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और यूट्यूब चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: प्रस्तुत है नाटक अशोक वन का पेड़। लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं जगदीश अधिकारी।

0: बाबा।
1: हाँ
0: अरे ओ बाबा, ये पहाड़ी गांव क्या नाम, सिंगारपुर, वो किधर है?
1: सीधे भैया, बिल्कुल सीधे चले जाओ। वो जो अगली पहाड़ी पर सुंदर सी बस्ती है ना, वही है सिंगारपुर।
0: अच्छा, जो बिल्कुल सीधे।
1: हाँ
0: वो क्या है बाबा, शहर से नया आया हूं ना, इसलिए आपको तकलीफ दी।
1: सुनो बेटा, मेरी कुछ सहायता कर सकते हो?
0: सहायता? बाबा कैसी सहायता?
1: अरे वो वहां से थोड़ा सा पानी ले आना बेटा।
0: अच्छा, पीने के लिए पानी चाहिए आपको? अब मेरे पास है, आपको दे देता हूँ।
1: अरे नहीं नहीं बेटा, इस पौधे में डालने के लिए चाहिए।
0: अब बाबा ये आप ये जमीन क्यों खोद रहे हैं?
1: भाई इस पौधे को इस जमीन में उगाने के लिए।
0: ये लीजिए पानी।
1: गांव तो सीधा है बेटा, धीरे धीरे निकल जाओ, सिर पर धूप चढ़ने से पहले शायद गांव पहुंच जाओगे।
0: धन्यवाद बाबा। अच्छा बाबा एक बात बताइए, आप इस उम्र में भी?
1: उम्र उम्र तो कोई यही 70 साल होगी बेटा।
0: बाबा पर लगती तो कुछ ज्यादा है।
1: हाँ, सिर्फ कुछ साल और बाकी होंगे, जीना तो पड़ेगा ही बेटा।
0: हाँ बाबा कुछ साल या कुछ महीने भी तो हो सकते हैं।

0: बाबा, और फिर भी आप इस पौधे को उगाने के लिए बैठे हैं, भला क्यों?
1: अरे हाँ भाई, तभी तो ये पौधा मेरे सपनों का पेड़ बनेगा।
0: अब एक बात कहूँ बाबा?
1: हाँ हाँ
0: अब देखो बाबा, अब मैं आपका कोई करीबी रिश्तेदार तो हूँ नहीं जो आप पर हक जता सकूँ, पर हाँ आपका हितैषी जरूर हूँ। बस इसी नाते आपको एक राय देना चाहता
1: बोलो
0: हूँ।
1: बोलो।
0: अब बाबा छोड़ दीजिए ये पागलपन, अब इस उम्र में इससे आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है।
1: पागलपन?
0: हाँ बाबा, और वो भी इस उम्र में।
1: अरे पेड़ उगाना क्या पागलपन है बेटा, है?
0: तो बाबा और क्या कहा जा सकता है?
1: अरे ये भी तो सोचो भाई, आज अगर पेड़ लगाऊंगा तो कुछ एक सालों के बाद ये बड़ा होगा, अपने गोल गोल तनों और असंख्य शाखाओं के साथ, और फिर इसकी सुंदर सी नाजुक पत्तियां जाने कितनों को छाया देंगी। उसके कुछ एक दिनों बाद उस कोमल सी शाखा में एक नाजुक सा फूल खिलेगा, और उसके बाद फल, एक दो तीन चार पांच और
0: हाँ 6-7 बाबा, लेकिन उसके बाद?
1: पेड़ बड़ा होगा, बहुत बड़ा।
0: पर बाबा, बाबा तब तक आप मेरा मतलब बाबा, आप तब तक शायद ही जिंदा रहेंगे।
1: हाँ शायद।
0: तो बाबा फिर ये पेड़ क्यों लगा रहे हो आप, किसके लिए?
1: हाँ बेटा, हाँ वृद्ध हो गया हूं ना, और कुछ दिन या महीने के बाद शायद जिंदा ही ना रहूं। मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा, तो मैं कहाँ इस पेड़ का फल खा पाऊंगा या इसकी शांत सुंदर छाया में बैठ पाऊंगा। मैं तो चला जाऊंगा, पर मेरे पोते पोतियां क्यों बेचैन होकर खाली आसमान से प्रश्न पूछें? मैं तो ये पेड़ उनके लिए उगा रहा हूं बेटा। और फिर बेटा एक बात बताओ, हम जो फल खा रहे हैं वो पेड़ क्या हमने लगाए हैं?

0: उस वृद्ध आदमी का पेड़ उगाने का जुनून देखकर मेरे मन में एकाएक प्रश्न उठने लगा, आखिर हम पेड़ किस लिए उगा रहे हैं? उत्तर ढूंढने की जी जान कोशिश में डूब गया था मैं। कल्पना के सागर में डूबता उतरता जैसे मैं बातचीत कर रहा था एक पेड़ से सपने में, अपने अवचेतन में। बहुत बड़ा विशाल पेड़ होगा, फूलों की भीड़ में उमड़ पड़ेगी पेड़ की सभी शाखाएं, और महान शक्तिशाली सूर्य की किरणों को रोकते हुए पेड़ के नीचे गढ़ेगी शांत शीतल छाया की परिसीमा, और फिर किसी कोने में छोटा सा घर बनाएगी नन्ही नन्ही चिड़िया। चिड़ियों की मधुर चहचहाट से गूंजेगा ये आंगन, और बसंत में कोयल छेड़ेगी अपना मधुर गीत।
1: कहते जाओ युवक, कहते रहो। इन शब्दों से, तुम्हारे एक एक वाक्य से मेरा अल्लड़ सा यौवन रोमांचित और पुलकित हो रहा है। भविष्य के सुंदर सपनों से मैं और उत्साहित हो रहा हूं। बताओ बताओ युवक, बताओ, कहते जाओ। अपनी कहानी का हर खंड, उसकी सभी पंक्तियां, सभी अनुच्छेद, पूर्ण विराम तक, कहते जाओ युवक, कहते जाओ।
0: हाँ हाँ, पर पेड़ ये क्यों नहीं सोचते कि इससे पहले कोई तूफान भी तो आ सकता है?
1: नहीं नहीं युवक, नहीं।
0: बाढ़ आ सकती है, या फिर तुम्हारी ही किसी शाख पर शायद कोई जहरीला अजगर छिप सकता है।
1: नहीं नहीं नहीं।
0: और फिर तुम्हारे उन पक्षियों के सुंदर सलोने घोंसले, इन्हें कैसे बचाओगे तुम? सोचा है कभी?
1: नहीं नहीं युवक, नहीं।
0: और फिर एकाएक अचानक भूकंप भी तो आ सकता है।
1: बस बस करो युवक, बस।
0: ये सब तो सिर्फ आशंकाएं हैं, भयानक ही सही, पर किसी न किसी युवक के हाथ में कुल्हाड़ी लेकर तुम्हारी तरफ बढ़ना तो निश्चित है।
1: चुप कर युवक, चुप कर। यूं तुम्हारे बोले हुए हर शब्द मुझे मुझे बेचैन कर रहे हैं। क्यों मेरा सुंदर सा सपना ईंट पर बिखरता नजर आ रहा है? क्यों युवक, क्यों?
0: अब पेड़, ये क्या कह रहे हो तुम?
1: वही वही जो तुम्हें करना चाहिए, जो वो वृद्ध कर रहा है।
0: जिंदगी और मौत के साथ आंख मिचौली करता 60-70 साल का ये बूढ़ा अपने वंशजों के लिए कुछ आदर्श मात्र रखने के लिए जो कोशिश कर रहा था, और इसी संकल्प को लेकर भिड़ा हुआ है सुबह से शाम तक, तो मुझे भी वही करना चाहिए।
1: वही वही तो मैं कहता हूं युवक, तुम कुछ पेड़ नहीं उगा सकोगे। एक बार सोच लो, ये जो आशंकाओं का घेरा मुझे और शायद तुम्हें भी आतंकित करते हुए बेचैन कर रहा था, उसका क्या कुछ समाधान नहीं? आदमी के हमेशा सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अनगिनत पेड़ काटने की निर्दयता करता रहेगा, उसे तुम रोकने की कोशिश भी नहीं करोगे। तुम्हें कुछ करना होगा युवक, कुछ करो। सब कुछ खत्म होकर काल के गर्भ में विलीन होने से पहले कुछ करो, पेड़ के लिए कुछ करो।
0: हाँ हाँ मैं कुछ करूंगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं सबको जागृत करूंगा, सबके दिल और दिमाग में पेड़ों के लिए प्यार, मोहब्बत, इज्जत, त्याग, बलिदान के जज्बों की मशाल जलाऊंगा। मैं अपने सुंदर पर्यावरण को अकाल मृत्यु से बचाऊंगा। हाँ मैं कुछ करूंगा।
2: बादल, ए बादल, देखो ना वो पेड़, वहां जाएंगे ना हम।
3: वहां? वहां जाकर क्या करोगी वर्षा?
2: बैठेंगे।
3: क्या सिर्फ बैठेंगे?
2: बातचीत करेंगे।
3: यानी गुफ्तगु।
2: जैसे जैसे सभी प्यार करने वाले करते हैं।
3: अच्छा, बिल्कुल जाएंगे।
2: और एक दूसरे से हम भी तो।
3: वर्षा, वहां नहीं जाएंगे।
2: क्यों?
3: वहां कवि की कल्पना के नायक नायिका बैठते हैं, पेड़ के नीचे, समुद्र के किनारे।
2: तो हम क्या काल्पनिक हैं?
3: हम कवि की कल्पना और कहानीकार के चरित्र के अंदर जैसे खुद नहीं है वर्षा।
2: तो बादल, हम पेड़ के पास नहीं जाएंगे? तो आओ अब वास्तविक दुनिया में आ जाएं।
3: वर्षा के पास?
2: छोड़ो ना। जानते हो बादल, वर्षा जिंदा तो है मगर अधूरी सी है। अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पा रही, सब कुछ खाली खाली सा लगता है।
3: ये अधूरापन कैसा है वर्षा?
2: मेरा अधूरापन तो तुम भरोगे ना बादल, मुझे अपनाकर।
3: वर्षा, मेरी मजबूरियां तुमसे छिपी नहीं है। देखो ना, अधूरा तो मैं हूं।
2: बादल, तुम इतनी छोटी सी तकलीफ का मुकाबला नहीं कर पा रहे हो, तुम अपना रास्ता खुद क्यों नहीं बनाते?
3: कैसे बनाऊं वर्षा, एक सामान्य परिवार का अभावग्रस्त लड़का।
2: और मेरे पास कहाँ है संपत्ति? अभावों को रास्ते का रोड़ा मत बनने दो बादल।
3: वर्षा,
2: 2 महीने बाद तुम नौकरी तलाश करने वालों की कतार से भी रिटायर हो जाओगे।
3: तुम ठीक कहती हो वर्षा, देखो मैं उच्च शिक्षित हूँ, नौकरी नहीं मिली तो।
2: तुम्हारे लिए नौकरी ही सब कुछ है बादल, क्या तुमने मेरे बारे में भी कभी सोचा है? इस पेड़ जैसी मेरी स्थिति भी नहीं लगती, सब कुछ होते हुए भी अधूरापन, एक अनजाना सा डर।
3: क्या करें वर्षा, चलो वापस चले।
2: हमें इस पेड़ के पास आना ही नहीं चाहिए था।
3: क्यों
2: बादल? मैं इस पेड़ जैसी नहीं बनना चाहती, हमेशा एक भयानक हादसे से भयाकांत।
3: वर्षा,
2: 60-70 साल के होने के बावजूद पापा आज भी पेड़ लगाते हैं बादल, पेड़ों से बहुत प्यार करते हैं वो, मुझसे हर वक्त उनकी देखभाल के लिए ताकीद करते रहते हैं। लेकिन बादल, न जाने क्यों पापा का पेड़ों को लेकर तर्क मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं अक्सर उनके अतीत से प्रश्नों के साथ उलझ पड़ती हूँ। जानते हो उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था।
3: पेड़ों को लेकर?
2: हाँ।
3: क्या हुआ था?
2: तुम सुनोगे वो कहानी?
3: अरे बताओ ना।
4: पेड़ में पानी दे दिया बेटी?
2: पानी की अब जरूरत नहीं है पापा, पेड़ बड़ा हो चुका है।
4: अरे उसे तो और बड़ा होना है।
2: और बड़ा?
4: इसीलिए शुरू से ही अच्छी देखभाल करनी चाहिए।
2: आप पेड़ के बारे में कह रहे हैं ना पापा?
4: हाँ?
2: अच्छा, मैं सोच रही थी कि आप मेरे बारे में।
4: क्या कह रही हो बेटी?
2: पापा, आदमी पेड़ जैसा नहीं बन सकता ना।
4: अरे पगली, क्या हो जाता है तुझे, कभी कभी इस तरीके के अजीब सवाल कर लेती है, हैं? जा बेटी जा, पानी ठीक से डाल दे। पेड़ अभी संभल चुका है, सही ढंग से देखभाल करेंगे ना तो जल्दी फूलेगा फलेगा। हाँ
2: पापा, मैं सोच रही थी।
4: क्या?
2: वो उस सपने के बारे में जो मैंने आज सुबह देखा था।
4: अरे सपना तो सपना होता है बेटी, सपने तो सभी देखते हैं, हैं? और उसे कहने और सोचने की क्या जरूरत है?
2: जरूरत है पापा।
4: वर्षा, अब तुम बच्ची नहीं हो भाई।
2: हाँ पापा, आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं बच्ची नहीं हूँ? पापा, मैं भी जानती हूँ कि मैं काफी समझदार हो चुकी हूँ, और इसीलिए बिना संकोच के मैं बादल और अपने बारे में आपको बताना चाहती हूँ।
4: वर्षा, अपने पिता के सामने भी कोई संकोच नहीं है? कुछ पढ़ लिख गई तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आँखों की शर्मो हया भी जाती रहे?
2: आप जवाब देंगे पापा मेरे कुछ सवालों का? सीधा सीधा जवाब।
4: कैसे सवालों का जवाब?
2: वो सवाल जो शायद किसी बेटी ने कभी अपने पिता से नहीं पूछे होंगे।
4: वर्षा,
2: काश आपने मेरी जिंदगी को भी इन पेड़ों की तरह सींचा होता। काश मेरी जड़ें भी इतनी ही मजबूत होती कि मुझे कभी भी मुरझा जाने का भय तो नहीं सताता।
4: आज तेरे किसी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है बेटी।
2: पेड़ अगर अचानक कमजोर हो जाएगा तो?
4: तेरी जो मर्जी होकर, मुझे परेशान मत कर। हाँ,
2: बादल और वर्षा के मिलने से अब
4: मैं जानता हूँ।

0: वर्षा, मैं जानता हूं बादल की करतूतों का मुझे पता था। एक दिन वो मुझे और मेरे परिवार को बर्बाद कर देगा।
1: बादल मेरी मांग को सिंदूर तो नहीं दे सका, मगर हम दोनों के प्रेम का प्रतीक वह कोमल सा फूल।
0: वर्षा, ये क्या कह रही है तू?
1: हाँ पापा, पर वो फूल, फूल से सुंदर दुनिया की पहली किरण देखने से पहले ही शायद।
0: वर्षा,
1: कैसे कैसे पापा, कैसे मैं कर सकती थी? समय के दिए हुए कांटे रूपी पाले में उसका पालन कैसे?
0: बस कर वर्षा, बस कर, बस कर।

0: तो पापा को सब कुछ कह दिया तुमने?
1: हाँ बादल, हमारे प्यार की दास्तान।
0: प्यार की दास्तान या मेरी कायरता?
1: बादल,
0: तुमने उनसे यही कहा ना कि अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करते हुए भी बादल ने तुम्हें अपनाया नहीं?
1: लेकिन बादल,
0: मेरी बात सुनो वर्षा, कैसे और कहां से मैं तुम्हारा सहारा बनता जिसका अपना एक स्वतंत्र परिचय नहीं, ठिकाना नहीं, वो भला कैसे खिलखिलाते हुए सुकुमार फूल को?
1: मुझे कुछ नहीं चाहिए बादल। कुछ नहीं, मुझे तो सिर्फ पूर्णता चाहिए थी, एक परिचय, एक भरोसा चाहिए था, वो मुझे दिलाती समाज की स्वीकृति। मैं किसी भी सड़क का कोई बेसहारा पेड़ नहीं, बल्कि तुम्हारे आंगन की बगिया का एक पेड़ होना चाहती हूँ, अशोक वन का एक फला फूला लहलाता पेड़ बनना चाहती हूँ बादल।
0: लहलाता पेड़ अपने एक आंगन के लिए? हाँ, सिर्फ एक आंगन के लिए, परिचय के लिए तुम छोड़ सकोगी हंसता खेलता परिवार? बोलो, अपने भविष्य के, अपने सपने को सच करने की कोशिश में लगे अपने छोटे भाई बहनों को छोड़ सकोगी? जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही तुम्हारी बीमार माँ और पापा की थोड़ी सी पेंशन के सहारे छोड़कर यहाँ रह जाओगी वर्षा?
1: हाँ, रह सकूंगी, कर सकूंगी, मैं सबको छोड़ दूंगी बादल।
0: क्यों वर्षा, क्यों?
1: क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी कोख में खिलने वाला फूल चुपके से मुरझा जाए। बादल,
0: वर्षा,
1: बादल।

0: उस दिन वर्षा ने मेरा बहुत तिरस्कार किया, हाँ? मुझे कोसा, मैंने अपने ऊपर से भरोसा ही खो दिया था। एक तरफ वर्षा की चाहत और दूसरी तरफ मेरी मजबूरी। मैं क्या करूं? मैं वो बादल परशर जिसके एक इशारे पर यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्र आवाज बुलंद कर देते थे, उस बादल को वर्षा जैसी एक साधारण सी लड़की सहारा ना दे पाने के कारण इतनी बातें कर रही थी, हाँ, इतनी बातें। अरे धिक्कार है मुझ पर, ये पुरुषत्व नहीं बादल। नहीं, बादल पराशर हार नहीं मानेगा। हाँ, अरे उम्र खत्म हो गई ना, सरकारी नौकरी नहीं मिली तो इसका मतलब जिंदगी तो नहीं खत्म हो गई बादल तेरी, हाँ? अरे मुझे तो कुछ करना होगा, हाँ, कुछ करना होगा मुझे कुछ करना होगा।
1: बादल, ओ बादल पाराशर।
0: अरे कौन?
1: अरे मैं राजू। अरे राजू यार, तेरे बचपन का दोस्त।
0: अरे राजू तू? अरे यार कितने दिनों बाद हम मिले हैं, इधर आ, गले तो लग जा।
1: अरे आजा यार, आजा। अब ये बता, मैंने तेरे को ठीक

0: पहचाना कि नहीं है? लेकिन यहाँ तो कुछ मोटा हो गया है।
1: अच्छा, लेकिन राजू तुझे क्या हुआ है? ऐसी हालत, अरे ये बेरुखा सा चेहरा, क्या बात है
0: यार? मैं एक मिशन में लगा हूं।
1: मिशन नेतागिरी करनी है क्या?
0: अरे नहीं नहीं यार।
1: अच्छा, तो क्या नौकरी के लिए संघर्ष?
0: ओ नो यार,
1: अरे तो फिर
0: मेरा मिशन पेड़ है।
1: क्या पेड़? पागल हो गया है क्या तू?
0: यार ये मेरा पागलपन नहीं है बादल। मेरे पीछे जानता है कितने हजारों लोग इस मिशन में शामिल हैं।
1: अच्छा, बात तो ठीक है, पर ये बता कि मुझे क्या करना होगा?
0: वो पहाड़ी गांव का बूढ़ा आदमी मुझे जागृत कर गया, चेता गया, पेड़ों की रक्षा के लिए कुछ करने का एहसास दिला गया मुझे।
1: क्या, पेड़ उगाने वाला बूढ़ा आदमी पहाड़ी गांव का?
0: हाँ हाँ, अब वो ब्रिज किशोर नाम है उसका।
1: ब्रज किशोर, वर्षा के पापा?
0: अब कुछ कह रहे हो क्या बादल?
1: कहना तो बहुत कुछ है राजू।
0: बादल बादल,
1: जल्दी कहो, मेरे पास वक्त नहीं है राजू।
0: अच्छा, मतलब यानी तेरे साथ बिना अपॉइंटमेंट इतनी बात करना भी मेरी खुशकिस्मती है?
1: आखिर राय साहब का पूरा कारोबार मेरे हाथों में है राजू।
0: हाँ, तू तो पक्का बिजनेसमैन हो गया यार। तू पेड़ के लिए कुछ कर यार बादल।
1: मैं राय साहब का वारिस बन चुका हूँ।
0: और राय साहब के आदेश के मुताबिक तुम एक हरे भरे जंगल को साफ करके होटल बनाने के इरादे में हो।
1: मुझे पेड़ काटना ही पड़ेगा राजू।
0: तुम पेड़ नहीं काटोगे बादल।
1: तो धमकी दे रहे हो?
0: चेतावनी दे रहा हूँ।
1: अच्छा अच्छा राजू, अगर मैंने तेरी बात नहीं मानी तो?
0: देख बादल, हम तुझे ये बर्बरता नहीं करने देंगे।
1: राजू मुझे चैलेंज कर रहा है तू?
0: हाँ राजू तुझे चैलेंज कर रहा है बादल। बादल पाराशर को राजू चैलेंज कर रहा है।
2: मैं वर्षा चौधरी, एक अविवाहित नौकरी पेशा लड़की, मैं अभी तक समाज में अपना एक परिचय बनाने के इंतजार में थी। मुझे सहारे की जरूरत थी, लेकिन जब जिम्मेदारियां सामने आ जाती हैं तो समझौता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर शायद अपना परिचय बनाने की कसमसाहट आज भी कायम है। अरे राजू।
0: अरे वर्षा जी, आप?
2: सिर्फ वर्षा कहो राजू।
0: अच्छा अच्छा वर्षा, और अचानक यहाँ?
2: बादल के साथ तुम्हारा वार्तालाप सुन रही थी।
0: हाँ, बादल तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है।
2: जानती हूँ, राय साहब का जमाई।
0: तुम बादल से मिली?
2: क्या फायदा, पता है राजू, बादल के पास ढेरों उम्मीदों के साथ गई थी, सब कुछ छोड़कर, सिर्फ एक सहारे के लिए।
1: मेरे पास बार बार आकर मुझे और अपने आप को परेशान मत करो वर्षा। हाँ, मैं कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही व्यस्त हूँ।
2: लेकिन बादल, तुम मुझे देखकर इस तरह चिड़चिड़ा क्यों रहे हो?
1: तुम्हारे साथ घूमने फिरने के लिए मेरे पास समय नहीं है वर्षा।
2: मैं घूमने नहीं आई हूँ बादल, मैं घर बसाने आई हूँ बादल।
1: घर?
2: हाँ, हमेशा के लिए यहाँ रहने के लिए, एक अशोक वन के लिए।
1: क्या वर्षा, होश में तो हो?
2: हाँ बादल, कब तक हम दोनों सारी दुनिया को भुलावे में रखते हुए ऐसे बहाने करते रहेंगे?
1: क्या,
2: और हमारे बीच ये झूठा रिश्ता कब तक? कब तक मैं कुमारत्व का झूठा हस्ताक्षर बनती रहूंगी?
1: देखो वर्षा, अब मैं बेकार नहीं हूँ, अतीत की सभी यातनाएं भूलने को मजबूर हुआ हूँ, नए तरीके के जीवन को जीने की कोशिश कर रहा हूँ।
2: तो बादल, हमारा वो प्यार, वो पहला फूल?
1: सब भूल जाओ वर्षा, सब भूल जाओ, मैं अब शादीशुदा हूँ।
2: बादल, तो आखिर तुमने राय साहब की अपाहिज

0: लड़की को? ओह गॉड,
1: ये जो प्रोजेक्ट देख रही हो ना, ये होटल वाला,
0: इसके लिए?
1: हाँ, मुझे जंगल के बहुत से पेड़ काटना पड़ेंगे।
0: ओह, और मैं वापस आ गई राजू।
2: अच्छा ही हुआ वर्षा।
0: राजू, तुम मुझे ठुकराओगे तो नहीं?
2: मेरे पास क्या है वर्षा?
0: जीने का ये संजीवनी मंत्र।
2: संजीवनी मंत्र?
0: हाँ, पेड़ के लिए हमदर्दी।
2: हाँ वर्षा, पेड़ों के लिए ढेर सारे सपने हैं मेरे।
0: राजू, पेड़ ही जीवन की परिभाषा है।
2: और हमारे पर्यावरण का आधार भी तो है।
0: मैं इन पेड़ों के लिए तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हारे साथ लड़ूंगी, विद्रोह करूंगी। राजू, मेरे पापा के द्वारा उगाए गए सैकड़ों पेड़ों को मैं बादल जैसे सुविधावादी, पर्यावरण के दुश्मन का निशाना नहीं बनने दूंगी। राजू, नहीं बनने दूंगी।
2: हाँ वर्षा, हाँ, यही होगा हमारा मकसद और हमारी जिंदगी का सही परिचय भी।
0: जब तक पेड़ शांति से नहीं जी सकेंगे, शायद हमारे भी जीवन का सपना बदल जाएगा।

अभी आप सुन रहे थे नाटक अशोक वन का पेड़। भाग लेने वाले कलाकार थे राजू सुनील वैद्य, बादल अरशद इकबाल, पेड़ मोहम्मद नजीर कुरैशी, ब्रिज आर एन चतुर्वेदी और वर्षा प्रिया चंदनानी। इस नाटक के लेखक और प्रस्तुतकर्ता थे जगदीश अधिकारी।

अभी आपने नाटक सुना। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज सुनिए रमेश प्रेम का विचित्र वीणा वादन। राग है

अभी आपने रमेश प्रेम का विचित्र वीणा वादन सुना, राग था विहाग। इसी के साथ आज का राग रजनी कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
3: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा।

0: एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ. जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।